मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। सुबह के 5:55 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह का सूरज ये संदेश देता है कि फिर एक नई सुबह है आपके लिए, एक नया अवसर है, नया मौका है कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये दिन दिया है, ये अवसर दिया है, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि नींद हमारी सभी सफलताओं के लिए एक बहुत बड़ी बाधक साबित होती है। इसलिए जागिए, उठिए, अपनी नींद को भगाइए। चिड़िया भी चहचहा रही है, आपका मुस्कुरा कर ये सुबह स्वागत कर रही है, तो चलिए नींद को भगाइए, जागिए, उठिए, मुस्कुराइए कि एक नई सुबह, एक नया दिन, नई संभावनाएं, नए अवसर आपके लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। आज का दिन आपका स्वागत कर रहा है, तो जागिए, आकाशवाणी लखनऊ को ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को। और अब कार्यक्रम आरंभ हो गया है, नमस्कार लखनऊ। और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं, नंदिनी मिश्रा। फिलहाल सुबह की 6 बजने वाले हैं, आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता के शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगनबा, मेतई ओ

67 किलो वर्ग में रोनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमद्दाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हारकर सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है। नमस्कार लखनऊ। और नमस्कार लखनऊ में सबसे पहले हम आरंभ करते हैं समाचारों के बाद कृषि की बातों का। तो सबसे पहले आज की कृषि चर्चा में आइए सुनते हैं ग्वार की उन्नत खेती के बारे में। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
1: शुभ प्रभात। आज की कृषि चर्चा में हम दलहनी सब्जी में ग्वार, क्योंकि एक महत्वपूर्ण फसल है इसलिए उसके संदर्भ में बात करना चाहते हैं। यह केवल सब्जी ही नहीं बल्कि हमारे पशुओं के लिए चारा के रूप में भी बहुतायत से प्रयोग की जाती रही है। ये परंपरागत स्वरूप में खेती हमारे सामने रही है, लेकिन हम क्यों करते रहे हैं इतने लंबे समय से और आज भी कर रहे हैं, इसकी कुछ खासियत है। एक तो यह उन क्षेत्रों में जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ भी बढ़िया से उगाई जा सकती है उस मौसम में। लेकिन इसकी फलियों का प्रयोग जो सब्जी के रूप में किया जाता है वह तो है ही, सूखे बीज का उपयोग दाल के रूप में भी होता है। इसके अतिरिक्त इसके तमाम फायदे भी हैं जो किसी भी दाल कुल फसल का होता है वह है इसमें भी विद्यमान। चारा फसल होने के नाते या द्विकाजी भी कह लेते हैं, एक तो हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, दूसरा कि अपने पशुओं के लिए चारा भी बढ़िया से मिल जाता है। हाँ, चारे के लिए कुछ अलग से किस्में भी अब निकाली गई हैं जो केवल चारा के लिए ही होंगी, हमारे लिए उपयोग की नहीं होंगी। इसका जो बुआई का समय है वह भी लंबा होता है क्योंकि मार्च से शुरू करके इसे पूरे बरसात तक उगा लेते हैं, तो एक जो लंबा पीरियड इस बीज का है, कभी भी आप बुआई करेंगे तो उससे फलत प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे अपनाएं। अब बात आती है कि कौन सी किस्में हैं, कितनी अच्छी किस्में हैं, उनका प्रयोग हम करें। पूसा मौसमी एक प्रजाति है, पुरानी प्रजाति है। इसके पौधों में काफी शाखाएं आती हैं और खरीफ में उगाने के लिए यह बेहतर मानी जाती है। यह मुलायम होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी फलियां होती हैं। अपेक्षाकृत देर से तैयार होने वाली किस्म है, इसलिए इसको अगर पहले भी बोलते हैं तो भी बात अच्छी बन जाती है। 60 से 80 दिन बाद फलियां तुड़ाई के योग्य हो जाती हैं। एक प्रजाति है पूसा सदाबहार। इस किस्म में शाखाएं नहीं आती हैं और यह गर्मी तथा बरसात दोनों मौसमों में उगाने के लिए अच्छी मानी गई है। फलियां हरे रंग की, 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, मुलायम होती हैं और बिना रेशे की होती हैं। तो इसलिए जो एक बात कही जाती है सब्जी में कि रेशा विद्यमान रहता है, तो वह रेशा इसमें बहुत कम होता है, इसलिए इसको लोग कम पसंद करते हैं। गर्मी में बुआई के 45 दिन बाद और बरसात में यानी जून में जब बुआई की जाती है तो 55 दिन बाद फलियां तुड़ाई के योग्य हो जाती हैं। बीच में अगर बुआई की है अप्रैल में, तब भी लगभग यही होता है कि 50 से 55 दिन का समय लगता है। पूसा नवबहार एक प्रजाति है। इसकी फलियां पूसा मौसमी जैसी ही होती हैं, जबकि पौधों की बढ़वार पूसा सदाबहार जैसी होती है यानी शाखा वाली होती है। इसकी फलियों की लंबाई 15 सेंटीमीटर के आसपास देखी गई है। यह गर्मी और बरसात दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त है, यानी मार्च से लेकर के जून तक कभी भी इसकी बुआई कर सके। जून क्या, कभी कभी तो इसे जुलाई अगस्त तक भी ले जा सकते हैं आप। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7.5 से 8 हो सफलतापूर्वक भी उगाई जा सकती है। वैसे दोमट मिट्टी या मटिया दोमट जिसे हम कहते हैं उसमें भी इसकी अच्छे से खेती हो जाती है। गर्म मौसम में यह फसल अच्छी होती है, इसलिए इसका लंबा

0: जो पीरियड है उसे हम उपयुक्त मानते हैं। खेत की तैयारी के लिए 2 या 3 जुताई करने के बाद पाटा चला देना ही पर्याप्त होता है। कुछ खास इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर मिला देते हैं तो बात अच्छी बनेगी, मिट्टी की दशा भी सुधरेगी और इस फसल के लिए लाभकारी भी होगी। 10 से 12 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 70 किलोग्राम ही पोटाश देने में पैदावार में अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। पोटाश की उपयोगिता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये दाल कुल की फसल है, इसलिए उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न रहती है। यह मौसम ऐसा होता है कि इस समय कीड़े मकोड़े अन्य खेतों से चूंकि खाली रहते हैं तो यहाँ पर ज्यादा पहुंचते हैं, इसलिए ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए पोटाश दिए रहेंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें रहेगी और जब पौधा हृष्ट पुष्ट रहेगा तो कीटों का आक्रमण भी कम ही होगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि बरसात के मौसम में आवश्यकता अनुसार 1-2 सिंचाई ही करनी पड़ती है, लेकिन गर्मी में जो खेती कर रहे हैं इसमें 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। बरसात के मौसम में यह देखा गया है कि कुछ खास प्रबंध नहीं करना पड़ता, केवल जल निकास की व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन गर्मी के पूरे समय में जल निकास की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए खेत की दशा देखें, स्थिति देखें, उसके अनुसार इसकी खेती को स्थान दें।
1: तो कृषि चर्चा में श्रोता, आज आपने जाना ग्वार की उन्नत खेती के बारे में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। और अब बारी सुविचार की। आज का विषय है आत्मबोध, स्वर और आलेख डॉक्टर शीला मिश्रा का।
2: आत्मबोध, आत्मोत्थान, आत्म साक्षात्कार जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इससे बड़ी उपलब्धि इस मनुष्य के लिए और दूसरी नहीं हो सकती। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस लिए हूँ, इस तथ्य को समझ लेने के बाद ये अनुभूति होने लगती है कि उपकरण, औजार और पदार्थों का उपयोग, उपभोग, संबंध, स्नेह की सीमा कितनी रहनी चाहिए। मैं क्या हूँ, इस प्रश्न का उत्तर शरीर हूँ इसके रूप में हमारी अंतः मान्यता देती है। सो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ जुड़ी हुई परिवर्तनीय प्रतिक्रियाएं देह के साथ जुड़ी रहती हैं। आत्मतौर पर हर व्यक्ति यही प्रयास करता है कि दूसरे लोग उसे बड़ा सुखी और संपन्न समझें। इसी का ढांचा खड़ा करने में उसकी सारी शक्ति लगी रहती है। सारे प्रयास इसी परिधि के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दूसरे लोग अपनी ही समस्याओं में उलझे होते हैं। उन्हें किसी की अमीरी गरीबी का मूल्यांकन करने में क्या रुचि हो सकती है। लेकिन हर व्यक्ति समझता यही है कि सबका ध्यान मेरे ऊपर ही केंद्रित है और ये मनोवैज्ञानिक भूल मनुष्य को उस निरर्थक क्रियाकलाप और चिंतन में लगाए रहती है जिसे तात्विक दृष्टि से पूर्णतया निरर्थक कहा जा सके। आत्मबोध न होने से मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं, चेष्टाएं, योजनाएं, गतिविधियां एक प्रकार से निरर्थक कामों में लगी रहती हैं। जो सुख साधन भौतिक जीवन में उपलब्ध थे उनको भी गलत दृष्टिकोण के कारण समझा और सराहा नहीं जाता। मैं क्या हूं, इसका उत्तर अब तक के चले आ रहे धैर्य वाले अभ्यास के अनुरूप नहीं वरन तत्व चिंतन के आधार पर देना चाहिए। दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे हम प्रभावित न हों। निस्संदेह वातावरण अंधकार भरा है। आत्मबोध की पहली सीढ़ी ये है कि लोक चिंतन की अवांछनीयता को समझा जाए और अपनी अब तक के धैर्य पर चलती हुई मान्यताओं के औचित्य को अस्वीकार किया जाए। व्यक्ति जब अपने को ईश्वर का परम पवित्र अविनाशी अंश समझता है और आत्मा के रूप में अनुभव करता है तो शरीर को एक उपकरण भर स्वीकार करता है। उसे अपनी पिछली मान्यताओं, आकांक्षाओं, योजनाओं और गतिविधियों में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव होती है। उपलब्ध संपत्ति का सदुपयोग

0: सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है उसकी जमाखोरी में कोई समझदारी नहीं। उपार्जन को श्रेष्ठ प्रयोजनों में लगाना चाहिए। भगवान के उद्यान के रूप में संबंधित परिवार को कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह सींचना सहेजना बहुत सही है। मोहग्रस्त मनुष्य अपने कुटुंबियों की सुविधा संपदा बढ़ाने और इच्छा पूरी करने की धुन में उचित अनुचित आवश्यक अनावश्यक का भेद भूल जाता है और घर वालों की इच्छा और खुशी के लिए वो व्यवस्था भी जुटाता है जो न आवश्यक है न उपयुक्त। मोहग्रस्त के पास विवेक रह ही नहीं सकता। आत्मबोध एक श्रद्धा है, आत्म साक्षात्कार एक दर्शन है, जिसे सच्चाई के साथ हृदयंगम किया जाए तो दृष्टिकोण ही नहीं बदलता वरन क्रियाकलाप भी बदल जाता है।
1: तो सुविचार के तहत श्रोताओं, आज आपने जाना कि आत्मबोध होना व्यक्ति में कितना आवश्यक है, तभी तो व्यक्ति के जीवन में उत्थान होता है, सकारात्मकता आती है। और इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में आगे बढ़ते हैं और प्रवाहित करते हैं अपनी आज की भक्ति धारा, आरंभ करते हैं आज की आराधना।

जहाँ ईश्वर की भक्ति होती है वहाँ सुकून और चैन होता है, क्योंकि भक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं।

भक्ति और आस्था दिल का सबसे पवित्र भाव होता है। इसीलिए कहा भी गया है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है कि आप पूरी आस्था पूरे विश्वास के साथ प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। आपको स्वतः ही ईश्वर की निकटता का एहसास होगा।

भक्ति की दूर दिखती तो नहीं है, लेकिन इतनी सुदृढ़ होती है कि वो ईश्वर तक को बांध सकती है।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभ इच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहे, इसी शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 168 और इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अयोध्या कांड का वो प्रसंग जिसमें श्री राम का भारद्वाज मुनि से मार्गदर्शन की याचना करना और मार्ग में कम उम्र के तपस्वी से मिलने का प्रसंग आता है।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा ने

इशादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आज आपने सुना इसका भाग 168। इसी के साथ श्री रामचरित मानस से गान संपन्न हुआ।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनिए हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूं मैं नंदिनी मिश्रा। फिलहाल सुबह के 6:55 होने वाले हैं। आइए आपको सुनवाते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ह्यः तेलङ्गाणाराज्ये प्रायः चतुश्शतोत्तरनवसहस्रकोटिरूप्यकाणाम् आधारभूतसंरचनानाम् औद्योगिकपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्षजनितं ऊर्जा संकटं प्रभावीरीत्या नियन्त्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: इदानीन्तन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्षश्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्री सोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य पञ्चसप्ततिः वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्यसचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य सम्भावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउण्ड इत्यत्र मुख्यमन्त्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मन्त्रिमण्डले भाजपादलस्य निर्वाचनप्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्यसर्वकारीयकर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्यविषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डल दण्डाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा गठबन्धन नेतृभिः सह

0: लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वसर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहणसमारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी, केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, भाजपाध्यक्षः नितिननवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, अब बारी है स्वास्थ्य से जुड़ी बातों की, तो आइए सुनते हैं अपनी स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो देखने में जितना आकर्षक है स्वाद में उतना ही खास और सेहत के लिहाज से एक सच्चा रत्न है। ये फल है खुबानी। पीले नारंगी रंग की ये छोटी सी गोल मिठास देखने में आम हो सकती है, लेकिन इसके गुण और प्रभाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। खुबानी का संबंध खासकर उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्रों से गहराई से जुड़ा हुआ है। लद्दाख, कश्मीर और हिमाचल की पहाड़ियों में इसकी खुशबू और मिठास बसी हुई है। यहाँ ये केवल एक फल नहीं है बल्कि एक परंपरा है। हर साल गर्मियों की शुरुआत होते ही खुबानी के पेड़ फलों से भर जाते हैं और फिर घर घर में इसका उपयोग किया जाता है, कभी ताजा, कभी सूखा, कभी अचार में और कभी तेल के रूप में। इसका हर रूप शरीर को पोषण देने वाला, भीतर से सुदृढ़ करने वाला और बाहर से चमक प्रदान करने वाला होता है। खुबानी की सबसे बड़ी विशेषता है उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक पोषक तत्व। इसमें विटामिन ए, सी, ई, आयरन, पोटेशियम और फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं। ये संयोजन शरीर के लिए एक शक्तिशाली टॉनिक का काम करता है, खासकर गर्मियों में जब शरीर में पानी की कमी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। खुबानी का रस या शरबत शरीर को न केवल ऊर्जा देता है बल्कि उसे भीतर से ठंडक और संतुलन भी प्रदान करता है। विटामिन ए के कारण ये फल आंखों की रोशनी के लिए अत्यंत लाभकारी है। जिन लोगों को आंखों में थकावट, जलन या धुंधलापन महसूस होता है उनके लिए खुबानी का नियमित सेवन उपयोगी माना गया है। वहीं विटामिन सी और विटामिन ई त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देते हैं और उसे चमकदार और स्वस्थ बनाए रखते हैं। यही कारण है कि खुबानी का तेल आजकल सौंदर्य उत्पादों में भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, फेस सीरम हो या फिर बालों के लिए हेयर ऑयल। अगर हम बात पाचन की करें तो खुबानी में घुलनशील रेशा यानी सोल्यूबल फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो आंतों की गति को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। आयुर्वेद में भी इसे हल्के और सुपाच्य फल के रूप में माना गया है, खासकर गर्मी में जब भूख कम लगती है और पाचन धीमा हो जाता है तो खुबानी एक सरल लेकिन प्रभावशाली विकल्प बन सकती है। अब जरा ध्यान दें महिलाओं और किशोरियों की ओर जिनमें अक्सर आयरन की कमी पाई जाती है। खुबानी प्राकृतिक रूप से आयरन का अच्छा स्रोत है और ये शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती है। जो लोग नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं उन्हें कमजोरी, चक्कर या थकान जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये फल मीठा तो होता है लेकिन इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, यानी स्वाद, पोषण और संतुलन का उत्तम मेल। सूखी खुबानी यानी ड्राई एप्रिकोट भी हमारे देश में खूब पसंद की जाती है। ये लंबे समय तक टिकती है और सर्दियों में भी

0: सिर्फ शरीर ही नहीं मन को भी संतुलन देने वाला होता है। इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में सूजन को कम करते हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि इसे रक्षात्मक फल भी कहा जा सकता है। खुबानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी की असली मिठास वही होती है जो भीतर से शरीर को पोषण दे और बाहर से मुस्कान लाए। ये फल छोटा जरूर है लेकिन इसकी क्षमता बड़ी है। ये न केवल हमें गर्मियों की लू से बचाता है बल्कि हमारे शरीर के हर तंत्र को भीतर से मजबूती भी प्रदान करता है। तो इस मौसम में जब भी बाजार जाएं और कहीं खुबानी दिखे तो जरूर खरीदें। इसे अपने आहार का हिस्सा बनाएं, बच्चों को इसकी चटनी बनाकर दें, घर में शरबत बनाएं या इसे सूखे मेवों के साथ मिलाकर स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता तैयार करें। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: तो श्रोताओ, हमें आशा है कि आप आज की स्वास्थ्य चर्चा से लाभान्वित अवश्य होंगे। और अब नमस्कार लखनऊ में समय हो गया है कि हम आपको आज अपनी विभिन्न सभाओं में जो कार्यक्रम लेकर आए हैं उनके बारे में जानकारी दे दें। आज सुबह 11:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोमनाथ अमृत पर्व पर संबोधन ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात 10 बजे सुनिएगा रूपक, शीर्षक होगा अवध वाणी। यह आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति होगा। लेखक हैं आलोक पराडकर।

श्रोताओं के पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुन सकेंगे आज रात 9:30 पर। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर शरद सिंह से सुनिएगा उनकी कहानी सच्चा तीर्थ। शाम 7:30 पर सुनिएगा स्वास्थ्य मैगजीन स्वास्थ्य वार्ता, जिसमें पहले प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ आर्या से की गई भेंट वार्ता सुनिएगा। रेडियो न्यूक्लाइट थेरेपी आपसे बातचीत करेंगे आशीष चतुर्वेदी। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर शाह वलीउल्लाह से की वार्ता सुनिएगा, विषय होगा स्पाइन की देखभाल कैसे करें। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा बांदा और अंबेडकर नगर जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम में आज समाज फरमाइएगा मकाला एहदे जहदीद में सादत हसन मंटो की अहमियत, मकाला निगार होंगे प्रोफेसर अली अहमद फातमी। इसके अलावा आप सुन सकेंगे कलाम शायर के तहत कलाम। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:10 पर विविधा में आज का विषय है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर संजय कुमार से की गई भेंट वार्ता सुनिएगा, मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन। आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

डॉक्टर प्रियंका भट्ट से की गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा उल्टी दस्त कारण और निवारण। आपसे भेंट करेंगे रामजीत मौर्य। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में डॉक्टर प्रतिभा सचान से की गई भेंट वार्ता सुनिएगा। पशुओं में लंपी चर्म रोग कारण और निवारण। आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर आज सुनिएगा सरोद वादन। कलाकार होंगे उस्ताद अली अकबर खां। और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा दीपक सिंह के गाए कुछ अवधि लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आज की विविधता।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग। इसमें अश्विनी तिवारी से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में करियर की संभावनाएं। आपसे भेंट करेंगी अनुष्ठा। इसके अलावा नई उड़ान कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर। इसमें लखनऊ के KGMU के सदस्य सचिव बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंध इकाई के डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव बताएंगे अस्पताल अपशिष्ट पर्यावरण के समक्ष चुनौतियां और इसका वैज्ञानिक प्रबंधन। शाम 6:30 पर कार्यक्रम होगा लोकायतन। इसमें

विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। आज की विविधा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आज का दिन भारत के इतिहास में गर्व, विज्ञान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। हर साल 11 मई को मनाने जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब सपनों के साथ विज्ञान जुड़ता है तो एक देश दुनिया के सामने नई पहचान बना लेता है। दोस्तों, तकनीक सिर्फ मशीनों का नाम नहीं है, तकनीक वो ताकत है जो जीवन को आसान बनाती है, वो सोच है जो असंभव को संभव बनाती है, और वो आत्मविश्वास है जो कहता है हम भी कर सकते हैं। 11 मई 1998, राजस्थान के पोखरण की धरती पर भारत ने इतिहास रचा। भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी वैज्ञानिक शक्ति का परिचय दिया। इस मिशन को नाम दिया गया था पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स। ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक क्षमता की घोषणा थी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में कई महान वैज्ञानिकों का योगदान रहा, जिनमें सबसे प्रमुख नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, एक ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने मिसाइल तकनीक से लेकर युवाओं के सपनों तक हर जगह नई उड़ान दी। डॉक्टर कलाम कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय दिखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। और सच में भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे ही सपनों को साकार किया।

दोस्तों, अगर आज हम मोबाइल के माध्यम से दुनिया से जुड़ पा रहे हैं, अगर किसान मौसम की जानकारी तुरंत पा रहे हैं, अगर डॉक्टर दूर बैठकर मरीज का इलाज कर पा रहे हैं, अगर छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो इन सब के पीछे तकनीक की अद्भुत शक्ति है। आज भारत डिजिटल क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में भारत का नाम द्वैधीपमान किया। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत सीमित संसाधनों में भी असंभव को संभव बना सकता है। जब चंद्रयान 3 मून लैंडिंग ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, तब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था।

0: लेकिन तकनीक का असली उद्देश्य सिर्फ मशीन बनाना नहीं है, उसका असली उद्देश्य है इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना। आज तकनीक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा और रोजगार हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है। ऑनलाइन बैंकिंग हो या डिजिटल पेमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या रोबोटिक्स, भारत हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तकनीक का सही उपयोग हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन गलत उपयोग समाज को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम तकनीक का इस्तेमाल समझदारी, नैतिकता और मानवता के साथ करें। आज का दिन सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं का भी है जो बड़े सपने देखते हैं। हो सकता है आज कोई बच्चा छोटे से गांव में बैठकर विज्ञान की किताब पढ़ रहा हो, कल वही भारत का अगला महान वैज्ञानिक बने। हो सकता है आज कोई छात्र कंप्यूटर पर नया आइडिया बना रहा हो, कल वही देश का बड़ा इनोवेटर कहलाए। भारत की असली तकनीक, असली ताकत उसकी युवा सोच है। तकनीक तब सबसे सुंदर लगती है जब वो इंसानियत के काम आए, जब कोई ऐप किसी जरूरतमंद तक मदद पहुंचाए, जब कोई नई मशीन किसान की मेहनत कम करे, जब कोई आविष्कार दिव्यांग व्यक्ति की जिंदगी आसान बनाए, तब विज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं रहता, सेवा बन जाता है। आज के दिन हमें उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को धन्यवाद कहना चाहिए जो दिन रात मेहनत करके भारत को सशक्त बना रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर तकनीक ना होती तो शायद हम इतनी तेजी से आगे न बढ़ पाते। लेकिन तकनीक ने हमें सिर्फ सुविधाएं ही नहीं दी, बल्कि सपनों को नई दिशा दी है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का उत्सव है। तो आइए आज हम संकल्प लें, हम विज्ञान का सम्मान करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, तकनीक का उपयोग समाज और देश हित में करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर, आधुनिक और शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि आने वाला भारत सिर्फ डिजिटल नहीं होगा, बल्कि ज्ञान, नवाचार और मानवीय मूल्यों से भरा हुआ भारत होगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसी के साथ आज की विविधा यहीं संपन्न होती है। अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति।
1: हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ, 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने कहा परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा, कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रभास पाटन में धर्म, भक्ति, देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज सुबह 9 बजे सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव नियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल लखनऊ में कहा कि राज्य को बेहतर बिजली ढांचा देने के लिए लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि सरकार ने 165 लाख नए

0: बिजली कनेक्शन दिए हैं। 59 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और 26,000 किलोमीटर से ज्यादा पारेषण लाइन का विस्तार किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृत की सराहना पर केंद्रित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज अंडरस्कोर GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध तथा कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 1,92,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले 2 दिन के दौरान मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण लखनऊ सहित कई जिलों में उमस भरी गर्मी शुरू हो गई है। मौसम वैज्ञानियों ने राज्य में 14 मई तक एक बार फिर मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुंदेलखंड, तराई और पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा

कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा, कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम में 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रमों को डीटीएच के माध्यम से सुन सकते हैं, साथ ही साथ अपने मोबाइल ऐप से भी आप सुन सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है न्यूज ऑन AIR ऐप और ट्यून इन करना है आकाशवाणी लखनऊ। कहीं भी किसी भी समय आप ट्यून इन कीजिए और सुनिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों को। फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की, और इस समय कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, अब समय हो गया है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। आज कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सरोद वादन। कलाकार हैं उस्ताद अली अकबर खां। आज आप प्रस्तुत कर रहे हैं सरोद पर राग ललिता गौरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे सरोद वादन। कलाकार थे उस्ताद अली अकबर खां। आज आपने प्रस्तुत किया सरोद पर राग ललिता कौरी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पुनः आप एक बार उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन सुन सकेंगे। समय याद रखिए, रात 10:30 पर। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार पत्रिका।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल

0: कि श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि

0: जिला मैजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
4: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
5: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल

0: हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112301-7171 और 0112371-7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते बरेली।

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते बरेली में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज 11 मई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में, जहां आज टेक्नोलॉजी ने हर चीज को आसान और सुलभ बनाया है, वहीं और भी बहुत से जो दैनिक कार्य हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो हम अपना किसी भी उसमें देख सकते हैं, घर के छोटे मोटे काम भी जो होते हैं मशीनों के द्वारा हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा अहम भूमिका अदा करी है किसी भी काम को कम समय में अधिक से अधिक पूरा करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि इसी विषय पर आज जानकारी देने के लिए हमारे बीच हाजिर हैं आज बरेली कॉलेज बरेली के भौतिकी विज्ञान के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर वीरपाल सिंह। आइए जानते हैं उनसे कि आज जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है वो किस तरीके से क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, और आज के दिन उसका किस किस चीज से कितना महत्व है। आइए सुनते हैं ये जानकारी।
1: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते बरेली में, डॉक्टर वीरपाल सिंह जी।
2: थैंक यू
1: जी। डॉक्टर साहब बताइए, आप जैसे कि भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर हैं और साथ ही एचओडी भी हैं, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बरेली कॉलेज बरेली में, तो श्रोताओं को आज जैसा कि 11 मई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में, जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, आज के समय में उसका क्या योगदान है, वो आप श्रोताओं को बताएं।
2: सर्वप्रथम मैं प्रौद्योगिकीकरण दिवस की सभी श्रोताओं को अपने हार्दिक बधाई देना चाहूंगा
1: जी।
2: यहाँ पर मुझे ध्यान आ रहा है कि 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया था।
1: जी, सही बात, आप सही कह रहे हैं।
2: उसी दिन से ये जो है प्रौद्योगिकीकरण दिवस मनाया जाने लगा
1: जी।
2: ये हमारी उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी
1: जी,
2: और भारत वर्ल्ड के मानचित्र पर आ सका कि हम भी एक परमाणु ताकत हैं
1: जी। जी,
2: प्रौद्योगिकीकरण का जहां तक देखे, कहां से कहां तक हम पहुंच गए, हम एक एक यदि दो तीन एग्जांपल दें
1: जी,
2: आपको ध्यान होगा कि कम्युनिकेशन में यदि शुरू में आप देखिए तो हमारे पास माध्यम क्या था, जब राजा महाराजा थे तो केवल घोड़सवार एक स्थान से दूसरे स्थान को
1: जी वो एक संचार माध्यम था जी,
2: और उसमें कभी कभी तो कई दिन लग जाते थे
1: जी
2: और पता लगे आक्रांता आकर देश में किसी को भी अपने लूटपाट करके भाग गए तब तक
1: जी।
2: लेकिन आज कम्युनिकेशन का आप देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हुई है कि चाहे विश्व के किसी कोने में कोई व्यक्ति बैठा हो
1: जी,
2: हम विद इन नो टाइम
1: जी
2: उसके संपर्क साध सकते हैं
1: जी, बिल्कुल, और विद प्रूफ जी,
2: बिल्कुल, और ग्रुप में चैट कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, सीधे सीधे ऑनलाइन आपस में बैठ के चैट कर सकते हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी से ही संभव हो पाया
1: जी। ऑडियो वीडियो आज के समय में तो बहुत सुविधाएं हैं और ग्रुप भी बंद हो जाता है जी।
2: रचना, यहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि जबकि हम लोग बहुत दूर नहीं पढ़ते थे
1: जी,
2: अपने घर से आखिर जब रहते थे स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, तो पता लगे कई दिनों तक घर की कोई जानकारी नहीं मिलती थी
1: जी।
2: घर वाले सब चिंतित होते थे, लेकिन आज बेटा चाहे कहीं चला जाए आपका और आप जरा जहन उससे संपर्क में है,
1: वीडियो कॉल करके देख सकते हैं कि वो बना क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं जी।
2: बिल्कुल
1: ये तो सुविधा बहुत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब। और पहले के समय से आज के समय में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर हो गया, और आने वाले समय में पता नहीं क्या हो जाएगा, भविष्य तो किसी ने नहीं जाना है।
2: बिल्कुल
1: जी।
2: दूसरा, आप देखिए आज की डेट में हम बात करें तो पहले लड़ाई क्या होती थी, आमने सामने तलवार से और इस तरीके से
1: जी।
2: आज कहीं किसी को जाने नहीं, अपने देश से बस मिसाइल से दाग रहे हैं
1: जी।
2: तो ये सब आखिरकार टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है,
1: प्रौद्योगिकी का ही कमाल है जी।
2: जो कभी हम लोग कहते थे युद्ध में, चाहे रामायण में, चाहे महाभारत काल में आग्नेयास्त्र छोड़े जा रहे हैं, वही आज मिसाइल काम कर रही है हमारी
1: जी।
2: तो इस तरीके से कहिए कि पूरा सिनेरियो इस समय चेंज हो चुका है वर्ल्ड का
1: जी। बिल्कुल सही बात,
2: ये सब प्रौद्योगिकीकरण ने ही किया
1: जी, कि टेक्नोलॉजी का ही जो है
2: जी।
1: अब
2: आज वर्तमान में जैसे आप

0: देख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके साथ आया हुआ
1: जी,
0: चाहे हेल्थ सेक्टर ले लो
1: जी जी,
0: चाइना ने ऐसे ऐसे हॉस्पिटल डेवलप किए हैं जहाँ कोई इंसान डॉक्टर है ही नहीं
1: जी,
0: सारे ऑपरेशन सारी सब चीजें रोबोट कर रही, मशीनें कर रही।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी,
0: ड्राइवर लेस कार चल रही है
1: जी है?
0: अमेजन में जहाँ पर कितना इम्प्लाई लगा होता था वेयर हाउस के अंदर, आज वेयर हाउस में सब रिबोट क्या नाम आते रोबोट काम कर रहे हैं
1: जी जी।
0: आप डिफेंस सिस्टम में देख लीजिए गाइडेड मिसाइल्स
1: जी,
0: मन चाहे टारगेट को आप हिट कर सकते हैं
1: जी,
0: MIR जो टेक्नोलॉजी जो अग्नि मिसाइल अभी टेस्ट की गई
1: जी,
0: जिसमें मल्टीपल टारगेट हम एक ही बार में जो है उनको टारगेट करके उनको ध्वस्त कर सकते हैं
1: जी जी।
0: आखिरकार भारत आज दुनिया के सामने बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड ताकत बन के उभर चुका है
1: जी जी,
0: आज हर कोई भारत की तरफ देख रहा है
1: बिल्कुल, और एक अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ तो इम्पोर्टेंस, क्या बहुत कुछ इम्पोर्टेंस रखता है टेक्नोलॉजी के भी मैटर में।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि कोई
0: एक और जैसे बताएं आपको, जैसे फेसबुक का था
1: जी,
0: तो फेसबुक के URL को जहां तक मैंने कभी पढ़ा था
1: जी
0: कि 35 साल लग गए थे उसको डेवलप करने में, जहां हजारों इंजीनियर काम कर रहा था
1: जी जी, सही बात है ये,
0: और वही AI ने मात्र 2 सप्ताह के अंदर डेवलप करके दे दिया
1: जी जी AI जी।
0: तो आखिरकार आज पहले जो हम कभी कथा कहानी सुनते थे वो आज सारा कुछ चरितार्थ हो रहा है
1: जी जी,
0: रियल लाइफ में हमारे हो रहा है
1: जी, और आने वाले समय में भी पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा, उम्मीद बहुत अच्छी की जा सकती है
0: भाई। आज आप देखिए चांद पे आप पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह पर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं
1: जी,
0: तो हर तरफ तो हब लंका बाजार है
1: जी,
0: कहीं से कहीं तक आपको सब कुछ हम पूरी तरीके से लगे हैं कि ब्रह्मांड को क्या इनके रहस्य है उनको खंगाल सके अपनी प्रौद्योगिकीकरण के माध्यम से।
1: कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कहीं टेक्नोलॉजी या विज्ञान के माध्यम में कहीं पीछे रहा हो, बल्कि और आगे ही बढ़ के आ रहा है। जहां तक मतलब एक देखा जाए कि मानव का नियंत्रण में हद से हद चीजें आ रही हैं, अधिक से अधिक चीजें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बस 2 लाइनों से मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा हूँ।
1: बिल्कुल, स्वागत आपका, कीजिए।
0: प्रौद्योगिकीकरण से भारत विश्व शक्ति बन पाया है
1: जी,
0: सभी क्षेत्रों में भारत ने अपना ध्वज फहराया
1: जी, बहुत खूब।
0: मुझे गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर
1: जी,
0: कि आज हमको उन सभी ने आगे पंक्ति में खड़ा कर दिया है जहां सारा विश्व सारे देश हमारी तरफ देख रहे हैं
1: जी। सिंह साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने श्रोताओं तक पहुंचाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका।
0: थैंक यू थैंक यू।

श्रोताओं, फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। और इस समय ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से ओनली ऑन 100.4 एफएम पर। और अब बरेली शहर की कुछ अहम खबरें। कल सुबह से बंद हो जाएगा चौपला फ्लाईओवर। जी हां, 45 दिन ठप रहेगा आवागमन। सुभाष नगर करगैना के लोगों को शहर में आने को करनी होगी थोड़ी मशक्कत। अटल सेतु से चौपला फ्लाईओवर होते हुए बदायूं रोड की तरफ आवागमन मंगलवार सुबह 8 बजे से यानी कल से बंद हो जाएगा। पुलिस प्रशासन ने रूट डायवर्जन फाइनल कर एडवाइजरी जारी कर दिया है। बदायूं की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए लाल फाटक से होकर निकलना पड़ेगा। चौपला फ्लाईओवर का निर्माण 1.5 दशक पहले कराया गया था। पिछले साल इसे नवनिर्मित अटल सेतु से जोड़ दिया गया। वर्तमान में पुल पर 30 विस्तार जोड़ एक्सपेंशन ज्वाइंट है। इनके बीच 4 से 5 इंच तक का गैप बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये काम करना पड़ रहा है। और बदायूं से बरेली की तरफ आने वाले छोटे बड़े सभी वाहन रामगंगा से चौपला की तरफ प्रतिबंधित रहेंगे और शहर में आने के लिए रामगंगा तराहा से बुखारा मोड़ होते हुए आएंगे। चौपला चौराहा से बदायूं रोड पुल गन्ना मिल की तरफ सभी तक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। और नैनीताल व पीलीभीत की तरफ से बदायूं जाने वाले वाहन बियावानी कोठी बुखारा मोड़ रामगंगा होते हुए जाएंगे और इसी मार्ग से वापस भी आएंगे।

फिट इंडिया अभियान में निकाली साइकिल रैली। जी हां, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र की ओर से रविवार को फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भारतीय थल सेना के सहयोग से हुआ, जिसमें खिलाड़ियों और सेना के जवानों ने भाग लिया। रैली की शुरुआत मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हुई और दोपेश्वरनाथ मंदिर कैंटोनमेंट क्षेत्र होते हुए जाट रेजिमेंट सेंटर पर इसका समापन हुआ। साथ ही कार्यक्रम में प्रतिभागियों को नियमित साइकिलिंग और व्यायाम के माध्यम से फिट रहने के लिए प्रेरित भी किया गया।

6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तापमान। इस सप्ताह बढ़ेगा तापमान, लेकिन अभी लू चलने की संभावना नहीं है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के साथ अब कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है। ऐसे में अगले दो दिनों तक मौसम थोड़ा शुष्क रहेगा। इसके बाद प्रदेश के उत्तरी भाग में हल्की वर्षा हो सकती है और सोमवार से पूरे सप्ताह में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। हालांकि अभी लू से थोड़ी आप लोगों को राहत रहेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार व मंगलवार को प्रदेश में कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है।

तिरुटीनाथ मंदिर में फसाद लाइटिंग स्थल निर्माण की प्रक्रिया शुरू। नाथ कॉरिडोर मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजना है। त्रिवेटी नाथ मंदिर में फसाद लाइटिंग के लिए बजट मिला है, टेंडर निकाला जा चुका है, इसलिए जल्दी इसका काम शुरू भी हो जाएगा। और नाथ मंदिरों में चल रहे पर्यटन विकास के कार्यों की लगातार निगरानी कराई जा रही है। पहले से चल रहे कार्यों को इस साल के अंत तक पूर्ण कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। नाथ कॉरिडोर में नाथ मंदिरों का पर्यटन विकास कराया जा रहा है। इसी कड़ी में पर्यटकों के ठहराव के लिए तिरुटी नाथ मंदिर में फसाद लाइटिंग यानी लाइट एंड साउंड शो भवन का निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। परियोजना की मंजूरी के बाद पर्यटन विभाग ने इसका टेंडर भी निकाल दिया है। तुलसी मठ, तपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, अलखनाथ मंदिरों का भी तेजी से पर्यटन विकास कराया जा रहा है।

सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली को मिला दूसरा स्थान। अप्रैल की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली को प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। विकास कार्यक्रमों में प्रदेश में जनपद चौथे स्थान पर रहा है और राजस्व में जनपद को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। विकास एवं राजस्व की ओवरऑल रैंकिंग में जनपद को जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह जी के निर्देशन में विभागीय अधिकारियों द्वारा किए गए परिश्रम के परिणाम स्वरूप ओवरऑल रैंकिंग में जनपद को भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ प्रदेश स्तर पर विकास कार्यों का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए गठित सीएम डैशबोर्ड पर इंटीग्रेटेड विभागों की सेवाओं, योजनाओं, परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह किए गए विकास कार्यक्रमों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग निर्गत की जाती है। जिलाधिकारी ने इस उपलब्धि पर समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए विकास एवं राजस्व कार्यक्रमों की प्रगति में निरंतर गति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

हम ओनली ऑन 100.4 FM पर। श्रोताओं, जैसा कि हमने कल मनाया मदर्स डे, सही बात तो यह है कि माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, माँ से ही सब दिन सबके होते हैं। लेकिन कोई नहीं, कोशिश तो की जा सकती है। जो लोग शायद भूल जाएं या उन्हें नहीं ध्यान रहे, तो इस बहाने अपनी माँ को तो याद कर ही सकते हैं। लेकिन जो माँ होती है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है रोल अदा करती है, गृहिणी के रूप में और माँ के रूप में, हर चीज़ में वो रोल अदा करती है। घर से बाहर एक वर्किंग वूमेन के रूप में भी अपना रोल अदा करती है। लेकिन एक, चाहे वो कितनी वर्किंग वूमेन हो, उसको संग संग प्लस गृहिणी तो उसको बनना ही पड़ता है। और गृहिणियों के लिए अपने लिए समय नहीं होता, बाकी सबके लिए उनके पास समय होता है। तो इसी उसमें कि अपनी सेल्फ केयर आप कैसे करें, ये बात तो मान लीजिए। जब आप अपनी हेल्प और अपनी केयर करेंगी, सेल्फ हेल्प करेंगी, तभी आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगी। अपना समय निर्धारित करें, दिन भर की भागदौड़ में कम से कम 15 मिनट तो निकाल ही लें कि इस दौरान अपनी पसंद का कोई गीत सुने, किताब पढ़ें या बस आराम करें। शारीरिक स्वास्थ्य, जो फिजिकल हेल्थ है आपकी, नियमित व्यायाम या टहलने के लिए 30-40 मिनट निकालें। स्वस्थ और पौष्टिक आहार लें, खुद की उपेक्षा बिल्कुल ना करें। पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7 घंटे की तो नींद आप ले ही लें। मानसिक शांति, जो मेंटल पीस है, मेडिटेशन, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, जो तनाव को कम करता है। दिन भर के काम के बीच में छोटी सी झपकी भी लें, जो आपको फिर रिस्टार्ट कर देती है, अगले काम करने के लिए तैयार कर देती है। स्वयं को पैम्पर करना, कभी कभी पार्लर भी जाएं तो चाकी अपनी देखभाल करें और अपनी पसंद की कोई चीज़ भी ले सकती हैं, जैसे नेल पेंट है, कुछ भी है। और कभी कभी क्या हो, जब आप बाहर जाएं तो अपनी पसंद की कोई चीज़ भी ज़रूर खा कर आएं। जब बाहर आप घूमने के लिए जाएं तो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी ले जाएं। और एक सबसे बड़ी बात, ना कहने की भी आदत डालें। हर काम के लिए सबके लिए हाजिर ना रहें, वो कभी कभी आपके लिए बहुत दुखदायी हो जाता है। आप उससे फिजिकल और मेंटली तो थकते ही हैं, फिर जब होता क्या, कोई आपको नहीं समझता है तो आपको लगता है कि हम इतना करते हैं फिर भी हमें कोई नहीं समझ रहा। कारण क्या है, शुरुआत आपसे ही हुई है, आप ही ने हर समय उनके लिए आप तैयार रहे, अब आप कर नहीं पाते हैं तो उनको बुरा लगता है। इसलिए ना कहने की भी आदत डालें, बच्चों का सहयोग लें। और अगर आप थक गई हैं तो घर के सदस्यों से कहें कि आप मेरी मदद करें। सुबह जल्दी उठकर काम निपटाएं ताकि शाम को खुद के लिए भी समय मिल सके। श्रोताओं, ये बात ठीक है, कुछ लोग लेट नाइट वर्क करते हैं या उनकी कहीं ड्यूटीज है या कोई भी काम है तो वो लोग अपना लेट नाइट सोते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना शेड्यूल रूटीन होता है। लेकिन सुबह का जल्दी उठना एक अपने आप में बहुत बड़ी अहम बात और अहम रोल अदा करता है। इस चीज़ को कभी आप सोचिएगा भी, वो और बात है कि आप अपने किसी कारणवश रूटीन ऐसा है, कोई किसी समय आ रहा है, किसी समय आ रहा है, आप नहीं कर पाते हैं अपने हिसाब से उसको जो है अमल में लाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश तो की जा सकती है कि सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं हम, तो उससे हमारा बाकी का दिन जो है बहुत अच्छा गुजरता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे लोकगीतों को। आज कलाकार हैं बीना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों को, आज कलाकार थी बीना। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम, प्रातः के 9 बजने वाले हैं, सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला।
1: कार्यक्रम दीपमाला लाया सेहत की पाठशाला।
2: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
3: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं

0: उपलब्ध हैं।
1: बरेली शहर का सबसे किफायती आईसीयू, अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन आईसीयू,
2: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
1: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फालिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
0: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
1: 9837000048।
3: सेहत की पाठशाला लेकर आया दीपमाला। जी हाँ, प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मुकेश कुमार पांडे और मेरे साथ मौजूद हैं दीपमाला अस्पताल के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: स्वागत है आपका भी मुकेश जी।
3: डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार बहुत खतरनाक कहा जाता है, लेकिन डेंगू के बारे में कई मिथक भी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप डेंगू स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, डेंगू बुखार क्या होता है?
4: देखिए, डेंगू एक वायरल फीवर है, यानी कि मच्छर द्वारा जनित है, जो मच्छर इस वायरस को, डेंगू वायरस को आदमी के शरीर में दे देते हैं। डेंगू वायरस चार प्रकार का होता है, जिसको सब वार कहते हैं, सब स्पीसीज, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। तो डेंगू बुखार के लक्षणों की अगर हम बात करें
3: जी,
4: इसके लक्षण की एक खास क्लासिकल विधि होती है, जिसे कहते हैं डबल माउंटेड हम्प। इसका मतलब ये कि डेंगू बीमारी में बुखार के संग हाथों पैरों में दर्द होता है
3: जी,
4: और जब बुखार उतर जाता है तो आदमी को बहुत ज्यादा कमजोरी होती है और डिहाइड्रेशन होता है। एक बार उतरने के बाद 2 दिन के बाद बुखार फिर से आ सकता है।
3: अच्छा।
4: और जब ये पहली बार बुखार निकल के जाता है और दूसरी बार बुखार आता है, इन दोनों के बीच का टाइम क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है
3: जी।
4: डेंगू बुखार की खासियत और है, ये कहा जाता है कि डेंगू खतरनाक बीमारी है। दरअसल देखा जाए तो डेंगू बहुत ही एक सिंपल बीमारी है। डेंगू के मरीजों में अगर 100 लोगों को बीमारी होगी तो सिर्फ 1% या 5% लोगों को लक्षण आएंगे, बाकी 90% से 95% तक लोग को मामूली वायरल फीवर की तरह होगा। देखिए, बाकी बुखार, वायरल बुखार, जिसे आप गले का वायरल बुखार सबसे ज्यादा जानते हैं
3: जी,
4: जो जिसमें खांसी, जुकाम और सिर में दर्द और हाथों पैरों में दर्द होता है, उस बुखार में, या टाइफाइड का बुखार हो जो पानी से फैलता है, या फिर आप और कोई बुखार मान लें, तो उनमें बुखार में और डेंगू बुखार और मच्छर जनित बुखारों में क्या फर्क है
3: जी, जी।
4: फर्क ये है कि जो एक मच्छर ये बुखार को फैलाता है, वो एक मच्छर एक रात में 300-300 बार बाइट करता है
3: जी,
4: यानी कि एक घर के अंदर अगर एक मच्छर है तो वो उस पूरे घर के सारे लोग को काट डालेगा। इसके माने ये हैं, जब डेंगू बुखार शहर में एक आदमी को आता है तो बहुत तेजी से उस पूरे 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर में एक मच्छर पूरे को फैला सकता है।
3: इसी को डेंगू एपिडेमिक कहते हैं।
4: देखिए, एपिडेमिक तो तब कहते हैं जब उम्मीद से ज्यादा फैलने लगे
3: जी,
4: मतलब बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ जाएं, तब एपिडेमिक कहते हैं। अब मेरा आशय ये था कि जो मच्छर जनित बुखार है वो बहुत तेजी से फैलते हैं
3: जी। डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार में कई लोग तो यूं ही सही हो जाते हैं, जैसा आपने भी कहा कि बहुत साधारण बुखार है, लेकिन कई लोग जो है वो बहुत सीरियस हो जाते हैं और उनकी जान तक पे बनाती है, ऐसा क्यों?
4: देखिए, पहली बात हम बताते हैं डेंगू बुखार की स्टेजेस
3: जी।
4: हालांकि अब WHO ने वो स्टेजिंग चेंज कर दी है, पर पहले हम डेंगू बुखार की 4 स्टेजेस मानते थे। पहला स्टेज जिसे अनस्पेसिफाइड वायरल फीवर कहते हैं, या जो लोग कहते हैं हमें वायरल बुखार हुआ है, उस बुखार में सिर्फ गले में हल्की सी खराश, हाथों पैरों में दर्द और मामूली हड़कन होती है
3: जी,
4: और मामूली सा बुखार आता है, प्लेटलेट काउंट भी अक्सर कम नहीं होती है। अब याद रखें, डेंगू बुखार अगर 100 लोग को होता है तो 90-95 लोग को सिर्फ ये वायरल बुखार की स्टेज हो चुकी होती है।
3: अच्छा।
4: यानी कि जो अगर हम इन लोग का, जिस समय शहर में अगर डेंगू फैला है या कुछ लोगों के डेंगू की रिपोर्टें आ रही हैं, तो ये जो वायरल फीवर वाले जो लोग आते हैं, इनकी अगर आप जांच कराएं PCR, तो इनको भी डेंगू निकल के आएगा।
3: अच्छा।
4: अब ये लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं मामूली दवा लेकर के
3: जी।
4: दूसरी स्टेज होती है जिसे हम डेंगू फीवर कहते हैं, डेंगू वायरल फीवर कहते हैं। इसमें प्लेटलेट काउंट कम होने लगती है, आदमियों को पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं, पॉटी से ब्लड आ सकता है, दांत से खून आ सकता है, या महावारी ज्यादा हो सकती है। ये डेंगू फीवर है
3: जी,
4: जिसमें प्लेटलेट काउंट कम है और ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरी स्टेज होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर। ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में ब्लीडिंग अलग से नहीं होती है, ब्लीडिंग तो डेंगू फीवर में ही होती है
3: जी।
4: डेंगू हेमरेजिक फीवर में कैपिलरी लीक होने की वजह से, नाड़ियों के गीला हो जाने की वजह से, शरीर से पानी नाड़ियों से निकल के लीवर में, पेट में, सीने में एडमिट होने

0: लगता है और बीपी कम हो जाता है, मरीज को चक्कर आने लगते हैं। ऐसे मरीजों को लीवर पे सूजन मिलेगी, सीधे हाथ के लंग पे पानी भरा हुआ मिलेगा और पैरों में भी सूजन आ सकती है। ऐसे मरीज डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, उनको बार बार प्यास लगती रहती है और बीपी कम होता है। बीपी कम होना डेंगू हेमरेजिक फीवर का मेन लक्षण है।
1: अच्छा।
0: और चौथी स्टेज होती है मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन या सीरोसाइटिस। ऐसी स्टेज में मरीज के लीवर, गुर्दे और सांस, तीनों चारों चीजें जो खराब होती हैं। इन चारों स्टेजेस के अलावा एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम।
1: जी जी।
0: डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कैपिलरी लीक यानी कि नाड़ियों के लीक करने की वजह से हो जाता है, पानी निकल जाता है। अच्छा मुकेश जी, हम एक बात आए मैं बताना चाहूंगे, दरअसल प्लेटलेट होते क्या है, आप जानते हैं क्या होते हैं प्लेटलेट्स?
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि

0: ऐसी स्टेज में मरीज के लीवर, गुर्दे और सांस, तीनों चारों चीजें जो खराब होती हैं। इन चारों स्टेजेस के अलावा एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम।
1: जी जी,
0: डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कैपिलरी लीक यानी कि नाड़ियों के लीक करने की वजह से हो जाता है, पानी निकल जाता है। अच्छा मुकेश जी, हम एक बात आए, मैं बताना चाहूंगा दरअसल प्लेटलेट होते क्या है, आप जानते हैं क्या होते हैं प्लेटलेट्स?
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि प्लेटलेट्स के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं और आप तो ये भी कहते हैं।
0: जी जी बिल्कुल, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं चोट लगने पे खुरंड बन जाता है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आप इस तरह से समझिए कि खुरंड के बहुत महीन महीन माइक्रोस्कोपिक टुकड़े हैं जो खून में घुले हुए हैं।
1: जी,
0: और कहीं पे चोट लगने पर वहां पे आके वो चिपट के खुरंड बना देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इन प्लेटलेट्स का पहला काम ये होता है कि कहीं से ब्लीडिंग हो तो ये उसको आके खुरंड वहां पे बना दें और रोक दें।
1: जी,
0: भले ही ब्लीडिंग इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल।
1: अच्छा,
0: और दूसरा काम होता है सरल भाषा में समझाने के लिए कि इन प्लेटलेट्स का काम होता है नाड़ियों की इंटीग्रिटी को बना के रखना। मतलब नाड़ियों में ये सीमेंट का काम करते हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे मान लीजिए किसी के घर में सिर्फ ईंटें हों और सीमेंट ना लगाओ या प्लास्टर ना हो तो क्या होगा, बाहर का पानी अंदर आ जाएगा, अंदर का पानी बाहर चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो मनुष्य की नाड़ियों से पानी लीक करने लगता है, और पानी लीक करने की वजह से आदमी को डिहाइड्रेशन होता है। हालांकि उसको कोई दस्त नहीं हुआ, कोई उल्टियां नहीं हुई, तब भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और उसको ऐसे मरीज को अगर आप ग्लूकोज चढ़ाएं भी तो भी वह ग्लूकोज नाड़ियों से निकल के पेट में सीने में भर जाता है। हमने अक्सर देखा है गांव देहात में कि डॉक्टर लोग वहां के जो वो खूब सारी बोतलें लगा देते हैं, और बोतलें अगर पहली स्टेज में लगाएं तो ठीक है, ये कैपिलरी लीक के बाद बोतलें लगाने से मरीज की सांस फूलने लगती है और पेट फूल जाता है। तो ये प्लेटलेट का असली काम ब्लीडिंग रोकना और कैपिलरी लीक रोकना है।
1: डॉक्टर साहब, कई जगह ये कहा जाता है कि प्लेटलेट जरूर चढ़ाई जाएंगी, जैसा आपने भी स्वीकार किया, लोग बोतल के अलावा प्लेटलेट चढ़ाने की बात भी करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट चढ़ाने की एकदम जरूरत नहीं होती, सच्चाई क्या है?
0: देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ।
1: जी,
0: प्लेटलेट्स तो को खुरंड के टुकड़ों की तरह समझिए।
1: बिल्कुल,
0: उनकी जरूरत तब है जब कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है।
1: अच्छा,
0: अगर आप पेशेंट को कहीं से बड़ी ब्लीडिंग नहीं हो रही है और आप प्लेटलेट चढ़ा दें तो वो बजाय चोट पे चिपकने के वो फेफड़ों में चले जाएंगे, वहां पे चिपकेंगे, वहां पे इन्फेक्शन और निमोनिया करेंगे। और दूसरी बात है कि अगर आप कोई प्लेटलेट चढ़ाएं तो उनका असर सिर्फ 6 से 8 घंटे तक ब्लड में रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है किसी की प्लेटलेट कम है और प्लेटलेट चढ़ा के आप उनकी संख्या बढ़ा लें। अगर आप आज प्लेटलेट चढ़ाएंगे, तुरंत जांच करेंगे 1 घंटे बाद तो प्लेटलेट आपकी बड़ी हुई मिलेंगी, लेकिन अगले दिन सुबह करेंगे तो प्लेटलेट फिर उतनी ही मिलेंगी जितनी पहले थी। तो प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत सिर्फ तब होती है जब बहुत मैसिव, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, किसी को उल्टियों में खून आ रहा हो या लगातार लाल टट्टी आ रही हो या ब्लीडिंग उसकी हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रही हो।
1: ये तो डॉक्टर साहब टेक्निकल बात है, तकनीकी बात है, और ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बताइएगा जो डेंगू के मरीज हैं उनका इलाज किस तरह होता है और क्या खास बातें ध्यान रखनी होती हैं डेंगू के मरीजों को?
0: डेंगू 4 वायरसेस का होता है, डेंगू 1, डेंगू 3, डेंगू 4। जिसको जीवन में पहली बार डेंगू हुआ तो 100 में से 90 लोगों को सिर्फ वायरल बुखार की तरह होके चला जाएगा। इन्हीं लोगों को अगर दूसरी बार डेंगू हुआ तो वो वायरल फीवर की तरह नहीं होगा, तो उसमें उसकी विविष्टता बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा सीरियस होके होगा। क्योंकि एक बार डेंगू होने से उस टाइप के डेंगू के लिए जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है, रेजिस्टेंस मिल जाता है, लेकिन बाकी तीनों प्रकार के डेंगू वायरस से मनुष्य क्रॉस रिएक्शन करने लगता है।
1: अगली बार अगर डेंगू होता है तो वो ज्यादा खतरनाक होगा।
0: जी हाँ, इसीलिए जब डेंगू के सीजन में किसी को वायरल फीवर हो तो उन्हें डेंगू की जांच करा लेनी चाहिए, और वो PCR जांच से ही सिद्ध होगा। उन्हें पता चल गया कि आपका जो वायरल फीवर था वो दरअसल डेंगू था, तो अगले साल डेंगू के मौसम में आप बच के रहिए।
1: डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज समय पर अस्पताल आ जाता है, उसका इलाज आप शुरू कर देते हैं, तो कितना समय तक लग सकता है डेंगू के मरीज को ठीक होने में?
0: ये निर्भर करता है वो कौन सी स्टेज में आया। अब आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि इतने ज्यादा अस्पताल गांव देहात में खुल गए हैं कि ज्यादातर लोग अपने जानने वाले डॉक्टर से ही इलाज कराते हैं। हमारे पास तक वो मरीज आते हैं जिनकी प्लेटें बहुत कम हो गई, जिनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, गुर्दे खराब हो गए या लीवर खराब हो गया। लेकिन अगर प्रथम या सेकेंड स्टेज में कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो वो ये जान लें कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज डेंगू की यानी कि वायरल फीवर और डेंगू फीवर की स्टेजेस में उसका सबसे बढ़िया इलाज है ORS पीता रहे, तो यानी कि नमक पानी का घोल पीता रहे, तो

0: को कोई भी कमी नहीं होगी और उसका फीवर बिल्कुल मामूली वायरल की तरह होके चला जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, चूंकि इस समय बुखार का सीजन लोग कह रहे हैं और देखने में भी आ रहा है बुखार के बहुत मरीज आ भी रहे हैं, क्या खास बात बताना चाहेंगे आज की सेहत की पाठशाला जो दीपमाला लेकर आया है उसमें क्या संदेश है आपका हमारे श्रोताओं के लिए?
0: मेरा संदेश यह है कि आज के सीजन में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर बुखार हो रहा है तो गले में खराश भी हो, बदन में दर्द भी हो, तो आप फौरन ही ORS पीना शुरू कर दें और अपनी प्लेटलेट्स की और CBC की जांच कराएं। कभी भी अकेले प्लेटलेट्स की जांच ना कराएं, हमेशा CBC की जांच कराएं और जो है बिना जांच के दवाई ना लें।
1: अक्सर जब बुखार होता है किसी भी व्यक्ति को तो मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल की गोली लेकर खा लेते हैं, क्या सुझाव है डॉक्टर साहब, क्या ऐसा करना उचित है और अगर पैरासीटामोल ही मेडिकल स्टोर से लेकर खानी है तो कब तक खा सकते हैं?
0: देखिए आप, मैं फिर से दोहराता हूँ, बुखार कोई बीमारी नहीं होती, बुखार तो बीमारी का लक्षण है। आप पैरासीटामोल खा के बुखार को दबा देंगे लेकिन बीमारी नहीं जाएगी। आप पैरासीटामोल खाएंगे तो 6 से 8 घंटे तक आपका बुखार कम रहेगा, बदन का दर्द कम रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ पैरासीटामोल खा के काम नहीं करना है, आपको अपनी बीमारी का भी इलाज करना है। बुखार बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी का लक्षण है। बुखार तब होता है जब आपका शरीर बीमारी से लड़ता है। बीमारियां होती हैं डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, स्क्रब टाइफस, लेप्टो, तो जब तक आप मूल बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तब तक दवाई बंद करते सही बुखार बार बार आने लगेगा।
1: डॉक्टर साहब, डेंगू का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, एक कपकपी सी होने लगती है, इतना डरावना है डेंगू नाम ही, लेकिन आप कहते हैं डेंगू से डरना मना है।
0: जी बिल्कुल सही है। देखिए डरते समय आदमी जो है मिस्टेक्स करता है, डर की वजह से आदमी उत्तेजना में आ जाता है और गलत फैसले लेता है। डर की वजह से लोग प्लेटलेट्स पे प्लेटलेट चढ़ाते हैं और डर की वजह से लोग प्लेटलेट कम होने पे डॉक्टर पे सवार हो जाते हैं। तो डेंगू बुखार में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरा मानना तो है किसी भी बीमारी में डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है, मारे डेंगू के डर के लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
1: तो सेहत की पाठशाला में आज आपने जाना कि क्या है डेंगू बुखार और किस तरह से ये प्रभावित करता है लोगों को, कितना खतरनाक होता है। डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के साथ अगली सेहत की पाठशाला लेकर आएगा एक बार फिर दीपमाला। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपमाला लाया सेहत की पाठशाला।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।
4: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली। आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 MHz पर।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना जब तक है जान इस फिल्म का गाना, हर्षदीप कौर की आवाज, गुलजार के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।

0: लीजिए प्रस्तुत है फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। फोकस नेत्रालय जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय राजेंद्र नगर निकट डेलापीर तालाब बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50।
1: आंखें तेरी झील से गहरी जिनमें

0: डूबे सपनों के मोती, पलकों की ओट में छुपी है नटखट सी एक कहानी थोड़ी, काजल की रेखा से खींचे दिल पर नाम सारे, इन आंखों में बसते हैं चांद और सितारे।
1: श्रोताओं, जाने तो जहाने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। श्रोताओं, आज हमारे इस कार्यक्रम में विषय है आंखों में मोतियाबिंद और उसका समाधान। डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: मोतियाबिंद का पहला संकेत क्या है, तो आइए पूछते हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल से, तो आखिर मोतियाबिंद है क्या?
2: मोतियाबिंद के बारे में सबसे जरूरी चीज एक जो मैं ये कहना चाहूंगी कि मोतियाबिंद जो है वो बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद जो है वो आंखों के उम्र का बदलाव है। आंख जैसे शरीर बढ़ रहा है, उम्र के साथ में शरीर में बदलाव आ रहे हैं उम्र के साथ में, वैसे ही मोतियाबिंद भी एक आंखों का बदलाव है और बीमारी नहीं है। जैसे कि हम बड़े होते हैं, हमारी आंख में बदलाव होते हैं। सबसे पहले बदलाव जो शुरू होता है वो 35 से 40 की साल की उम्र में शुरू होता है और उसको हम कहते हैं पास का नजर का चश्मा आना। ये पास का नजर का चश्मा जो है, इसको हम जो आता है, इस चेंज को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि हमारे जो आंख जो है पास का कोई भी काम पढ़ने में, उसको फोकस करने में उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। ये क्षमता खत्म इसलिए होती है क्योंकि आंख का जो लेंस है वो थोड़ा सा टाइट होने लगता है, जिसकी वजह से जो रेज हैं जो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए वो पर्दे पे फोकस ना होके पर्दे के पीछे फोकस होती है और इससे हमें पास का देखने में दिक्कत होने लगती है। तो सबसे पहला जो आंख में 35 से 40 साल की उम्र में बदलाव आता है उसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। इस प्रेस बायोपिया में आपको पास का देखने में दिक्कत होना खासतौर से शुरुआती दौर में, क्या कहते हैं, थोड़ा सा जब लाइट कम हो जाती है, आसपास के चारों तरफ की लाइट कम होती है तो देखने में ज्यादा दिक्कत होती है, जबकि वही चीज जब आप धूप में जाएंगे तो थोड़ा सा सही लगता है आपको। पास का पड़ेंगे अगर बहुत लंबे समय तक तो आंखों पे जोर पड़ना, आंखों में थकान, सर में दर्द, ये सारी दिक्कतें, और फिर क्या कहते हैं ये दिक्कतें आने लगती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 20 डायोप्टर के आसपास उसकी आंख में क्षमता होती है, वो दूर और पास का आंख जो है अकोमोडेट कर ले उसके हिसाब, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे ये क्षमता खत्म होती जाती है और 60 साल की उम्र पे लगभग बिल्कुल क्षमता खत्म हो जाती है पास का फोकस करने के लिए।
1: जैसा कि आपने बताया कि देखने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन आयु के साथ भी तो कुछ बदलाव होते हैं, तो कैसे जाने कि जो हमारे साथ बदलाव हो रहे हैं उम्र के साथ या मोतियाबिंद के कारण हो रहे हैं?
2: मोतियाबिंद भी और उम्र के बदलाव भी दोनों ही एक उम्र के बदलाव की श्रेणी में ही आता है। 35 से 40 के साल की उम्र में जब आपको पास का देखने में दिक्कत होने लगे, आंख में भारीपन लगने लगे, या आपको ये महसूस हो कि मैं घर के अंदर हूँ तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है और बाहर धूप में पढ़ रहा हूँ तो मुझे, तो फिर आपको इसीलिए 40 साल की उम्र पे एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 40 साल पे आपको एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी आंख का इवैल्यूएशन कराना ही है। क्योंकि जो बहुत सारे बदलाव है, जैसे चश्मे का नंबर है, मोतियाबिंद है, काला पानी है, समलवाई जिसको हम कहते हैं, सारे बदलाव शुरू होने लगते हैं, जिसके लिए हमें एक बारी नॉर्मल रूटीन में 40 साल की उम्र में जाके दिखाना जरूरी रहता है।
1: जी, यानी साल में एक बार आंखों के डॉक्टर को जरूर अपनी आंखें दिखानी चाहिए, चेक करानी चाहिए।
2: बिल्कुल। अब इसी तरीके से जब हम आंखों में उम्र के हिसाब से बदलाव की बात कर रहे हैं तो दूसरा जो बदलाव अब शुरू होता है, शुरू में तो 35 से 40 साल की उम्र में शुरू हुआ प्रेस बायोपिया, पास का चश्मे का नंबर आना। 45 से 50 साल की उम्र में शुरू होता है मोतियाबिंद का डेवलप होना। मोतियाबिंद जो है लेंस होता है, ये लेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि रोशनी सारी की सारी पर्दे तक पहुंच पाए, लेकिन इसके जो बनावट में फाइबर होते हैं, ये फाइबर्स धीरे धीरे से कमी के कारण, न्यूट्रिशन की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण, ये जो है कंडेंस होने लगते हैं, जिसको कहते हैं वो है, और सफेद होने लगते हैं, जिसकी वजह से सफेद मोतियाबिंद का डेवलपमेंट होता है और इसकी वजह से हमारे को धुंधलापन आना शुरू होता है। अब ये धुंधलापन मोतियाबिंद की वजह से है या ये धुंधलापन उम्र का बदलाव की वजह से है, इसके लिए एक बार आपको अस्पताल आके अपना इवेल्युएशन करवाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये दोनों में से किस कारण की वजह से है।
1: तो डॉक्टर साहब, किस तरह की जांचें होती हैं, क्या कोई ऐसी मशीन होती है या आप विशेषज्ञ लोग अपने आप ऐसे देख करके बता देते हैं?
2: जी, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन हम उसको कहते हैं, एक हमारे पास मशीन होती है, उसको उससे हम देखते हैं और उससे देख पाते हैं कि जो आंख में लेंस है वो लेंस में कितनी सफेदी आई है, कितनी सफेदी नहीं आई है, और इस एग्जामिनेशन के दौरान हमें पता चल जाता है कि जो रोशनी में कमी है वो मोतियाबिंद की वजह से है या ये रोशनी में कमी सिर्फ पास के चश्मे की वजह से है।
1: डॉक्टर साहब, पता चल गया कि मोतियाबिंद है।

0: तो फिर आपकी क्या सलाह होती है मरीजों के लिए?
1: वो फिर से मैं कहूंगी कि उम्र का बदलाव है, मोतियाबिंद होना ही है, सबको ही होना है। तो जब मोतियाबिंद का पता चल जाता है कि मोतियाबिंद है, कितना है मोतियाबिंद इस पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या आगे करना है। अगर मोतियाबिंद शुरुआती दौर पे है, शुरुआती दौर पे मोतियाबिंद जो है आपका चश्मे से उसमें आपको बेहतरी हो जाती है निगाह में और आपको बेहतर दिखने लगता है, तो कुछ समय के लिए आप चश्मा भी लगा सकते हैं, तब ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हमने कह दिया आपको कि मोतियाबिंद आपकी आंख में है, अभी जरूरत नहीं है, तो आप बेफिक्र होके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। हर तीसरे महीने आके आपको दोबारा से चेक कराने की जरूरत है कि मोतियाबिंद बढ़ तो नहीं रहा है। अगर मोतियाबिंद बढ़ रहा है या आप जो चश्मा लगा रहे हैं उस चश्मे से आपको फिर से धुंधलापन आ रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मोतियाबिंद अब बढ़ रहा है। वो तथ्य खत्म हो चुका है कि पहले कहा जाता था कि मोतियाबिंद पकाकर ही ऑपरेशन किया जाए। उस जमाने में मोतियाबिंद पकाया जाता था जिस जमाने में चीरा लगता था, जिस जमाने में टाका लगता था। जो हम अपना क्या कहते हैं ऑपरेशन कर रहे हैं, वो बिना टीके, बिना चीरे, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी के कर रहे हैं, और इसमें कोई भी चीरा ना लग के मात्र एक छोटे से छेद से ही मोतियाबिंद को निकाला जाता है। तो
0: जी
1: जब हम मोतियाबिंद को एक छोटे से छेद से ही निकाल रहे हैं, तो उसके लिए ये कथन बिल्कुल चेंज हो गया है। मोतियाबिंद जितना पकाया गया उतना एक ऑपरेशन कराने के बजाय अब ये सेंटेंस चेंज होके आ गया है कि मोतियाबिंद जितना कच्चा उतना अच्छा। तो आप जितने
0: अच्छा
1: कच्चे मोतिया पे ऑपरेशन करवाएंगे आपकी रोशनी उतनी बेहतर आएगी, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए फेको विधि द्वारा, दूरबीन द्वारा जब हम छोटे से छेद से ऑपरेशन करा रहे हैं, तो कच्चा मोतिया पे ही वो ज्यादा सक्सेसफुल है, और तभी हमें करा लेना चाहिए। हमें पकने का उसका इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50।
0: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बिना टाका, बिना पट्टी के छोटे से निशान के द्वारा ऑपरेशन करते हैं, तो थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे श्रोताओं को कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप कैसे करते हैं। हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन पहले कैसे होता था और अब कैसा होता है, क्या अंतर है पहले और अब में।
1: चीरा लगने वाले और बिना चीरे वाला ये ऑपरेशन है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। चीरे में हम क्या कहते हैं 6 से 7 mm का चीरा लगाया करते थे। उस चीरे लगाने से आंखों में लाली, गड़न, ऑपरेशन के बाद के परहेज, क्या कहते हैं ऑपरेशन के बाद चश्मे का नंबर का आना, ये सब क्या कहते हैं बहुत हुआ करता था। लेकिन जब से हमने इसको एक मात्र छोटे से छेद से द्वारा करने लगे हैं, तो क्या कहते हैं इसमें आंखों में हम जल्दी अपने ऑपरेशन के बाद अस्पताल, अपने उसी दिन हमें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, फौरन 1 घंटे के अंदर बिना पट्टी के भी हम घर जा सकते हैं। फिर हम तीसरे से चौथे दिन ही अपने काम पर भी जा सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से काफी चेंज हो चुकी है। अब एक बात और ये भी है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर्जन के जो क्या कहते हैं कैलिबर है, क्योंकि सर्जन कितना अच्छा ऑपरेशन करता है, उसका हाथ कितना अच्छा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है मशीनों पे। तो इसी वजह से हमने सबसे लेटेस्ट जो आप अमेरिका में मशीन पाएंगे, वही मशीन हमारे पास भी अवेलेबल है। आपको कहीं पे भी जो विश्व स्तरीय जो क्या कहते हैं मशीनें और विश्व स्तरीय आंखों में डलने वाले जो लेंसेज हैं, वो अवेलेबल अपने पास में है। यही सोचते हुए कि कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन है वो अपने मशीन पे भी डिपेंडेंट है, इसलिए मशीन द्वारा कोई गलती ना हो, इस वजह से क्या कहते हैं बेस्ट मशीन का अपने पास है।
2: जी, फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050।

0: मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50। लेंस की बात आती है, जब आप ऑपरेशन करते हैं उसके बाद लेंस डालते हैं, तो कैसे चुनाव करते हैं आप कि इस आंख में ये लेंस सूट करेगा या ये लेंस लगेगा, कैसे आप विशेषज्ञ लोग चुनाव करते हैं?
1: मोतियाबिंद में बहुत तरीके के लेंसेज होते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पे हम उसको विभाजित करें तो होते हैं एक मोनोफोकल लेंसेज और मल्टीफोकल लेंसेज। मोनोफोकल लेंसेज में ये होता है कि हम दूर का देख पाते हैं, दूर का ही सिर्फ हम देख पाते हैं, पास के लिए हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है। जब हम चीरे वाला ऑपरेशन करते थे तो कंपलसरी होता ही था कि हमें चश्मा आए, लेकिन अब जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिर्फ ये नहीं रह गया है कि हमने मोतिया को निकाला और हमने लेंस को डाल दिया। एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं और उसमें ये है कि हम ऑपरेशन को इस तरीके से करने की कोशिश करी जाती है कि ऑपरेशन के बाद चश्मे का नंबर ना आए या फिर ना मात्र आए। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये मोनोफोकल लेंसेज के साथ साथ अब मल्टीफोकल लेंसेज भी डेवलप हो गए हैं, जिसमें दूर के साथ साथ पास के लिए भी चश्मे लगाने की जरूरत नहीं होती है। आजकल लेटेस्ट साल भर पहले ही एक लेंस लॉन्च हुआ है, विश्व में लॉन्च हुआ है और इंडिया में भी लॉन्च हुआ है। वो लेंस जो है दूर के साथ साथ बीच की दूरी और पास की दूरी, मतलब एक तरीके से वो आपको आंख को वैसे ही देखते हैं जैसे कि हम नॉर्मल आंख से देखते हैं जब हमारी आंख में मोतियाबिंद नहीं हुआ करता। इस लेंस को ट्राईफोकल लेंस कहते हैं, जो कि हर दूरी पे आपको देखने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये ट्राईफोकल लेंस जो अमेरिका में अवेलेबल हैं, जो पूरे इंडिया के बाहर भी पूरे विश्व स्तरीय जो लेंसेज हैं, ये भी लेंसेज भी हमारे पास में अवेलेबल है, ताकि आपको हर तरीके से देखने की, जिस तरीके से आपका दिनचर्या है, जिस तरीके से आपका काम है, उस तरीके से आप अपना लेंस को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सिर्फ दूर के लिए ही जरूरत है या दूर के साथ साथ पास की भी जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब, हम लेंस की बात करते हैं, लेंस लगाया जाता है, क्योंकि हमने सुना है कि लेंस एक बार ही पड़ता है, तो क्या आप सलाह देते हैं कि ये लेंस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए?
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये सब लोगों को इस बात को समझना बहुत जरूरी है जो कि आपने समझा है ये बात कि लेंस को बार बार नहीं डाला जा सकता है। तो इसलिए जो भी हम चुनाव करें वो सबसे बेहतर और बेस्ट अपनी आंख के हिसाब से चुनाव करें। अब ये जब हम आंखों की जांचें करते हैं तो आंखों की जांचों के दौरान हमें पता चलता है कि हमारी आंख की बनावट किस तरीके से है, और उस बनावट के हिसाब से हमें जो है क्या कहते हैं, अगर एस्टिगमेटिज्म है या हमारा सिलेंडर का नंबर हमारी आंख में है तो हमारे को मोनोफोकल लेंस डलना है या हमारे को टॉरिक लेंस डलना है। कई तरीके के लेंसेज होते हैं जिससे हमें एग्जामिनेशन के दौरान या जांचों के दौरान हमें इस बात का पता चलता है कि हमारी आंख के लिए सबसे बेस्ट लेंस कौन सा है। अब जैसे किसी को शुगर है या किसी को बहुत कम उम्र में कई बार चोट की वजह से या किसी और वजह से 20 साल की उम्र पे ऑपरेशन हो रहा है, 40 साल की उम्र पे ऑपरेशन हो रहा है, या किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है, पर्दे खराब है शुगर की वजह से, तो जब पर्दे सेंसिटिव होते हैं तो एक पीले रंग का लेंस अलग आता है। वो पीले रंग का लेंस अगर हमारे आंख में लगाते हैं तो उससे हमारे अल्ट्रावायलेट रेस पर्दे पे नहीं पहुंचती हैं और वो हमारा पर्दा लंबे समय के लिए प्रोटेक्टेड रहता है। तो जो सेंसिटिव पर्दे हैं, जिनकी आंखों में पर्दे में काला पानी है, समलवाई है, जिनके पर्दे में मैकुलर डिजनरेशन है या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये सब लोग जो है पीले तरीके का जो लेंस होता है वो डलवा सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है, लेंसेज जो है वो बहुत तरीके से है, रोशनी हर लेंस में आती है, ऐसा नहीं है कि रोशनी जो है वो लेंस में नहीं आती है, लेकिन हर लेंस की क्वालिटी अलग अलग है। हम जो है दूर का देख पाएंगे हर लेंस में, लेकिन जो बेहतर लेंस है जिनमें फिल्टर लगा हुआ है उनमें क्वालिटी ऑफ विजन, मतलब देख तो हम पाएंगे दूर का, उसमें भी जो कम अच्छे क्वालिटी के लेंसेज है उसमें भी हम दूर का देख पाएंगे, लेकिन जो बेहतर लेंसेज हैं उनमें रंगों में क्या अंतर है। लाल रंग आपको लाल रंग ही दिखेगा, फीका लाल नहीं दिखेगा। जो अपने क्या कहते हैं कम गुणवत्ता वाले जो लेंसेज हैं, आसमान नीला नीला सा दिखाई देता है, लेंस के बाद जो है फिर वो झिल्ली बनने लगती है, वो झिल्ली की सफाई के लिए फिर आपको अस्पताल में दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है। जो आप देख रहे हैं बढ़िया लाल बढ़िया पीला, वो आपको बढ़िया नहीं फीका फीका सा मालूम पड़ता है। जिस तरीके से बनावट है, जिस तरीके से किसी चीज की बनावट है, वो उस तरीके से ना मालूम पड़के थोड़ी सी भिन्न मालूम पड़ती है। तो जो क्वालिटी है विजन की उसमें अंतर बहुत रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है मोटा मोटा सबको दिखाई देगा हर तरीके के लेंसेज। जो अच्छी क्वालिटी के लेंसेज हैं, जो अच्छी गुणवत्ता वाले लेंसेज हैं, उसमें आपको रंगों में पहचान है, कंट्रास्ट में पहचान है, रात में जो है किसी भी बल्ब है, बल्ब के चारों तरफ जो रोशनी है वो रोशनी फटी फटी सी नहीं मालूम पड़ेगी अच्छे गुणवत्ता वाले लेंसेज में। तो ये डिफरेंस होता है। और जो और

0: अच्छे वाले लेंसेज हैं, उसमें दूर के साथ साथ आपको पास के लिए भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका पास का काम कुछ लोगों का ज्यादा रहता है, जिनका सिलाई बुनाई का काम ज्यादा है, जिनका लिखा पढ़ी का है, जो पोएट है या जो लेखक लोग हैं, पास के काम की ज्यादा जरूरत है, उनको ये एडवाइस ज्यादा रहता है कि आप जो है मल्टी फोकल लेंस या ट्राई फोकल लेंस डलवाएं, ताकि आपके पास के लिए आपको चश्मे की जरूरत ना पड़े। जो लोग हैं, किसान लोग हैं, जिनको दूर का ही खेतों में ही काम है, दूर का देखने का काम है, वो मोनोफोकल लेंस डलवाएं। और फिर बाद में कौन सा लेंस डलना है, कौन सा लेंस नहीं डलना है, ये हम आंखों की कुछ जांचें करते हैं और जांचों में दौरान पता चलता है कि आंख की बनावट किस तरीके से है, और उस बनावट के हिसाब से ही आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपकी आंख के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। अब जो जांच करते हैं, ये जांच जो है आजकल एक इसके लिए भी लेटेस्ट टेक्निक आई है, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप मोतियाबिंद को निकालें और लेंस को डाल दें। अब हम लेंस इस तरीके से डालते हैं या ऑपरेशन को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आंख में लेंस पड़ने के बाद चश्मे का नंबर ना आए। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमको ऑपरेशन इस तरीके से उसको क्या कहते हैं डिजाइन करने का, या इस तरीके से हम ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं कि वो क्या कहते हैं ऑपरेशन के बाद चश्मे का नंबर ना आए। और ये सुविधा अपने पास में फोकस नेत्रालय में अवेलेबल है। कुछ लोगों की आंख की बनावट ऐसी होती है कि उन्हें जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आमूमन तौर पर 95% से 97% तक क्या कहते हैं जरूरत नहीं पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है वैसा हमें मानना भी चाहिए ना, तभी तो आंखें सुरक्षित रहेंगी और आंखों की रोशनी बनी रहेगी। लेकिन लेकिन अभी मिलते हैं बस छोटे से एक ब्रेक के बाद।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50।
1: फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम जान है तो जहान है में। जी डॉक्टर साहब।
3: डॉक्टर साहब, आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन बाद जो अच्छा लेंस लगा दिया उसमें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा लगता है कि हम बचपन में या किशोरावस्था में हों और चश्मे की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर बजट की बात भी आती होगी क्या कुछ?
0: देखिए, हर तरीके का लेंस फोकस में अवेलेबल है। फिर से मैं ये कहूंगी कि पॉकेट फ्रेंडली ना देखते हुए, है ना, हमें उस लेंस पे जाना चाहिए जो हमारी आंख के लिए बेस्ट है। क्योंकि हो सकता है आज की तारीख में हमारे को 2-4-5 हजार रुपए में बहुत अंतर मालूम पड़े, पर जब हम आगे चल के लेंस एक बारी आंख में पड़ गया वो दोबारा नहीं पड़ सकता। तो इसीलिए जो कि बेस्ट लेंस है वो डलवाना चाहिए, क्योंकि शायद आज 5,000 रुपए की कीमत बहुत हो, लेकिन वो जो रुपए है वो जब हम अगले 20 साल की बात कर तो वो 5,000 रुपए का कोई मायने नहीं।
3: जी डॉक्टर साहब, आंखों की बात होती है तो आंखें तो अनमोल है, जिससे ये सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखते हैं।
0: बिल्कुल, आंख है तो जहान है। तो इसलिए क्या कहते हैं जरूरी ये है कि हम बेस्ट से बेस्ट लेंस पड़वाएं, बजाय ये कि हम जो पॉकेट फ्रेंडली है वो पड़वाएं।
3: डॉक्टर साहब, बात चल रही है मोतियाबिंद के ऑपरेशन की, तो लोग बहुत डरते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि कोई ऐसी दवा हो जो आंखों में ड्रॉप डाल लें ताकि मोतियाबिंद बने ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? ये तथ्य क्या मिथ्या है?
0: ये तथ्य नहीं है, ये मिथक है कि ड्रॉप से मोतियाबिंद कट जाएगा। फिर से कहूंगी मैं, आंख में मोतियाबिंद उम्र का बदलाव है। जैसे बाल सफेद हो रहे हैं वैसे लेंस सफेद हो रहा है। तो इसलिए कोई भी ऐसी ड्रॉप नहीं बनी है, कोई भी ऐसा दवाई नहीं बनी है जो उम्र को रोक दे या उम्र के बदलाव को रोक दे। जब उम्र बढ़ना नहीं रख सकती, उम्र के बदलाव नहीं रुक सकते, तो किसी भी तरीके से हमारे आंख में जो मोतियाबिंद डेवलप हो रहा है वो नहीं रुकता है। लेकिन अगर हम पौष्टिक आहार खाएंगे, आंखों का व्यायाम करेंगे, आंख की देखभाल करेंगे, तो हो सकता है कि जो बदलाव आज 40 साल की उम्र में भी आजकल लोग आके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं, वो बदलाव 60 साल की उम्र में हो, अगर हम आंखों का ध्यान रखेंगे। लेकिन जो उम्र के बदलाव है वो तो होने ही है, मोतियाबिंद होना ही है, और मोतियाबिंद का एकमात्र है ऑपरेशन।
3: डॉक्टर साहब, क्या खाने पीने की चीजें वो कौन सी हैं जिनसे जिससे आंखों की रोशनी बरकरार रहे और ये मोतियाबिंद जैसी बला टल जाए? क्या कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं?
0: आंख के लिए रंग बिरंगी चीजें, क्योंकि आंख रंग से जुड़ा हुआ है, तो रंग बिरंगी चीजें जो हैं जैसे

0: दाल, फल और सब्जियां, गाजर, अनार, चुकंदर, सेब, फिर हरी चीजें जैसे कि हमारा साग है, और पीली चीजें जैसे कि संतरा है, या ये सब चीजें हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतर रहती हैं। फिर एग है, अगर हम नॉनवेज की बात करें, फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, ये सब चीजें हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। आजकल आप अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, आंखों के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं कि आंखों के ताकत की गोलियां होती हैं। इन आंखों की ताकत की गोलियों का आप साल में एक बारी कोर्स कर सकते हैं, मतलब साल में एक रोजाना एक गोली नाश्ते के साथ खाकर क्या कहते हैं, एक साल में एक बारी ये कोर्स कर लिया, तो उससे आंखों में ताकत बनी रहती है। आंखों में ताकत बनी रहती है तो ये बदलाव जो है ये खत्म नहीं होते हैं, लेकिन डिले हो जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आंखों की सर्जरी में समय लगभग कितना लगता होगा?
0: मोतियाबिंद की सर्जरी में मात्र 10 मिनट लगते हैं ऑपरेशन में, और ऑपरेशन के 15-20 मिनट या आधे घंटे में ही आप अपने घर वापस जा सकते हैं खुद पैदल चलकर। इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए वैसे ही आप तीसरे दिन से अपने ऑफिस जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बचाव रहता है वो धूल मिट्टी धुआं पानी से रहता है, ये आपकी आंख में ना जाए अगर इस चीज का आप परहेज करते हैं, तो तीसरे दिन से आप 90% अपने सारे रूटीन के काम कर सकते हैं।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90-68-80-50-50। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आंखों की रोशनी सही रहे, कोई समस्या ना हो?
0: ऑपरेशन के बाद जो सबसे जरूरी चीजें हैं उसमें ये सबसे पहले ये है आंखों की सफाई। आंखों की सफाई के लिए हमको क्या कहते हैं, भगोने में पानी लेके पानी को खोलाना है, उसमें रुई के टुकड़े डालने हैं, रुई का टुकड़ा खोल जाए, हाथ धोकर रुई को निचोड़ कर आंखों की सफाई दिन में एक बार करनी है। तो इसलिए आंखों की सफाई पहली चीज है जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा, आंख में पानी नहीं जाना चाहिए, आंख में पानी ना जाने के लिए गर्दन से नीचे हमको नहाना है।
1: डॉक्टर साहब, लगभग कितने दिनों तक गर्दन से नीचे तक नहाना चाहिए?
0: एक हफ्ते तक गर्दन से नीचे हमको नहाना है। तौलिए को निचोड़कर चेहरा और सर को पोंछ सकते हैं, आंख में पानी नहीं जाना चाहिए। एक हफ्ते के बाद आप सर से नहा सकते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि साबुन का पानी आंख में ना जाए।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90-68-80-50-50।
0: फिर नियमित रूप से जो डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के बाद दवाइयां दी हैं, वो दवाइयां ले। ये दवाइयां जो आप ले रहे हैं, इनके साथ अगर आपको शुगर है, बीपी है या कोई और चीज है, वो भी आप ले सकते हैं। काला चश्मा हर समय लगा कर रखना है, ताकि क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से आंख में धूल मिट्टी या धुआं ना जाए। लेडीज हैं, उनको मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि किचन से थोड़ा दूर रहें, लेकिन छौके लगाने वाला काम नहीं करना है। सब्जी काटना है या किचन के बाहर वाला कोई चीज है तो वो काम अपना कर सकते हैं, और रूटीन में ही दूसरे दिन ही क्या कहते हैं आप अपना।
1: सुनो श्रोताओं, अपने डॉक्टर अनुप्रिया अग्रवाल जी का मतलब है कि अपना सारा काम जल्द ही कर सकते हैं।
0: मोटे तौर से तीसरे या चौथे दिन से आप अपना 95% 95% आप अपना सारा काम।
1: डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है, क्या उन लोगों को भी समय समय पर डॉक्टर साहब को आंखें दिखाने की आवश्यकता है, आंखों को चेक कराने की आवश्यकता है क्या?
0: नहीं, अगर हम बेहतर अच्छे गुणवत्ता वाले लेंस डलवाते हैं तो उनमें ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। आप एक बार ही लेंस डलवा लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर आपको चश्मे का नंबर अगर आता है तो वो दे देता है, या हम मोनोफोकल डलवा रहे हैं तो पास का नंबर जो आ रहा है वो दे देता है, उसके बाद ज़रूरत नहीं होती है जब तक आपको अपनी दूसरी आँख के बारे में नहीं बनवानी हो। साल में एक बार दिखाना तब रहता है जब अगर आपको शुगर है, अगर आपको बीपी है तो उसकी वजह से पर्दे में कोई बदलाव हो रहे हैं, या मोतियाबिंद के साथ साथ आपको समलवाई या काले पानी

0: का अगर पहले कोई शक रहा हो या कोई दवाइयाँ चल रही हो तो दिखाने की ज़रूरत होती है, लेकिन मोतियाबिंद एक बार ही ऑपरेशन हो जाता है, बेहतर लेंस पड़ जाता है तो दोबारा बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
1: क्या संदेश देना चाहेंगी जो उनकी रोशनी अच्छी रहे, इस सुंदर सी दुनिया को देखें और महसूस करें जीवन कितना सुंदर है और आंखें कितनी सुंदर हैं? क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से?
0: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस मिथक को हमें नहीं अपने मन में रखना चाहिए कि मोतियाबिंद किसी ड्रॉप से कट जाएगा। हमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन सही समय पर बेहतर लेंस के साथ, बेस्ट से बेस्ट लेंस के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे सर्जन से अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन कच्चे मोतिये पे ही करा लेना चाहिए।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमारे श्रोताओं को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में इतने विस्तार से बताया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, चलते चलते कुछ बातें याद आ गईं। मंजिलों का इंतजार नहीं, सफर का मजा लीजिए। हर गुजरते पल के साथ खुद को नया कीजिए। दो लम्हों के बीच हंसते गाते जीने की हर वजह ढूंढ लिया कीजिए। बहुत मुश्किलों से मिली जिंदगी, उस रब का शुक्रिया कीजिए। और अब आज का जान है तो जहान है कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। रविंद्र मिश्रा को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050। अभी आप सुन रहे थे फोकस नेत्रालय डेलापीर बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है, रविंद्र मिश्रा के साथ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।
3: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली। आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 MHz पर। हमारे देश में जो जनगणना हो रही है वह दो चरणों में होनी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, का कार्य चल रहा है, तथा द्वितीय चरण माह फरवरी 2027 में होगी। यह पूर्तियां डिजिटल मोड में होगी। प्रथम चरण की जो अवधि है वो 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक तय की गई है, तथा इसके पहले 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक स्वगणना हेतु तिथि निर्धारित है, जिसमें आमजन स्वगणना से संबंधित पोर्टल पर जाकर स्वयं ही अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में पहली बार स्वगणना की विधि लाई गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर बड़ी आसानी से भारत सरकार द्वारा तय किए गए प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के अंत में एक ऐसी आईडी जनरेट होगी जिसे दिनांक 22 मई 2026 से दिनांक 20 जून 2026 के मध्य प्रागणक को प्रदान कर जनगणना की प्रक्रिया चंद मिनटों में ही पूरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में प्रागणक द्वारा उन्हें आवंटित हर उस मकान भवन को सूचीबद्ध करना है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है या भविष्य में रह सकता है। साथ ही कुल 33 अधिसूचित प्रश्नों की जानकारी भी उसे प्रत्येक परिवार से लेनी है। प्रथम चरण में केवल परिवार से संबंधित जानकारियां ली जाएंगी, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जानकारी एकत्र की जाएगी। मकान सूचीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं।

0: हैं जिनके उत्तर प्रागणक प्रत्येक घर से प्राप्त करेंगे। इस जनगणना के कई फायदे हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार आम जन मानस को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। इसके आंकड़े क्षेत्र विशेष के लिए भी योजनाएं तय करने में सहायक सिद्ध होते हैं। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के सीमा निर्धारण, लोकसभा विधानसभा आदि क्षेत्रों के परिसीमन, शहरीकरण, साक्षरता इत्यादि कई पहलुओं में जनगणना के आंकड़े आधार का कार्य करते हैं। मेरा जनपद बरेली के सभी सम्मानित निवासियों से यह अपील अनुरोध है कि अपनी जनगणना स्वगणना के माध्यम से अधिक संख्या में करें तथा जब प्रागणक आपके घर जाएं तो उन्हें पूर्ण सहयोग एवं बिल्कुल सही सही जानकारी प्रदान करें। आपके द्वारा जनगणना में दिए गए चंद मिनटों का समय आगामी योजनाओं का निर्धारण करेगा, अतः अपना बहुमूल्य समय देकर सभी जानकारियां प्रागणक को दें जिसके आधार पर सरकार आपके लिए आवश्यक एवं कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय भारत।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, आप सुनेंगे आकाशवाणी के दीवाने।
2: मैं खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा। आज हमारी आकाशवाणी 90 वर्ष की हो चुकी है। इस शुभ अवसर पर सभी श्रोताओं को, उद्घोषकों को, अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 90 वर्ष के सफर में 50 साल से हम भी आकाशवाणी के साथ हैं। आकाशवाणी प्रोग्राम पहले मैं मीडियम वेव पर विविध भारती दिल्ली, आकाशवाणी रोहतक एवं अन्य कार्यक्रम सुनता था। आज मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम सुन रहा हूँ। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहे हैं। आकाशवाणी बरेली के उद्घोषक बहुत ही मेहनत, लगन, निष्ठा से कार्यक्रम तैयार करते हैं जो हमें बेहद पसंद आते हैं। कार्यक्रमों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सब।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट हम तक पहुंचे हुए हैं, और साथ ही साथ हम आपके और भी कमेंट्स का इंतजार भी कर रहे हैं। तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, और हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अधिक से अधिक कमेंट पढ़ सकें और आपकी नाम आपकी फरमाइश पूरी कर सकें। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं वक्त से बंधे हुए रहते हैं, और हर कोई व्यक्ति बंधा रहता है, चाहे हम हो या आप, तो कोशिश ही कर सकते हैं। तो इसी कोशिश में आज पहली जो आप लोगों ने कोशिश की है वो कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा का। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रिहान शेख, करुला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान का। मोहल्ला शेरकोट बिजनौर से हैं आप सभी लोग, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नस्रीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हिना कौसर का। सब्जी मंडी कस्बा उसाबा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से हैं धर्मवीर कश्यप, उषा, ध्यानपाल, संजय, अनमोल, अंश कश्यप और करिश्मा कश्यप का। साथ ही हैं कुमारी मुस्कान, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश, कोटधनधरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का का। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल।

पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का। कटरा चांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराशर बरेली से हैं। अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, आरोही, खुशबू और स्वाति मौर्य का। नाज रेडियो क्लब करेली से हैं निसार अहमद अंसारी, मेहजबी निसार अंसारी, बेटी नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने,

शीश गौड़, तन्मय और अपूर्वा का। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका गुरकीरत, मन्नत सिमरत, कुरशब्द राहुल और विजेंद्र जयजान का। छबीलपुर गुन्नौर से हैं हरवेश कश्यप, अरजीत दिव्यांश और गायत्री कश्यप। दुर्गा कॉलोनी हासी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश और नियति कुमारी का। खुर्जा यूपी से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा का। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। पंखा रोड जनकपुरी से हैं पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय। गांव हानीखेड़ा से हैं राधेश्याम शर्मा और सार्थक शर्मा। रिंगी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल का। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है मेरे हम सफर और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

0: हमारी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं आपके पसंद में अपनी पसंद के गीतों को आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां है आप वहां है हम, ओनली 100.4 FM पर। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। पद्मा टाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का। मानपुर सापी जिला मुरादाबाद से हैं शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। सादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। प्रणा तल्लाब डुमराव से हैं वली उल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और जेल रोड बक्सर से हैं राज अंसारी और साथी हैं फातिमा राज का। राजधानी रायपुर से हैं नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार का। रामपुर लिस्नर क्लब नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से हैं नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद का। कदमा जमशेदपुर से हैं चिन्मय महतो, रेखा महतो और शिवांश मंडल का। जलावाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का। चंदोसी रोड से हैं मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम और इनकी बेटी है शालू गौतम। सिरधरी जिला बालोतरा राजस्थान से हैं कृष्ण कुमार डाभी, भूपत कुमार डाभी, राधा डाभी, विक्रम अर्चना और साक्षी डाभी का। ग्राम नवागांव मुहड़ी पार जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं सोहन लाल साहू, रुकमणी साहू, तेजेश्वर और कुशाल साहू का। धनोरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। दादा बाबू रोड गिरिहडी झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मुफरा नवाज, बेबी चाह।

फतेहत और सादिया का निकट बैंक सेंटर चनेठी बरेली से हैं रागिनी और मुस्कान। गांव लोहडडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन देवी। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन। धोतर जोड़ा आष्टी से हैं दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते। मलोट नगर आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान, सौरभ, शाइना और मैंडी शर्मा का। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद स्टार और नरगिस खातून का। सहारनपुर से हैं राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शिवचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। नाभा जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत फरमीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। चक 5 एमटी पतरोड़ा से हैं मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल का। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम, अदीब हसन ने हमें ये कमेंट भेजा है। कुमार हेड़ा, गांव कुमार हेड़ा, सहारनपुर से। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौर, साथी हैं राजा बाबू। रावर करनाल से हैं ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन और मुगलपुरा बागपत से हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और तरुण यादव। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है धनवान और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 12 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्मे बच्चों की गंभीर बीमारियों और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की उपयोगिता। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 11 मई 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। और इस संबंध में यदि आपको कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। लिखा एसटीडी कोड है 0581। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए। विषय रहेगा नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्मे बच्चों की गंभीर बीमारियों और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की उपयोगिता। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 11 मई 2026 को शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581, एसटीडी कोड है बरेली का, और 2571200 ये फोन नंबर है। सूचना समाप्त हुई।

श्रोता ये कमेंट हम तक आया है आप सभी लोगों का। रघुवीर नगर से है दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू का। गांव बॉन्डी वाला फजलका पंजाब से है ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया का। सौंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश कुमार चंदन का। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। गांव हीरावाली फजलका पंजाब

हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तनवीर बोट। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से हैं नारायण भाऊ खड़से, रीता आशा रानी खड़से, संजना परी खड़से, आराध्या गणेश खड़से, वैष्णवी कार्तिक खड़से, कुमारी देविका चौधरी, स्वाति प्रिया चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद का। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परमढ़ी महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश, प्रीतेश और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा और अनस और रेहान का। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया। खेल बाजार पानीपत से हैं भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, नीतू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का का। शिवाजी चौक कटनी से हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण, पवन यादव, संजीव, सुनील जैन, रज्जन, रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलरकर, रतनमाला सुरलरकर। जेल रोड दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती। बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से हैं वसीम अकरम और गुड़िया खातून का। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, सरिता। पंचकूला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रुचिता खुराना, केशव रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन का। वन्य बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा का। उड़ीसा से हैं आप सभी लोग प्रेमजी भाई भारतीय और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। सिरौली जिला बरेली से हैं दुलारे मियां, नवाज, मुबीन खान, मुबीन मियां और शुनूद मियां। पंचकूला सेक्टर 9 से हैं आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढिंगरा। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या, माही, पूजा, छुटकी, शरद और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। बनारस से हैं आप सभी लोग परवेज अहमद, शुकुलपुरा, सतीश शर्मा और नेत्रपाल सिंह जी। करमा चौक लोहारी डीह जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से हैं अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, ललिमा साहू, खुशांत और निशांत। तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से हैं शाहरुख खान, हाशिम खान, अरहम बाबू और किशबा नूर का। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है निशा सुधीर सैनी का। तहसील फरीदपुर से हैं राज सिंह प्रजापति, अनारकली प्रजापति, यश कुमारी, मुलायम सिंह, रुपेंद्र, पूजा प्रजापति, वंदना, दुष्यंत, प्रियंका, गार्गी, भोलू खन्ना और इनके परिवार के सभी सदस्य साथ ही इनके दोस्त। फजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक, समस्त खेड़ा परिवार के सभी सदस्य व साथ ही इनके दोस्त। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है धर्मात्मा और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। जिशान अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, डॉक्टर नौशाद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त, और इन्होंने हमें कमेंट भेजा है पदुम नगर छत्तीसगढ़ से। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा का। ग्राम चांदूर विस्वा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े। ग्राम राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से हैं राज गवई, राजवीर गवई। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। थाने के पास कस्बा उगैती जिला बदायूं से हैं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा बेगम सिद्दीकी, साद सिद्दीकी, समद सिद्दीकी, सादिक सिद्दीकी। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम। रायपुर अनेक जिला बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविया नेवादा जिला गाजीपुर।

से है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांचल राय का। गांव खोकरा वाली श्री गंगानगर से हैं विनोद वारासा, विशाल वारासा, विकास वारासा, रोशनी वारासा और शगुन वारासा। प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, माया शोभा, राहुल ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांशी वर्मा और ऋषि वर्मा। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूबर और पीवी कुलथे का। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार का। मानहरा दरवाजा एटा से हैं नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से हैं मुवीन अब्बासी भाई। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बुड़के, श्रीमती नंदा बुड़के, हनुमान बुड़के, आम्बेडकर गढ़ चौक बागोडी से हैं उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े। अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव का। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से हैं राजेंद्र नारंग, रंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग का। शाही मार्केट सिहोरा जिला बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफत अदीब और कादिर चौधरी का। पटेल नगर मलोट पंजाब से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू का। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से हैं सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया और योगेंद्र नायक कासगंजी का। बलकेश्वर कॉलोनी आगरा से हैं श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित वीर चौरसिया, सुजाता, पंकज, पीहू और दिया कानपुरी का। गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से हैं जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन विश्वकर्मा, सावन कुमार, सचिन और शक्ति का। पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हैं जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं अशोक सिंह, सुनीता सिंह, ऋतु सिंह, प्यारी गुड़िया वेदा सिंह का। ग्राम ढकिया किसरपुर तहसील कलीनगर जिला पीलीभीत से हैं अनिल कुमार राजपूत, मदन लाल राजपूत, भगवान दास राजपूत, संतोषी देवी, प्रिया वर्मा और छोटी सी गुड़िया चंचल कुमारी का। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्बी और बेबी बॉय हिमाक्ष का। ग्राम धुराबांधा भट्टापार छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े का। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी का। मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी करगिना बरेली से हैं बनी सिंह सागर, बनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयाश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है करण अर्जुन और इस गीत को गाया है कुमार सानू और उदित नारायण ने। फिल्म का नाम है करण अर्जुन।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं श्रीमती जयवंती केवट जी। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। कस्बा क्योलड़िया नवाबगंज जिला बरेली से हैं राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, धर्मवीर, सचिन, अनुज गंगवार, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फा शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल गंगवार और संजीव गंगवार का। ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलोदावा छत्तीसगढ़ से हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, उनके परिवार के सभी सदस्य, वसाती इनके दोस्त। कस्बा मीरगंज बरेली से हैं यशपाल दिवाकर, रियांश दिवाकर, रिया दिवाकर। राजकोट गुजरात से हैं रश्मि, झरना और भरत कुमार का। अभिजीत घबड़ाकर का कमेंट हम तक पहुंचा हुआ है। बसमत रोड भरमणी महाराष्ट्र से हैं रणजीत कारेगांवकर, कंचन कारेगांवकर, सृष्टि और समरजीत कारेगांवकर का। शाहिंग मार्केट सुहारा जिला बिजनौर से हैं आशिक चौधरी, बेगम रेहाना, रफत अदीब और कादिर चौधरी का। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से हैं पूजा रघुवंशी, रेखा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, ललिता आशारानी खड़से, नारायण खड़से और उनके परिवार के सभी सदस्य और साथ ही इनके दोस्त। संभलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। भकर पंजाब से हैं मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मालिक, खलील मलिक, अली रहमान और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है मन की आंखें और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। शब्द रचना है साहिर की और संगीत से सजाया है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। अब आपकी पसंद की ये आखिरी पेशकश है। बंटू लोहार पोपलघट से हैं, माया शिवान चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट, आपने हमें भेजा है ये कमेंट। खुपटी महाराष्ट्र से, सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। जिला खरगोन सनात मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कस्बा गुन्नौर यूपी से हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फारिया और फरहान ताहिरा का। मालवा रेडियो श्रोता संघ से हैं गुलबालोद से विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई, वंदेवी, आकाश महेश्वरी, विनायक और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। सरोज चौक अमरावती से हैं शाहिद भाई, आसिफा परवीन, अल्फिया सदाफ, सुफियान, फातिमा, अल्फिया और कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। साथी हैं आफिया। डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंडूरकर, सदानंद मंडूरकर, कुमार गौरव मंडूरकर, आरब और अर्पिता। पंजाब से हैं भाकर, रेहान खान, रहना खान, मोहम्मद रफी और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। श्रोताओं, लाइन वाइज ठीक से लिखा कीजिए, इससे पढ़ने में हमको कोई दिक्कत ना लगे और हम भी ठीक से सिलेबस से चीज पढ़ा करें। और संबलपुर काकेर से हैं आप सभी लोग, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम और इस गीत को गाया है उदित नारायण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे सब रंग, और सब रंग में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये भजन अनूप जलोटा के स्वर में।

यातायात के नियमों का पालन कीजिए। धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचिए। बूंद बूंद कीमती है, कृपया जल का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। आज की बचत, कल की सुरक्षा। अपने और अपने आगे के वाहन से उचित दूरी बनाए रखें। समय का सदुपयोग करें। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 11:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय

0: प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
1: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
2: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
0: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
2: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्तुति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ,

0: जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो यह प्रथम क्यों है? क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी।
1: जी
0: यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ।
1: जी
0: यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए।
1: जी
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब
1: जी
0: चंद्रमा चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है,
1: जी
0: पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है।
1: जी
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May, marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर।
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से, और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजा पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री

0: मोदी जी की। इसमें गरिमामय उपस्थिति है, साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था। उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
1: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु।

0: विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप

0: देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत हमें शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha, built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना हो।

0: हलंत लग के वो मां बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
0: ध्वजारोहण, अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
2: जी।
0: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
2: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहाँ उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल प्रोक्लेम्स टू द वर्ल्ड दैट एनीथिंग विथ अनपैरेलल्ड फेथ एंड लव कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ही एक्सप्रेस्ड द होप दैट द टेम्पल विल लिव इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। ही ऑल्सो सेड that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream, but taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade, and as you mentioned that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. and this is

0: very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat.
1: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है. जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है, ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके. और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधा रहें, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं, वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें. अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें. जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं. ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें. और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं. यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है. और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में. इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है. तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार.
2: जीत लिया है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the roadshow. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
4: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट

0: on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है। और वायुसेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
2: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
2: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है, तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि
1: जी
2: शिवलिंग है।
1: जी
2: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला।

0: कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना, एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वलोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये तीन प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
1: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है।
1: जी,
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी,
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिवजी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी,
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आव

0: पुराण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार की शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयो व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now. And meanwhile, we bring you some devotional bhajan.

0: And the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कृष्ण धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय
0: प्रधानमंत्री Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the Lion of Gir. And this is quite close to the Gir sanctuary. And as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister. And yet another memento, a Kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust. And we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशिक जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्ति भाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे, और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं, और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आयोजन और भी भव्य, और अब स्वागत उद्बोधन यहाँ पर
2: विश्वना सौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, मारा साथी सब

0: coin. It is a 75 rupee denomination coin, and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying. And this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75, with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
1: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. सोमनाथ अमृत महोत्सव, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक. प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में.
0: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव. गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है. महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ. साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं. ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम. आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज

उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल 2 आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, यह कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा

सेना का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत कि कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे। और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा

शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया। इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में

अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का

पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इसे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र

0: राजनीतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित, ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture. And he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी

0: उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉ आशुतोष शर्मा के साथ और SY खान के साथ अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओं, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है
1: जी।
2: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे

0: धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
0: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
0: जी
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
1: जी
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
0: जी
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
0: जी
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी, तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन,

0: मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
1: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
0: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
2: विद्या विद्या,
0: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन कुछ बोल मोहन।
1: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
0: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
1: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
0: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
1: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
0: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
1: हाँ, हाँ, हाँ। आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
0: जी।
1: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
0: डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
1: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए, आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
1: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
1: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
0: जी।
4: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
1: हाँ जी,
4: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
1: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
1: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
0: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
0: जी,
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
0: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
1: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा ककड़ी तरबूज खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
1: जी।
0: और अगर लू लग जाए तो?
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
4: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
0: जी।
4: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
0: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
4: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
0: जी।
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
0: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
4: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ।

0: नींबू पानी लस्सी पियो, तीन गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना, गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
2: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक
2: में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
4: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
6: इन्हें हमारा सलाम।
5: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
7: साथियों नमस्कार।
5: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
7: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
5: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
7: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
5: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
7: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
5: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
7: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
5: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
7: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था

0: माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
0: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
1: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
0: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
1: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
0: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
1: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
0: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
1: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
0: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
1: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
0: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
1: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
0: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते

0: गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे अनुरोध की।

सभी का अनुरोध गीत में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज पहला खत आप सभी लोगों का हम तक पहुंचा है, करगना बरेली से हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या, रचना श्रीमती ओमवती भारती, रवनक, शुगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश, प्रथम सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी, इनके दोस्त। डॉक्टर चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर के पुराना शहर बरेली से हैं, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वातिका। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया और साजदा रानी। साथी हैं हीना कौसर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शुएब खान, मुस्ताबा खान, राव भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ का। लक्षनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू का। भाटापारा दतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। नखासा रोड बदायूं से हैं उसहद बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, करमवीर भारती, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी और भरत यादव का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है तवायफ और इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

0: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली, आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 12 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्मे बच्चों की गंभीर बीमारियों और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की उपयोगिता। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 11 मई 2026 को शाम 4 बजे से। और इस संबंध में यदि आपको कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए। विषय रहेगा नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्मे बच्चों की गंभीर बीमारियों और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की उपयोगिता। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा सोमवार दिनांक 11 मई 2026 को शाम 4 बजे से। और इस संबंध में हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास से है। जय श्री देवी राम प्रसाद शर्मा, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय, रीता, विनोद, वंश और कनिष्का का। करेरा मोहल्ला पटियाला से हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पल्लक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। वैष्णव कॉलोनी सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। करनाल मॉडल टाउन से हैं सुधीर नूतन, संदीप बुगलानी, जगमोहन प्रजापति। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुविहा निवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। आदर्श

मलोट पंजाब से हैं, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। आप सभी लोगों ने पसंद किया है कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत रोशना मिश्रा के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। अपराह्न के 2 बजने को है, लीजिए अब प्रस्तुत कार्यक्रम रसरंग। लीजिए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस गजल से, इसे गाया है पंकज उदास ने।

इस वक्त आप सुन रहे हैं रस रंग कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। समय हुआ है 2:15:23। कार्यक्रम में हैं आप और हम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और अब आपको जोड़ रहे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा कार्यक्रमों से, रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं गर्लफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, बोल साहिर लुधियानवी के, और संगीत है हेमंत कुमार का।

एल परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज दी है शंकर दास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: असली नकली, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए। शेरोज श्रीवास्तव के एक लिखा हुआ भी है ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, सबिता बैनर्जी और सीता की। फिल्म का नाम बाजे कुंगरू।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चाइनाटाउन फिल्म का गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन। और सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम से, इस गीत के साथ नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मंजरी क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी, गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं, और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है। या आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही।
1: बिल्कुल।
2: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर तालाब है तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं। तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसे एक साथ नहा रही हैं। गर्मी इतनी चिलचिलाती, धूप होती, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी
1: ठंडी रहती
2: है, तभी निकलती है। तो हमसे जितना हो सके, हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं।
1: नहीं बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गांव में तो इस तरह की छपरा बना दिया जाता है जहाँ भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलीथीन को भी वो चबाते रहते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं, और यही पॉलीथीन उनके पेट में जाकर पक जाती है, जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
2: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें कि पॉलिथीन वगैरह, प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें या कचरा जहाँ डालते वहाँ डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें। और पशुओं का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिख कर दी,
1: क्या बात है,
2: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी।
1: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि

0: बना के लाई है क्या?
1: नहीं नहीं है ना, तो
0: ये गलत बात है ना,
1: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे अगली बार खिलाएंगे, है ना। तो कथा सुधा
0: अच्छा,
1: में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो।
0: अच्छा,
1: इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे, और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
0: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था,
1: जी
0: और वैसे तो देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंध जाते हैं ना, तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं.
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं ना ऐसे, जब
0: बिल्कुल.
1: धुन सुनाई देती है ऐसे, बोल सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाच ही लो,
0: नाच ही लो, तब तो खैर मन
1: है
0: का हाल ही क्या होता होगा, ये तो वही
1: ना.
0: जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा.
1: जी जी बिल्कुल. तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक.
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी.
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी. सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी.

0: आकाशवाणी के साथ में हमारे कौन से दोस्त बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं शिवराम सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, गांव दनियापुर हीरामन जिला फरुखाबाद से।
0: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज कार्यक्रम में फोन लग चुका है, कार्यक्रम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, है ना?
1: हाँ जी, हाँ।
0: और
1: जी,
0: इस कार्यक्रम में आज हमारा विषय पता क्या है?
1: हाँ जी,
0: आज विषय है हमारे देश की जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके कारण क्या है और दोषी कौन है इसके लिए, क्या कहेंगे आप, क्या विचार हैं आपके?
1: जी, इसके दोषी तो हम सभी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: जी,
1: जनसंख्या वृद्धि का तो मानव ही, मनुष्य ही है उसका वाहक।
0: आने वाले समय में क्या दुष्प्रभाव होंगे इसके?
1: सर जी, आने वाले समय में अभी ही उसके दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त संसाधन नहीं जुट पा रहे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: और आने वाले समय में तो और भी परेशानियां होने वाली हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई का कारण है, और भी मतलब जहां भी जाइए वहां दिक्कत का ही सामना है।
0: सुझाव क्या देंगे आप?
1: सुझाव तो सर यही देंगे कि जहां तक नियंत्रण हो सके उसे मनुष्य नियंत्रण करे, और फिर तो अपनी मर्जी के मालिक है सभी, इस पे कुछ किसी का तो बस तो चलने वाला नहीं है। यदि सभी मैन बात है शिक्षा की, शिक्षा यदि है तो सब कुछ संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: जनसंख्या नियंत्रण हो चाहे कुछ भी हो,
0: सही क्या है गलत क्या है हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है वो हम जान पाएंगे, है ना?
1: ऐसी शिक्षा है तो सभी चीज की जानकारी होती है, चाहे खेती हो, चाहे घर घाट हो, चाहे कोई बाहर हो, कुछ भी हो।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सबसे पहले हमें शिक्षित होना होगा, है ना? आपका धन्यवाद हमें इतने अच्छे विचार देने के लिए। और कई कार्यक्रम में कौन सा सुनवा देंगे आज आपको?
1: सुनवा देना हमें तू पागल प्रेमी आवारा।
0: ठीक है, ओके, ठीक है, धन्यवाद हमें फोन करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। हमारे कौन से साथी बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं शाहरुख खान बात कर रहा हूँ, दिल्ली जिला बरेली। जी
0: शाहरुख खान जी, आपको पता है हमारी और आपकी बातचीत का विषय क्या है आज?
1: देश भर की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है?
0: हाँ जी, कौन दोषी है, क्या कारण है, क्या कहेंगे आप इस पर?
1: सबसे बड़ा कारण इसका यही है, शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण परिवार नियोजन के सीमित।
0: जी बिल्कुल सही बात है कि
1: जी सर,
0: चलिए आपने विचार दिए अपने, कहिए कौन सा क्वेश्चन सुनवा दें आपको इस कार्यक्रम में।
1: प्यार जुटता नहीं तो सुनवा दीजिएगा कोई भी।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं शाहरुख खान जी, ये गीत एंजॉय कीजिए।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। हमारे साथी कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार सर, मैं सप्ताह अली बात कर रहा हूँ, ग्राम शिवनगर चंपतपुर तहसील औला जिला बरेली से।
0: सद्दाम भाई, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको मालूम है हमारी और आपकी बातचीत का विषय क्या है इस कार्यक्रम में? आज है जो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है बहुत तेजी से, कारण क्या है और कौन दोषी है इसके लिए, क्या कहेंगे?
1: सर मैं यही कहूंगा कि हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का मुख्य कारण है देश में अशिक्षा का अभाव।
0: जी
1: इसलिए शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए, अशिक्षित व्यक्ति होंगे और हमें जनसंख्या पे खुद ही नियंत्रण लगाना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार भी बहुत कदम उठा रही है।
0: ये अच्छी बात आपने कही है और हमें जागरूक होना होगा, है ना, और हम सभी को उसके लिए उपाय करने होंगे, जो सरकारी योजनाएं उनका लाभ लेना होगा, है ना। और कहिए इस कार्यक्रम में आप कौन से सुनवा दें आपको?
1: अरे फिल्म का नाम है इंतकाम और गीत के बोल है खुदा के लिए पर्दा हटा दो।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं आपको ये गीत, एंजॉय कीजिए।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर मैं आपकी नियमित श्रोता दीक्षा पाठक बात कर रही हूँ शाहजहानपुर से।
0: दीक्षा पाठक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम है हमारी और आपकी बातचीत का विषय क्या है आज?
1: जी सर, हमारा विषय सर यही है कि हम इसके बारे में सर ये कहना चाहेंगे जनसंख्या सर हम लोग आएंगे तो सर नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है, खाने पीने में भी दिक्कत आ सकती है सर। जनसंख्या थोड़ी हम ही लोग मतलब कम करें, माता पिता
0: बिल्कुल शिक्षित बने, है ना, जागरूक बने और थोड़ा साधा रहे ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए दिक्कत ना हो, है ना?
1: जी जी, पढ़ाई लिखाई भी नहीं सर मिल पा रही है सर, नौकरी भी नहीं, कुछ नहीं।
0: बिल्कुल दीक्षा पाठक, धन्यवाद आपका, आपने विचार साझा किए। कहिए आज इस कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: सर मैं तुम फिर फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, तुम दिया जाए कहते।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं आपको ये गीत, एंजॉय कीजिए।

0: कुमार रेडियो क्लब सिद्धार्थ नगर रोड नंबर 6 जतनगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ।
1: राजेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब कैसे हैं परिवार में आपके?
0: सर, हमारे घर परिवार में सब लोग ठीक हैं और प्राइवेट जॉब करता हूँ सर।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। और कार्यक्रम हमारे कैसे लग रहे हैं आपको?
0: सर, आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम ज्ञानवर्धक भी है, मनोरंजन भी होता है, कुल मिला के बहुत बेहतरीन कार्यक्रम आपके यहाँ से प्ले हो रहा है।
1: आपकी और हमारी आज की जो बातचीत का विषय पता है आपको क्या है?
0: सर, जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और हमारे संसाधन पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए तो हम ही लोग जिम्मेवार हैं सर, क्योंकि सरकार का भी नारा है कि दो बच्चे सबसे अच्छे
1: जी।
0: और हम लोग, हमारी उतनी कमाई नहीं है, उतने हमारे संसाधन नहीं है, फिर भी हम लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो दोषी हम लोग है ही।
1: बिल्कुल
0: सर, आज मुझे गीत सुनवा दीजिए, राजेश खन्ना और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया बहुत खूबसूरत गीत है फिल्म प्रेम बंधन का, और बोल है, मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं कोई प्यासा बादल बदली को ढूंढता है। ये वाला गीत
1: ठीक है, हम भेज रहे हैं ये गीत अपने।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं राम प्रकाश शरण बोल रहा हूँ, कार्यक्रम
0: में बहुत स्वागत है राम प्रसाद जी, कैसे हैं आप, सब परिवार में कैसे हैं आप?
1: बढ़िया साहब, बढ़िया साहब, जय कृपा मालिक की साहब।
0: आज कार्यक्रम में जो विषय है वो है जनसंख्या
1: इसके दो ही साहब, हम ही लोग हैं साहब, जनसंख्या बढ़ रही साहब, ये है और आने वाले समय में अगर ऐसी रहेगा तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी आगे को साहब।
0: बिल्कुल जी जी
1: साहब, ये दिक्कतें आएंगी, जनसंख्या बढ़ेगी है, सब दिक्कतें आएंगी और सब बातों में परेशानी हो जाएगी, सब बातों की जनसंख्या बढ़ेगी,
0: समस्याएं आएंगी, चाहे वो खाने को लेकर हो, पीने को लेकर हो,
1: हाँ साहब,
0: शिक्षा की हो,
1: दिक्कतें आएंगी, खाने की पीने की सब बातों की, नौकरी की सब बातों की दिक्कतें आएंगी साहब।
0: गीत की बारी है, कौन से गीत सुनेंगे आप इस कार्यक्रम में?
1: गाइड फिल्म का स्वागत तेरे में सपने देख सुन रहे हैं।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं ये गीत, एंजॉय कीजिए।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। कौन बोल रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? तरुणम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो बातचीत आपसे, उसका विषय पता है क्या है आपको?
1: जी सर, जनसंख्या बढ़ रही है तो इससे 2-3 लोग हमी लोग हैं और कंट्रोल करना चाहिए, और ऊपर से अगर जनसंख्या ज्यादा ही बढ़ रही है तो इसमें हम लोगों को ही नुकसान है, क्योंकि अगले चल के नहीं नौकरी मिल पाएगी, ढंग से पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे ही महंगाई बढ़ेगी, तो उसमें बच्चों का ही भविष्य खराब होगा, इसलिए सोच समझ के जनसंख्या बढ़ाना चाहिए।
0: जी धन्यवाद आपका, हमसे अपने आपने विचार साझा किए। कई कार्यक्रम में गीत की

0: बारी है अब, तो कौन सा सुनेगी आप इस कार्यक्रम में आप?
1: जी सर, मैं सुनूंगी। फिल्म का नाम है आंटी नंबर वन, और गाने को बोल रहे हैं बुलबुला रे बुलबुला, बुलबुला कहके बुला।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं ये गीत, सुनिए ये गीत अपने रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। कौन सा बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ
0: जी। कार्यक्रम में स्वागत है और हमारी और आपकी जो बातचीत है उसका विषय है।
1: सर, इससे ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है, ये बहुत खतरनाक बात है क्योंकि संसाधन अपने कम हो रहे हैं, इसीलिए महंगाई हो रही है
0: जी।
1: और दूसरी ये है कि ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे 2 या 3 व्यक्ति होंगे तो हम उनको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी संसाधन की मांग ज्यादा होगी, महंगाई होगी, इसलिए अभिभावक ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है, जागरूकता फैला रही है। सभी लोग और सभी सोचे कि हम 2 से या 3 से तो अधिक होना ही नहीं चाहिए, 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
0: बहुत धन्यवाद अपने विचार देने के लिए। कहिए गीत कौन सा सुनेंगे आज इस कार्यक्रम में आप?
1: रंग फिल्म का सुना देना, तेरी मोहब्बत में दिल्ली मकान कर दिया।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं ये गीत, एंजॉय कीजिए।

श्रोताओ, अब बारी है कुछ कमेंट्स की। ये हैं साथी हमारे ग्राम नंदोली साल्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड से लिख रहे हैं। मनोज सिंह रावत जी लिख रहे हैं कि ये सब अध्यक्षा होने की वजह से ही जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, इसलिए सभी को शिक्षित होना होगा और इसके बाद ही समस्या का निदान होगा। और आप लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका मनोज जी। आप लिख रहे हैं साथी हमारे नंद कुमार ठाकुर लिख रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण है शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण परिवार नियोजन का सीमित उपयोग, और अन्य दोषी कारण है बाल विवाह, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी सोच, स्वास्थ्य सेवाओं की असमान पहुंच और उच्च शिशु मृत्यु दर से बच्चे अधिक करने की प्रवृत्ति। आप लिख रहे हैं हमें नंद ठाकुर, प्रमिला, प्रियंका जी, दीपक, खुशबू और साथ में हैं ज्योति जी, और लिख रहे हैं ग्राम चरौदा बार नवापारा से, जिला बदौला बाजार छत्तीसगढ़ से। आप लिख रहे हैं साथी हमारे कि देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके पीछे मुख्य कारण है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच असंतुलन, जागरूकता की कमी है और सामाजिक आर्थिक कारक हैं, और काफ़ी समस्याएं लिखी हैं। आपका धन्यवाद। आप हैं तिड़ी कस्बा छत्तीसगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम खान और अरहम बाबू और किशबा नूर। आप लिख रहे हैं साथी हमारे विष्णु मिस्कीन और रितिका हैं, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्कीन, आरोही, प्रांशी, सोनी, पता इनका है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र। आप लिख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जहाँ शिक्षा की समझ है, शिक्षा कम है और आज बहुत से लोग परिवार नियोजन, महिलाओं की शिक्षा और जिम्मेदार पेरेंटिंग को उतनी गंभीरता से नहीं लेते, जिंदगी लेनी चाहिए, और ये सभी कारण उन्होंने लिखे हैं। और आप लिख रहे हैं साथ ही हमारे वारिस अली खान साहब, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। आप लिख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता यानी कि शिक्षा का अभाव, और दूसरा कारण पुत्र की चाह में परिवार बढ़ाना। ये सब कारण उन्होंने लिख के दिए हैं। और आप हैं लाल मोहन सारी साहब, लिख रहे हैं कि बढ़ती आबादी सबसे बड़ी वजह है बनेगी बेरोजगारी। तो आप सभी का धन्यवाद हमें कमेंट करने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित व रैली होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 5:05 सुनेंगे कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम रस संसार में आज शाम 5:30 पर प्रियंका श्रीवास्तव आपसे बात करेंगी, गर्मी में पिए तरल पदार्थ, किसी की दुर्घटना होने पर करें मदद। साथ ही वार्ता, किचन और हेल्थ टिप्स भी आप सुनवाएंगे। इसके अलावा होगा ढेर सारा मनोरंजन। नेहा सिंह लेकर आएंगे कार्यक्रम युवाणी में आज शाम 6:00 धूम धड़ाका। इसके अलावा आज शाम 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम जगत में सुनेंगे आप चर्चा अल्पसंख्यकों हेतु सरकारी सुविधाएं। इसके अलावा सुनवाएंगे आपको लोकगीत। आज शाम 7:00 सुनवाएंगे आपको भेंटवार्ता, विषय रहेगा अक्षयवट। और आज शाम 7:31 पर कार्यक्रम सुनवाएंगे आपको अनुरोध गीत।

कल सुबह 8:15 पर कार्यक्रम में नमस्ते बरेली लेकर हाजिर होंगी नीति त्रिपाठी। इसमें होंगी बरेली की खबरें, लोकगीतों का आनंद आप ले पाएंगे कल सुबह 8:45 पर। कल सुबह 10 बजे सुनवाएंगे आपको आकाशवाणी के दीवाने। मेहमान होंगी बेबी मलिकपुर बरेली से। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष करके मैं आप सुन पाएंगे कल सुबह 10 बजे से। आपकी पसंद कल सुबह 10:05 पर लेकर हाजिर होंगे। सब रंग करके मैं आप सुनिएगा कल दिन में 11 बजे। झुमका गिरा रे ये कार्यक्रम कल पूर्वाह्न 11:15 पर हम आप तक पहुंचाएंगे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम कल पूर्वाह्न 11:30 पर आप सुन सकते हैं। अनुरोधित कार्यक्रम कल अपराह्न 1 बजे से आप सुन सकते हैं। रसरंग कार्यक्रम कल 2 बजे से हम आप तक पहुंचाएंगे। आकाशवाणी के दीवाने ये कार्यक्रम कल शाम 4 बजे से। कल श्रोता होंगे निसार अहमद अंसारी। कल शाम 4:05 सुनाएंगे कार्यक्रम आपको आकाश आपकी बात आकाशवाणी के साथ। जी हाँ, कल शाम 4:05 पर। और कल शाम 5:05 पर कार्यक्रम हाजिर होंगे, इसका नाम है भजन संध्या। कल शाम 5:30 पर कार्यक्रम हाजिर होंगे नारी संसार। इसमें कल विषय रहेगा बालिकाओं को सिखाएं आत्मसुरक्षा के टिप्स। इसके अलावा वार्ता होगी, वीडियो टिप्स और किचन टिप्स भी आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा होगा ढेर सारा मनोरंजन। कल शाम 6 बजे कार्यक्रम युवाणी में सुनेगा आपकी पसंद आविदा के साथ। कल शाम 6:30 कार्यक्रम किसान वाणी में आज की बात होगी प्रधानमंत्री कृषि योजना पर। इसके अलावा होगा हल किसान और सुनवाएंगे आपको आम के बागों में फसल सुरक्षा शंका एवं समाधान। मेहमान होंगे डॉक्टर रजीत सिंह। इसके अलावा बाजार भाव मौसम सवाल नसीहत और लोकगीत। कार्यक्रम ग्राम जगत कल शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे। विषय रहेगा कल चर्चा का विषय रहेगा वृक्षारोपण का महत्व। इसके अलावा लोकगीत भी आपको सुनवाए जाएंगे। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम कल शाम 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे। विषय रहेगा नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जाने बच्चों की गंभीर बीमारियों और इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता। मेहमान होंगे डॉक्टर कुलदीप अंगवार। तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित व रिले होने

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी बरेली के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। सुनते हैं ये भजन स्वर है, ये साथी

गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ए

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104 FM पर। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार, शुभ संध्या। प्रोग्राम नारी संसार लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी प्रियंका। आपके साथ मोस्ट वेलकम, स्वागतम आपके अपने प्रोग्राम में। आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र। सखियों, आज है 11 मई। आज मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस। मुख्य रूप से हर साल 11 मई को इस दिन को मनाते हैं, जिसका उद्देश्य बच्चों के सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देना है। यह दिन बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने और सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सखियों, राष्ट्रीय बाल मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस एक ऐसा दिवस है, ऐसा दिन है जो प्रत्येक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के महत्व पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है और इस बात पर बल देता है हमें बच्चों की मानसिक स्थिति, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुने और पूरा मौका दें उन्हें अपनी बात को कहने का। जो भी उनके दिल दिमाग में है और उनके सवाल, उनकी जिज्ञासाएं जो हैं, आप उन्हें समझें और उन्हें पूरा समझाएं। जो भी वो सवाल अपने अभिभावकों से करें, उनकी बातों को टालें ना ही नज़रअंदाज करें। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे ही उसकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। वैसे ही बच्चे के अंदर नई नई रुचियाँ, नई नई बातें जागती हैं। तो आप उनको समझाइए, सपोर्ट कीजिए और पूरा मौका दें बच्चों को उनका मनपसंद वर्क करने का, खेलने का, एक्टिविटी करने का। इससे बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से होगा।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, हर बार की तरह हम आज भी आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। हमारा आज का सवाल है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? आप अपना सही जवाब हमें कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना सेगमेंट, इनसे मिलिए, श्रीमती प्रतिमा जी से बात करते हैं। आइए।
4: आपका नाम?
5: मेरा नाम प्रतिमा है, मैं कर्मचारी नगर में रहती हूँ। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की खुशी में जितने भी सुनने वाले हैं रेडियो FM जो भी सुनते हैं, मैं सभी को बधाई देती हूँ, आकाशवाणी की पूरी टीम को।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रतिमा जी, आप रेडियो सुनती हैं?
5: जी बिल्कुल, मेरा तो रेडियो चलता रहता है। मैं अच्छा। खाना बनाती हूँ तो भी सुनती हूँ।
4: तो आपका काम तो डिस्टर्ब नहीं होता रेडियो सुनते हुए?
5: नहीं नहीं, वो तो सुनते रहो, काम करते रहो।
4: जी, रेडियो की यही एक खास बात रहती है कि आपका कोई काम डिस्टर्ब नहीं होगा, आप अपने काम के साथ साथ रेडियो भी सुन सकती हैं और हमारे किसी भी काम में कोई बाधा भी नहीं आती है। तो प्रतिमा जी, आप क्या करती हैं? आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
5: तो मैं हाउसवाइफ हूँ
4: जी,
5: डेली के रूटीन के काम रहते हैं, अपने हस्बैंड जाते हैं उनके लिए खाना वाना बनाना
4: जी। और वैसे आपके क्या शौक है?
5: घूमना अच्छा लगता है, वैसे तो मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, नई नई डिश ट्राई करना, जैसे कि आज कुछ बना लिया, आज कुछ बना लिया, या बच्चों के लिए संडे में कुछ बना दिया पसंद हो उनको।
4: आपको कुकिंग का शौक है?
5: हाँ कुकिंग का शौक।
4: रिसेंटली ऐसी कौन सी डिश बनाई है जो आप हमारी सखियों से शेयर करना
5: चाहेंगे? मैं डेली कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। आज मैंने, जैसे आम का सीजन चल रहा है, आज मैंने कच्चे आम का, मतलब जैसे बहुत से होते हैं स्टोर करके रख लेते हैं अचार, मैंने आज एक ऐसा अचार बनाया कि हम उसको हाथ कैद बना सकते हैं और हाथ कैद खा भी सकते हैं।
4: मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा?
5: हाँ ना, टाइम नहीं, एंड टू एंड 15-20 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है कि
5: आप, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपके टाइम की बचत भी होगी
4: जी।
5: जैसे अगर आपको कहीं जाना है घूमने तो आप उसको पूड़ी के साथ, पराठों के साथ में भी ले जा सकते हैं
4: जी। तो आपका बहुत अच्छा शौक है कि आपको नई नई डिशेज रेसिपी बनाने का शौक है, आपका शौक बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ आपके जो घर में लोग हैं उनको भी मौका मिलता होगा नई नई रेसिपी खाने का?
5: बिल्कुल जी, बच्चों को बहुत पसंद है नई नई रेसिपी बनवाने का और खाने का।
4: और अच्छा भी है, घर की बनी हुई चीजें खाएं तो वो नुकसान भी नहीं देती है, बाहर की चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए
5: बिल्कुल बिल्कुल
4: नुकसान।
5: बाहर का तो ऑयल वगैरह भी बहुत, पता नहीं कैसा लगाते हैं।
4: जी जी। तो प्रतिमा जी, आपने जो बताया कि आप ये आम के अचार के बारे में जिक्र कर रही हैं, तो आप उसकी रेसिपी हमारी सखियों सहेलियों से शेयर करना चाहेंगी?
5: जी बिल्कुल, क्यों नहीं।
4: तो बताइए इसकी क्या सामग्री है?
5: आपको ऑयल लेना है, रिफाइंड नहीं, ऑयल जो होता है
4: सरसों का,
5: वो लेना है। वो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, मतलब कम ज्यादा, जैसे अगर आप जितना खाते हो, जितना आपको सूट करता हो
4: जी, जी।
5: क्योंकि इसमें पानी की बिल्कुल, मतलब बहुत हल्का मामूली सा लगता है, इसमें ज्यादा नहीं लगता है पानी के बिना। तो आप उसमें, मतलब नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि आपने ऑयल ले लिया, सरसों का तेल, उसमें ऐसे आधा किलो है आम, ठीक है, कच्ची आम ही ले लिया आपने आधा किलो, उसको काट के गुठली अलग कर दिया, पतला पतला स्लाइस में काट लिया, आप वो चाहे शेप कैसी भी दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे काट सकते हैं।

0: फिर उसमें आप 8 से 10 लहसुन की कलियां छील के रख लीजिए, 8-10 हरी मिर्च डाल लीजिए। अगर आपके बच्चे खाना पसंद करते हो तीखा तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: उसके बाद में आपको सौंफ लेनी होगी, साबुत सौंफ लेनी होगी, और सौंफ और धनिया थोड़ा सा पीस के रखना पड़ेगा।
1: अच्छा, दरदर कूटा हुआ।
0: हाँ, कूट के मतलब रख लीजिए आप
1: जी।
0: तो उसमें क्या है, आपको मतलब जो छौंका लगाना है वो सौंफ से और हींग से ही लगाना है। तो मैं अब उसकी, वैसे सामान भी ज्यादा नहीं है, हल्दी आधी चम्मच आप हल्दी ले लीजिए, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए
1: जी
0: उसमें डालने के लिए। बाकी हींग और नमक अपने स्वाद अनुसार रख लीजिए, जितना आप खाते हो उतनी क्वांटिटी में रख लीजिए। अब क्या है, विधि इसकी है कि आपने ऑयल लगाया पहले, मतलब सरसों का तेल लगाइए कढ़ाई में मीडियम आंच पे, जब वो थोड़ा गर्म हो जाए, जब लगे गर्म हो गया तब आप उसमें सौंफ डाल दीजिए।
1: अच्छा,
0: सौंफ डाल के फिर हींग डाल दीजिए। उसके बाद में जो आपने दरदरा जो मसाला कूटा है सौंफ का और धनिया का
1: जी,
0: हाँ वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद में हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च डाल दीजिए उसमें।
1: अच्छा,
0: फिर जो आपने लहसुन की कलियां छीली हैं उनको अच्छे से भून लीजिए, उसमें हरी मिर्च डाल दीजिए भूनने के साथ साथ, मतलब जैसे थोड़ा मतलब ब्राउन हो जाए वो लहसुन, तब आप उसमें जो कच्ची आमी होती है वो काट के रखिए। लेकिन आप आमी को पहले धोकर और थोड़ी हवा लगने दीजिए।
1: अच्छा, सुखा मतलब थोड़ा
0: सूख जाए, ड्राई, हाँ अच्छा। थोड़ा ड्राई हो जाए मतलब उसका पानी थोड़ा, फिर आप उसमें वो आमी डाल दीजिए। आप थोड़ा चलाइए उसको अच्छे से, थोड़ा 5-10 मिनट भूनिए।
1: अच्छा,
0: उसके बाद में हल्का सा छिड़काव जैसे छींटे मारती हैं उस टाइप से पानी की छींटे मार दीजिए। पानी
1: डालना नहीं है, ज्यादा नहीं डालना है, छींटे मारनी
0: है, बहुत छींटे मारनी है। वो तो भाप में वैसे ही हो जाएगा एकदम से, 15-20 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। बस में चलाना पड़ता है उसको, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, चेक करना पड़ता है कि हाँ मतलब चल रही है। वो अपने तेल जो है छोड़ने लगती है मतलब कढ़ाई में, हाँ जो छींटे मारेंगे आप पानी की बिल्कुल वो हट जाएगा और वो एकदम से अपना बनके रेडी हो जाए। नमक अपना स्वाद अनुसार डालकर और उसे ढक के रख दीजिए आप।
1: अच्छा,
0: मीडियम आंच पे पकने दीजिए।
1: कितनी देर तक?
0: 5-10 मिनट मुश्किल से, जितना वो मतलब थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लेंगी, वैसे तो जल्दी हो जाती है, जितना टाइम लगे।
1: अच्छा,
0: हाँ तेज आंच पे नहीं बनाना,
1: जल भी सकता है,
0: जल सकता है, इसलिए मीडियम आंच पे रखिए। और बीच बीच में 2-2 मिनट के गैप से आप उसको चेक कर लीजिए, चलाते रहिए, जिससे वो अच्छे से मसाला उसमें भून जाए, अंदर से वो हो जाए। उसमें नमक आप डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार, फिर वो रेडी हो जाएंगी। आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये नहीं है कि वो एकदम खराब हो जाएगा। जैसे आपका अचार होता है उसमें तेल डालना जरूरी होता है, नहीं तो वो उसमें फंगस लग जाती है, इसमें ऐसा नहीं है, ऑयल नहीं लगेगा।
1: अच्छा,
0: मीडियम जैसे आप सब्जी में यूज करते हैं ऑयल, उतना ऑयल भी आप लगा सकते हैं।
1: तो इसमें हमें कोई और बाहरी मसाला नहीं डालना है?
0: आप अगर डालना चाहें, अपना ऐड करना चाहें, तो जैसे अचार के जो नॉर्मल मसाले होते हैं जैसे कलौंजी हुआ, राई होता है, वो आप अपना ऐड कर सकते हैं अचार में। मतलब बेसिकली जो अचार में मसाले पड़ते हैं नॉर्मली, आप उसमें, अगर आपको जल्दी बनाना है और आपके पास घर में ज्यादा सामान नहीं हो, तो आप ये ट्राई कर
1: सकते, रेसिपी को बना सकते हैं।
0: हाँ हाँ, सब मसालों के साथ में, जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको मसालों से एलर्जी होती है, मतलब ज्यादा खाना नहीं पसंद करते हैं, उनके हिसाब से हल्के मसाले वाली रेसिपी, जैसे अचार में ऑयल बहुत होता है, नहीं खाते बहुत से लोग अचार, तो उस हिसाब से आप ये वाला ट्राई करके देखिए, अचार अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है।
1: अच्छा, तो ये पूरे साल चलता रहेगा, खराब नहीं होगा?
0: पूरे साल का तो देखो मैं नहीं कह सकती, बट जल्दी खराब नहीं होगा।
1: अच्छा, नहीं जैसे जो हमारी सखियां सहेलियां हैं जो अचार बनाती हैं उनका सालों साल चलता है
0: ये जी। तो एक ऐसा हो गया जैसे आप कहीं सफर में जा रहे हैं कि उसके लिए ज्यादा बेटर है, या आप डेली में खाते हैं जैसे कि उसके लिए
1: लंच बॉक्स में रख सकते हैं बच्चों के लिए, ऑफिस
0: सूटेबल है। जैसे
1: अच्छा,
0: जैसे आप दाल वगैरह बनाइए आपको उसके साथ आप ले सकते हैं।
1: तो इसको मीठा भी बना सकते हैं या सिर्फ ये
0: कुछ ज्यादा खट्टा लग रहा है आपको, जैसे आमी इस टाइम खट्टी बहुत आ रही है, बहुत खट्टी लग रही है, तो आप इसमें मात्र 0.5 चम्मच से भी कम चीनी का यूज कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: अगर आपको पसंद है खट्टा मीठा, तो खट्टा खाना पसंद है तो फिर
1: खट्टा
0: स्किप कर दीजिए, हटा दीजिए चीनी, नहीं डाल सकते।
1: तो ये रेसिपी है जो हमारी सखियां सहेलियां भी अपने घर में जरूर ट्राई करेंगी जो आपने बताई है। और ये आपका शौक बहुत अच्छा है जो आप खाली समय में नई नई रेसिपी ट्राई करती रहती हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है?
0: अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, खाली समय हो या मैं काम कर रही हूँ या कपड़े धुल रही हूँ
1: जी,
0: तो अपना रेडियो चलाया और अपने वर्क करते रहो। और अपने
1: प्रतिमा जी, आपने समय निकाला, आप एक हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के लिए वैसे भी घर में इतने सारे काम होते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता है, कोई ना कोई काम लगा ही रहता है, फिर भी
0: टाइम निकालना पड़ता है रेसिपी कराने के लिए, बाहर की चीजों से बचाने के लिए। आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं कि बच्चों को नहीं सूट होती है ऐसे, तो आप अपने घर पे बनाकर उनको दे।
1: हमारी उन सखियों सहेलियों से क्या कहना चाहेंगी जो बहुत बिजी रहती हैं और अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते हैं अपने शौक के लिए?
0: आपको अपने लिए समय

0: निकालना पड़ेगा थोड़ा
1: कैसे?
0: समय, अपने टाइम से, अपने वैसे वर्कआउट से जो भी आप करते हैं
1: जी जी
0: थोड़ा निकालकर कुछ ना कुछ। संडे का तो खैर होता ही है, संडे में भी बहुत काम रहते हैं घर के, लेकिन आप थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम अपने लिए निकालिए और अपना कुछ ना कुछ ट्राई कीजिए।
1: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपना शौक हमेशा
0: हाँ
1: हमेशा
0: अपने
1: बनाए
0: शौक
1: रखना चाहिए।
0: सबके शौकों के साथ में आप सबके शौक पूरे करते हैं तो अपने शौक भी पूरे करने जरूरी है लाइफ
1: बहुत
0: में,
1: जरूरी है। और इससे हमें
0: थोड़ा टाइम अपने लिए
1: खुशी
0: भी
1: भी
0: निकालना
1: मिलती है
0: चाहिए।
1: जी, मानसिक
0: जी
1: शांति मिलती है,
0: हाँ
1: खुशी मिलती है, इसलिए हमें
0: खुशी
1: अपने
0: मिलती
1: लिए
0: है
1: भी
0: लगता है, लेकिन अपने लिए भी करना जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है अपनी खुशी के लिए। और हमें अच्छा भी लगता है कुछ जिंदगी थोड़ी हम अपने लिए भी जिए, अपने फैमिली के साथ साथ। प्रतिमा जी, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, हमारी सखियों सहेलियों से इतनी अच्छी रेसिपी शेयर की, उम्मीद करते हैं उन्हें जरूर पसंद आएगी और वो अपने घर पर भी जरूर ट्राई करेंगी।
0: जी
1: आपसे बात
0: बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

सखियों, गर्मियों का मौसम चल रहा है और मौसम रोज चेंज भी हो जाता है। कभी गर्मी लगने लगती है, कभी ठंड सी फील हो रही है, फिर कभी आंधी, फिर

बारिश का मौसम भी बन जाता है। ये बदलता हुआ मौसम हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है अगर हम ध्यान ना दें तो। इसलिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। इसके लिए हमें ज़रूरी है शरीर को हाइड्रेट रखना, रोज़ाना कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं, नारियल पानी या छाछ दही अवश्य पिएं, खाना हल्का रखें, ज़्यादा तला भुना ना खाएं और खाने के साथ सलाद अवश्य खाइए, मौसमी फल भी खा सकते हैं, प्यास ना लगने पर भी पानी पीते रहें, समय समय पर धूप में जाने पर हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, पूरी आस्तीन के जो हमें धूप से बचाते हैं। और सखियों, आप बच्चों को भी पानी पिलाते रहें और उन्हें धूप में जाने से भी रोकिए। बच्चे को पानी की कमी ना हो इसके लिए आप उसे बिना मांगे भी समय समय पर पानी पिलाते रहें। और सखियों, कोशिश कीजिए घर पर ना हुआ भोजन ही बच्चे को दीजिए और खुद भी खाइए, क्योंकि बाहर का भोजन पूरी तरह से ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए। चाय कॉफी का इस्तेमाल कम मात्रा में कीजिए, बाहर निकलते समय सर ढककर चश्मा लगाकर या छाता लेकर ही निकलिए, जिससे हम धूप से बचे रहें और धूप में हमारे हाथ पांव भी ना जलें, हम गर्मी से बचे रहें, खुद को स्वस्थ रख सकें।

सखियों, हमने आज आपसे पूछा था सवाल, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब है बैडमिंटन से। जी हाँ, पीवी सिंधु भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तथा भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक व कांस्य पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। इससे पहले वे भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। सही जवाब दिया है हमारे इन श्रोताओं ने, नंद किशोर ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, ग्राम चरौदावाद बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, और सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, और

धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, दुर्गेश नागनेपुरे, राधेश्याम वंदना, भावना बिंदु गोल्लू, कुसुम दिव्यांश और सूरज, हीरामणि वर्मा भाटापारा से, नबी हसन अब्बासी एटा से और अनोखे लाल मौर्य पुराना शहर बरेली से। आप सब श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सखियों अब मैं भी जाती हूँ क्योंकि कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अपनी दोस्त प्रियंका को अनुमति दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। सखियों नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नरसंसार, प्रियंका श्रीवास के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम युववाणी नया सिंह के साथ।

नमस्कार एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका प्रोग्राम युववाणी में आपकी आज की रेडियो दोस्त नेहा सिंह के साथ। सो कैसे हैं आप सब? वेल

दोस्तों, गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है एंड इस सीज़न में ना, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन या फिर स्टमक में इन्फेक्शन, फीवर होना काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। इसलिए इस मौसम में खुद को हेल्दी रखने के लिए हमें अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। इस सीज़न में हमें सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए ज़्यादातर, जैसे कि खीरा हुआ, तरबूज, ककड़ी वगैरह या नारियल पानी का भी सेवन करना बहुत ही हेल्दी रहता है, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती और ये सभी चीज़ें मिनरल्स में बहुत रिच होती हैं। और अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए समर सीज़न में हमें दही, छाछ, लस्सी, इन सब चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए डेली। इसके साथ ही चाय, कॉफ़ी, ये सब जो है ना, इसका कम सेवन करें और इसके कारण स्टमक में एसिडिटी भी बढ़ सकती है। खाने में भी हल्का मसाले का और लेस ऑयली फूड ही खाएं, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में ना ये सब चीज़ें खाने से हमारा पेट जल्दी खराब भी हो सकता है। और आजकल तो मैं खुद बहुत दिनों से बीमार हूँ और मेरे घर वालों को हमेशा मुझसे यही शिकायत रही है ना कि मैं बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती हूँ। इसलिए अब मैं भी अपनी सेहत पे ध्यान देने लगी हूँ, तो मैं भी अपने लिसनर से, अपने श्रोताओं से यही गुजारिश करूँगी कि वो भी ये सब चीज़ें कम करें और अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे ज़्यादा फोकस करें। और श्रोताओं, अब हम बढ़ाएंगे अपने कार्यक्रम को आगे और धूम धड़ाका म्यूजिकल सेगमेंट में लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आकाशवाणी के 90 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसे में हमारे आकाशवाणी की विविध भारती की आज भी फैन फॉलोइंग उतनी ही बनी हुई है जितने की 90 वर्ष पहले थी। तो चलिए अब इस विषय पर हम सुनते हैं अपने एक श्रोता सोनिया से बातचीत।
1: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम काजल कुमारी है। सबसे पहले तो मैं पूरी आकाशवाणी की टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी उनके 90 ईयर्स कंप्लीट होने पर जो कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि रेडियो एक बस जनसंचार का ही माध्यम नहीं, इससे बहुत ही सारी यादें भी जुड़ी हैं। और सिर्फ मेरी ही नहीं, आई थिंक हम सबकी, क्योंकि बचपन से रेडियो पर मैंने गाने सुने हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में जाना है। जब हमारे घर में कोई भी एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था, तब हम सबके यहाँ रेडियो था और हम सबके पेरेंट्स में इसका एक अलग ही क्रेज़ रहा है, क्योंकि उनके दिन के सारे काम इसी के सहारे होते थे। खेत पर काम करते हुए या मम्मी जब खाना बनाती थी तो वो भी इसको सुनते हुए ही बनाती थी। और मुझे याद है, जब हम बचपन में अपने गांव जाया करते थे तो सब साथ मिलकर, तब हमारे सारे कजिन्स और रिलेटिव्स भी होते थे, तो हम रात में सोने से पहले रेडियो बजाते थे, सब साथ मिलकर सुनते थे, एंड ये हमारे टाइम को और भी स्पेशल बना देता था। वैसे आज के समय में रेडियो की जगह फ़ोन्स ने ले ली है। गाने सुनना हो, न्यूज़ देखनी हो, तो उसके लिए अदर ऑप्शंस हैं, बट रेडियो का भी एक अलग ही क्रेज़ है एंड आई थिंक उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, मुझे स्कूल एंड घर से फ्री होने के बाद टाइम बहुत कम मिल पाता है, बट जितना भी फ्री टाइम मिलता है उसमें मैं रेडियो ज़रूर सुनती हूँ। डेली अपडेट रहती हूँ और 100.4 FM के तो बहुत सारे कार्यक्रम मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि महिलाओं का नारी संसार कार्यक्रम, झुमका गिरारे में हमें अपने शहर के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलती हैं, और कभी कभी तो कुछ चीज़ें हमें खुद नहीं पता होती हैं तो नया भी जानने को मिलती हैं अपने शहर के बारे में। साथ ही युवा साथियों का डेली प्रोग्राम युववाणी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, जिसमें हमें गाने तो बहुत ही बढ़िया सुनने को मिलते हैं, साथ ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रहता है, और उनका चक्रव्यूह सेगमेंट तो स्पेशली अच्छा रहता है, और लकी 3 कार्यक्रम भी जिसमें श्रोताओं के फरमाइशें पूरी होती हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब लिसनर्स के पत्र, उनके सोशल मीडिया के कमेंट्स को पढ़कर प्रायोरिटी दी जाती है, इससे हमें और कनेक्टिव फील होता है एंड रेडियो सुनने की क्यूरियोसिटी भी बनी रहती है। वैसे रेडियो बस एक जनसंचार माध्यम ही नहीं, ये हर उस इंसान का एक

फ्रेंड है जिसने उसको कभी अकेला नहीं रहने दिया। ट्रैवल करना हो, खाना बनाना हो, बच्चों को करंट न्यूज़ के लिए सुनना हो, गाने सुनने का मन हो, या दोस्त के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, रेडियो हमेशा हमारा फ्रेंड बन के रहा है। या आप कभी अकेले हो, अकेला फील कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी रेडियो हमारे साथी बन के रहता है। एंड यही चीज़ें मुझे रेडियो और आकाशवाणी से जोड़ कर रखती हैं, और आकाशवाणी को इसीलिए दिल से थैंक यू और फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। धन्यवाद।

श्रोताओं, आज मनाई जाती है असफ अली जी की जयंती। ये एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और साथ ही नेता भी थे। इनका जन्म 11 मई 1888 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के लिंकन इन से अपनी वकालत की डिग्री प्राप्त करी और फिर 1914 में भारत वापस लौटने पर असफ अली राष्ट्रवादी आंदोलन में पूरी तरह से शामिल हो गए। उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का बचाव किया, जिन पर 8 अप्रैल 1929 को एक केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का आरोप लगाया गया था। और साथ ही फिर 1935 में ये मुस्लिम राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य के रूप में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए और इसके बाद ये फिर INC के भी सदस्य बन गए और उससे जुड़े रहे। और उसी के साथ साथ ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असफ अली को कई बार जेल भी जाना पड़ा, बट फिर भी वो इन मूवमेंट्स में लगातार बने रहे। और फिर 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में भारत की पहली इंटरिम गवर्नमेंट में इनको रेलवे और परिवहन विभाग का कार्यभार भी संभालने का पद दिया गया। और फिर फरवरी 1947 से लेकर अप्रैल 1947 के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका में ये भारतीय राजदूत के लिए चुने गए। और इनके साथ साथ आज सादत हसन मंटो का जन्म भी हुआ था। इनका जन्म 11 मई 1912 में समराला यानी के पंजाब ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। ये उर्दू साहित्य के सबसे साहसी, प्रभावशाली और विवादास्पद कथाकार, पत्रकार और पटकथा के लिए फेमस है। विभाजन की त्रासदी और मानवीय पखंडों पर आधारित उनकी कहानियाँ जैसे कि टोबा टेक सिंह, खोल दो, काली शलवार, नया कानून, ठंडा गोश्त आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। इन्होंने अपनी रचनाएं मोस्टली रियलिज्म, पार्टीशन, सोशल डिफरेंसेस इन पर लिखी। मंटो जी ने उस पक्ष को उजागर किया जिसे अक्सर छुपा दिया जाता था और इसी कारण इनका विरोध भी काफ़ी लोगों ने किया, बट फिर भी ये रुके नहीं और साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। और उर्दू में लेखन करते हुए उन्होंने लघु कथाओं के संग्रह, उपन्यास, रेडियो नाटक, निबंध और व्यक्तिगत रेखा चित्रों के संग्रह भी प्रकाशित किए, इसलिए इनको आज भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। श्रोताओं, प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे और धूम धड़ाका म्यूजिकल सेगमेंट में अब चलिए सुनते हैं अगला गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, हमारा आज का सवाल आप सभी को याद है ना, जो हमने अपने AI या सोशल मीडिया के हैंडल के थ्रू पूछा था। हमारा आज का सवाल था कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बनेंगे। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को भारत का अगला CDS बनाया जाएगा। ये 30 मई 2026 से पदभार संभालेंगे एंड वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। इससे पहले ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर एंड इंडियन आर्मी के वाइस चीफ के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। और आज के सवाल का जवाब हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने अपने कमेंट्स के थ्रू बिल्कुल सही दिया है, जो कि हैं दुर्गेश नगनपुरे, हीरामणि वर्मा, अरविंद कुमार, पुंजाजी नपकर, बबलेश पवार, आकाश रस्तोगी, नवी हसन, नाना लाम से अभिजीत कवहांकर, सुदर्शन शाह, अन्य कई सारे लिसनर्स ने। तो चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं धूमधड़ाका सेगमेंट में ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी का समय आज बस यहीं तक सीमित था। अपनी रेडियो फ्रेंड नेहा सिंह को दें अनुमति। बाय बाय एंड टेक केयर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी नया सिंह के साथ, और अब स्टूडियो में आ चुके हैं किशन पाल यादव जी, कार्यक्रम ग्राम जगत लेकर। तो इस समय है कार्यक्रम ग्राम जगत का, सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके भैया कन्हैया की ओर से राम राम। श्रोताओं, आज हम आपके कार्यक्रम को लेकर के आपके रेडियो सेट के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। तो आज आपसे चर्चा करेंगे अल्पसंख्यकों हेतु सरकारी सुविधाएं, और साथ ही चलेंगे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में एक गांव की ओर, और अगर समय मिलो तो करावेंगे मनोरंजन एक लोकगीत के माध्यम से। और श्रोताओं, जैसे कि आप अपने रेडियो सेट के माध्यम से अपने कार्यक्रम को सुनने के लिए बड़े ही उत्साहित होते हैं, तो आज भी हम हर रोज प्रयास करते हैं, वैसे ही आज भी हमने प्रयास करो है कि आज आप तक जो जानकारी अपने कार्यक्रम के पिटारे के माध्यम से पहुंचाई जाए वो आपको सुन करके आपके हितकारी हों, और हम बातचीत करें या जानकारी आपके बीच में पहुँचावें, बस पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की जो सुविधाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं। जी हाँ, हमारी सरकार के माध्यम से जन कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं

0: संचालित करे जाते हैं। और सरकार को प्रयास रहता है कि बा को लेकर के हमारे गांव और शहरी क्षेत्र के जो निवासी हैं, नागरिक हैं, वे लाभान्वित हों और पूरी तरीका से जिस योजना को सरकार के माध्यम से संचालन करो जा रहा है बा को 100% लाभ लाभार्थियों को मिले और वे बा से लाभान्वित हों। तो भैया ऐसे ही एक जो योजना है भारत सरकार के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही है, जाके माध्यम से शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए सरकार कई तरीका की कल्याणकारी योजनाएं चलाती है और इनको जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यह होता है कि हर व्यक्ति को जो सरकार योजनाएं लाती है वाको पूरी तरीका से लाभ मिले। हम बात करें अल्पसंख्यक समुदाय की तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्कूल, अस्पताल निर्माण और हुनर हाट के माध्यम से रोजगार, जाके अलावा अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अधिकारों की संरक्षण करनो शामिल है। तो ये जो योजनाएं हैं सरकार बनाती है उनको 100% हमारे जो लाभार्थी हैं उन तक पहुँचें। ऐसे ही अगर हम पढ़ाई, रोजगार, बुनियादी ढांचा जो सरकार बनाती है बाको सही तरीका से लाभार्थियों को लाभ मिले। जैसे कि अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात कर लें तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक का मीन्स छात्रवृत्ति योजना जो कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को NCMI के माध्यम से संरक्षण जाको दो जात है। और रोजगार में अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए हुनर हाट और विरासत योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को बढ़ावा देनो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इनके लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि वे अपनों खुद को रोजगार स्थापित कर अपनों विकास कर सकें। और बातचीत और करेंगे लेकिन बासे पहले आज हम एक विकास मुख्यालय में पहुंचे हैं जहां हमें मिले खंड विकास अधिकारी सुखपाल सिंह। तो गाँव देहात के लिए हमारे ग्रामीण जो निवासी हैं उनके लिए जो आवास योजना है वह किस तरीका से मिल सकती है जहाँ में विस्तार से आज हमने जानो उनके विकासखंड मुख्यालय पर जाकर के।
1: अपने सुनने वालों के लिए जान लेते हैं सबसे पहले आपका परिचय।
2: मैं सुखपाल सिंह, खंड विकास अधिकारी क्यारा।
1: आप विकासखंड क्यारा में खंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास के स्तर से होकर के पहुंचती हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे अपने सुनने वालों के लिए जो योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई जाती हैं सरकार के माध्यम से, बहुत सारी योजनाओं के अभाव में लोग जो है जानकारी न होने के कारण वंचित रह जाते हैं और कई दिक्कतें सामने आती हैं जिनसे भी लोग योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। चूंकि आप खंड विकास से जुड़े हुए हैं और जो खंड विकास स्तर के माध्यम से हम अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे योजनाएं संचालित की जाती हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वो क्या क्या हैं?
2: तमाम विभागों की योजनाएं जो हमारे विकासखंड द्वारा संचालित होती हैं जिसमें ग्राम विकास की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसमें हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
1: जी।
2: मैं पूर्व की बात बताता हूँ, सन 2018 में
1: जी
2: इसका सर्वेक्षण कराया गया था, वो भी पात्र लाभार्थी निकले थे उसमें एक वेटिंग लिस्ट जिसको हम PWL सूची बोलते हैं
1: जी,
2: एक वेटिंग लिस्ट बनाई गई थी। लक्ष्य के आधार पर वो प्रत्येक वर्ष जो है उनको लाभान्वित कराया गया
1: जी
2: और 2024 में आकर के ये पूरी लिस्ट जो है सैचुरेट कर दी। इस बीच में कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे नहीं किया गया था
1: जी।
2: इससे कुछ जो वंचित रह गए थे उसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, अभी भी चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना
1: जी जी,
2: जिसमें कैटेगरी उन्होंने रखी निराश्रित महिला
1: जी,
2: जो कि जिसकी उम्र जो है 18 से लेकर के 50 वर्ष के बीच में है
1: जी,
2: दिव्यांग लाभार्थी जिसकी उम्र 18 से लेकर के जो है कोई भी उम्र हो सकती है, 18 से कम न हो
1: जी जी,
2: और इसमें अनुसूचित जाति के हैं, कुष्ठ रोगी भी हैं
1: जी,
2: अन्य जातियां भी हैं, दैवीय आपदा से पीड़ित लाभार्थी
1: जी जी,
2: जिनको के तहसील द्वारा जिनको दैवीय आपदा राहत मिली है वो भी।

0: इसके लिए पात्र हैं
1: जी।
0: तो इस तरीके से अन्य जातियां भी हैं जो कि हमारे इस क्षेत्र से नहीं आती हैं
1: जी, जी
0: और भी लाभार्थी, खास तौर से हमारे दैवीय आपदा से प्रताड़ित लाभार्थी और निराश्रित महिला पेंशन से
1: जी
0: पात्र लाभार्थी, दिव्यांग लाभार्थी, मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के लाभार्थी हमारे यहाँ पाए जाते हैं
1: जी,
0: जिसको हम सचिवों के माध्यम से हम सर्वेक्षण कराते हैं
1: जी।
0: सर्वेक्षण में जो भी पात्र लाभार्थी पाया जाता है उसके बाद में जिला स्तरीय एक कमेटी हमारी बनती है
1: जी,
0: उसमें जिला स्तरीय कमेटी द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है। पात्र पाए जाने की स्थिति में जो है उनको हम लाभान्वित करते हैं।
1: बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, एक आवास का लाभ लेने के लिए गांव क्षेत्र में जो नया आश्रित हैं कौन कौन हैं, किन किन को ये आवास मिल सकते हैं, ये तो आपने बता दिया। लेकिन यहाँ पर हम आपसे चूंकि आवास की बात चल रही है तो ये भी जान लें कि लोग जानकारी हो जाती है कैसे पहुँचें उस स्तर तक, कैसे हमको इस योजना का लाभ मिलेगा, तो ये भी आपसे जान लेते हैं अपने सुनने वालों के लिए कि गाँव के लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए आवास का, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, कहाँ पर जाएँ, कैसे उनको इसका लाभ मिल सकता है।
0: देखिए, बात मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की करते हैं
1: जी।
0: 2024 में जो 2018 की जो वेटिंग लिस्ट थी वो सैचुरेट सरकार द्वारा कर दी गई है, उसके बाद में 2024 से सरकार द्वारा जो है सर्वेक्षण कराया गया
1: जी।
0: कुछ हमारे कर्मचारी लगाए गए, अन्य विभागों के भी लगाए गए थे, उनको दो दो तीन तीन ग्राम पंचायतें दी गई थी
1: जी,
0: कि जो भी पात्र लाभार्थी जो आवासहीन है या झोपड़ी में निवास करता है या एक कच्चा आवास है जिसका, उसका सर्वेक्षण कराया गया था
1: जी।
0: फिर सरकार ने जो है एक विकल्प खोल दिया कि आप वो भी लाभार्थी हमारा स्वयं सर्वेक्षण भी कर सकता है अपने मोबाइल से ऑनलाइन।
1: अच्छा,
0: तो उसके तहत हमारे दो प्रकार से सर्वेक्षण हुए थे, एक तो कर्मचारी द्वारा किए गए थे, उसके बाद में जो है कुछ कर्मचारी हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे
1: जी,
0: स्वयं भी किए गए थे
1: जी।
0: उसके बाद में उनको जो सर्वेक्षण के बाद में हम चेकर लगाए, चेकर के द्वारा उनका चेक किए गए, उसके बाद में फिर जो है वेरीफायर भी जिला स्तर से लगाई गई
1: ठीक।
0: तो अब लगभग जो है वो अंतिम स्टेज पर है
1: जी,
0: तो सूची जो है वेरीफायर होने के बाद में अब जो वेटिंग लिस्ट जो बनने जा रही है
1: जी,
0: उससे फिर जो है लाभान्वित जो है कराया जाएगा, जो पात्र लाभार्थी पाए जाएंगे
1: जी जी
0: उनको पुनः फिर लाभान्वित कराया जाएगा,
1: आवास
0: उनको आवास दिया जाएगा
1: जी।
0: तमाम प्रकार के हमारे प्रचार प्रसार के माध्यम देखा जाए तो अब प्रचार प्रसार का मैं नहीं समझता हूँ कोई कमी है
1: जी जी,
0: कि अब हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है
1: जी जी,
0: और तमाम दूर संचार के साधन भी हैं
1: जी,
0: और इसके बावजूद भी हम लोग जो है ग्राम चौपाल होती है, ग्राम चौपाल के माध्यम से हम जानकारी वहाँ देते हैं
1: जी।
0: प्रत्येक शुक्रवार को दो ग्राम पंचायत में चौपाल हम स्वयं
1: लगाते हैं,
0: जाकर हमारे कर्मचारी लगाते हैं, हमारे ईडीओ स्तर के भी लगाते हैं
1: जी।
0: उसके अलावा जो है हमने बैनर पोस्टर भी लगाए थे और पेंटिंग भी कराई थी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर भी ये कोई लाभार्थी जो हमारा जो है प्रचार प्रसार के अभाव में कोई लाभान्वित होने के लिए
1: रह जाएगा जी। अब बात करते हैं, आपने कहा था ये जो प्रचार प्रसार का साधन है इसके माध्यम से लोग जागरूक तो हो जाते हैं, वहीं पर उनको आवेदन कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, ये सब जानकारी वो जुटा लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से लोगों को आवास मिलने की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में आपने हमारे श्रोताओं को बता दिया, लेकिन उनके लिए ये भी जान लेते हैं, आपने जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री आवास योजना जो है वो संचालित हुई है, उसकी प्रक्रिया क्या है, और हमारे जो श्रोता हैं सुन रहे हैं वो अगर आप पात्र हैं तो वो आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका रहता है।
0: देखिए, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नहीं है, ऑनलाइन हमारे लोगों से ही ऑनलाइन होते हैं
1: वो। अच्छा।
0: हम जो है अपने सचिवों के माध्यम से जो है सर्वे कराते हैं, ग्राम पंचायत से जो ग्राम स्तर पर हैं
1: जी,
0: और सचिव के पास भी अब तमाम हैंड हैं, पंचायत सहायक हैं, ग्राम प्रधान हैं
1: जी,
0: और हमारे ग्राम रोजगार सेवक हैं
1: जी,
0: वहाँ पर सफाई कर्मचारी भी तैनात हैं
1: जी जी,
0: तो इस तरीके से उनका हम सर्वे करा लेते हैं
1: ठीक,
0: और उनका आवेदन पत्र हम ले लेते हैं और आवेदन पत्र उसका ऑनलाइन कराते हैं। और यदि कोई व्यक्ति रह भी जाता है किसी प्रकार से, तो तमाम IGRS के माध्यम से अपने IGRS वगैरह डाल देते हैं
1: जी,
0: और शिकायतें ऑनलाइन कर देते हैं, तो उसके द्वारा भी उनकी जांच करा करके हम जो है पात्र पाए जाते हैं, तो उनका हम लाभान्वित
1: कराने
0: का काम करते हैं।
1: अब बहुत सारी योजनाएं हैं जो पंचायत सहायक के माध्यम से ब्लॉक स्तर से पंचायत

0: गांव में नियुक्त किए गए हैं और उनके द्वारा गांव के लोगों को जानकारी दी जाती है कि अब योजना ये है और इसके लिए ये पात्रता है और आप इसमें आ सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो योजनाएं पूरी तरीके से पात्र लोग हैं उन तक पहुँचें और सही लोगों को लाभ मिले, क्योंकि आप एक खंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं क्यारा में और बहुत सारे लोगों की उम्मीद आशाएं आपसे जुड़ी रहती हैं, तो आप अपने स्तर से जो जो लोग पात्र लोगों का चयन करते हैं क्या उम्मीद रखते हैं?
1: ये विकास कार्य जो है एक निरंतर चलने वाली ये हमारी प्रक्रिया है,
0: जी
1: और इसमें मैं समझता हूँ इसमें सेचुरेशन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता
0: जी जी
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: और आज से नहीं चल रही है, सन 85 से आवास, पहले इंदिरा आवास चलते थे,
0: जी जी
1: निर्मला वर्ग आवास भी चले थे, वो भी
0: जी
1: मैंने दौर देखा था। जैसे जैसे परिवार बढ़ते जाते हैं उनका यदि जिस योजना का अभाव होता है उस योजना से उनको जो है लाभान्वित कराते हैं,
0: जी जी
1: तो ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
0: बिल्कुल लोगों को सुलभता हो, वो जल्द से जल्द उन्हें योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए गांव स्तर तक क्या पहुंच रहती है?
1: देखिए जब हमारा पंचायत सहायक जो है सुबह 10 बजे से लेकर के और जो है 5 बजे तक हमारा पंचायत सचिवालय पे बैठता है
0: जी
1: और एक कार्यालय स्थापित कर दिया है सरकार ने वहाँ पर जो है। दूसरा प्रचार प्रसार के बहुत सारे साधन हैं और हमारे सचिव भी वहाँ जाते हैं, ग्राम प्रधान
0: जी
1: हैं, और तमाम प्रकार के जब बार बार कोई व्यक्ति जाएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कोई ये कोई हमारा सचिव या पंचायत सहायक चूँकि उसी गांव का निवासी है,
0: जी
1: ग्राम
0: जी
1: प्रधान भी उसी गांव का निवासी रहता
0: जी
1: है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी इससे वंचित रहे।
0: जी अब चूंकि इतने संसाधन गांव के लोगों को सरकार के माध्यम से संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए चलाए जा रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं जो हमारी सरकार का प्रयास है कि जो पात्र लोग हैं उनको लाभ मिले। अब आपने बताया था कि मुख्यमंत्री आवास योजना, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना चलती थी, अब मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता में भी कोई फर्क है?
1: नहीं, पात्रता में कोई फर्क नहीं है, वही है जो प्रधानमंत्री आवास की पात्रता है वही इसकी पात्रता है, बस सिर्फ ये जोड़ दिया गया है जो उस वेटिंग सूची में नहीं है, जो प्रधानमंत्री आवास की सूची से वंचित रह गया
0: जी
1: था और वो पात्र है तो उसको मुख्यमंत्री आवास दे सकते हैं, बशर्ते 3 कैटेगरी में हो,
0: कौन कौन सी?
1: दिव्यांग जिसकी 40% से अधिक विकलांगता हो
0: जी
1: और दैवीय आपदा से पीड़ित,
0: जी
1: और एक निराश्रित महिला जिसकी उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में।
0: जी आप खंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात रहते हुए आपने हमारे ग्रामीण श्रोताओं को आज के कार्यक्रम ग्राम जगत के माध्यम से बताया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और मुख्यमंत्री आवास योजना है उसका लाभ किन-किन लोगों को मिल सकता है और कौन-कौन लोग इसके लिए पात्र हो सकते हैं। विस्तार से जानकारी कार्यक्रम ग्राम जगत के माध्यम से आपने अपने मूल विचार आवास योजना के संबंध में रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सुखपाल सिंह से, जो हमने आज बातचीत करी ही प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भली भांत जान गए होंगे कि हमें इस योजना को लाभ लेने के लिए और गांव क्षेत्र में जो पात्र लाभार्थी हैं उनके सहयोग के लिए सरकार के माध्यम से गांव की लोगों की सहायता के लिए एक पंचायत सहायक की नियुक्ति करी गई है, जिसके माध्यम से जो सरकार योजनाओं को संचालन करते हैं उसकी पूरी जानकारी और लाभ वहां से आपको मिल सकते हैं। और बड़ी अच्छी तरीका से बताओ हो जो खंड विकास अधिकारी है सुखपाल सिंह, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पात्र लाभार्थी हैं आवास योजना के वह जा बातचीत से वे जरूर ही लाभ उठा पाएंगे। और बात चल रही ही जहाँ योजना की, तो अल्पसंख्यकों के लिए सरकार के माध्यम से बहुत सारी सुविधाओं पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ी बातचीत को और आगे बढ़ा लें। तो जो सरकार के माध्यम से अल्पसंख्यक के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनकी बस्तियां हैं हमारे देश में, जहाँ जहाँ पर इनकी आबादी के आधार पर इनको जो आरक्षण मिलो वो है, बाकी अनुसार सरकार जो हैं योजनाएं बनाती हैं और

0: उसी के अनुसार उनको सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। हम बात करें गरीबी रोजगार की, तो फिर एक स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के अंतर्गत प्राथमिक यही होती है कि स्वरोजगार कार्यक्रम के उद्देश्य से जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार और ऋण बैंक की सहायता से उपलब्ध कराए के उनकी सहायता करी जाए और वे अपने खुद को स्वरोजगार खड़ो करके अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर पाए। साथ ही बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो शिक्षा के माध्यम से अगर वे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो उनको सरकार के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाओ गो है, जाके अनुसार जे अपने जो जिस चीज़ में निपुण हैं बा को अधिक आगे बढ़ा करके बा में प्रशिक्षण हासिल करके अपने खुद के स्वरोजगार को चुन सकते हैं और अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता कर सकते हैं। क्योंकि इस कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जो निपुणता आप पूरी तरीके से हासिल ना कर पाते हैं, अगर आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो आप उस को जिसको आप ढूंढ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से तलाश करके अपने आप को उसमें निखार करके और वह रोजगार को सही तरीके से चला सकते हैं। तो देखो बातचीत और जानकारी चलते भाई अब काफ़ी देर हो चुकी है, तो भैया हो ना हो आपको मानसिक थकान ना रही, लेकिन हमें तो भैया अब थोड़ी थोड़ी मानसिक थकान होने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं भैया अपने गौने ही बजने की। तो अब जहाँ जानकारी और बातचीत चली रही है तो ओम प्रकाश व साथियन की आवाज़ में कराए देते हैं आपको अब मनोरंजन। बोल है रानी मंझा को दक्षिणपुर आगमन।
1: पहुंची दरवाजे पे तो लालाइन तो बैठी द्वारे पे आज और लेके चिमटा बिलना मूसल और मुंह को फुलाए के बैठी है देखो राम। तो बोले लाला पहुंच गए कान के, ओ लाला ये क्या लली आई है घर की, अब घर की लली का उतार ले हो उन्हें चुप्पा रही है। लाला ये तेरो मरा तेरो गाड़ी जार बताओ बेटी आए मैं कौन सी बात घटी है आए का हम तुम्हें रोटी नहीं बनाए खवाऊती। सुन तो ना लाला हम तुम्हें रोटी नहीं बनाए खबौती का तुम्हारी खटिया नहीं बिछौती आए तुम्हारी सेवा नहीं करती तुम्हारे प्राण नहीं दबौती आए बढ़ौती बस तुम सठियाई है जो सौच को ले आए। ऐसी बात है जब कहन लगी लालाइन तो लाला के गुस्सा गई बदन में छाए और हाल बता मैं ओ मेरी रानी लालाइन सुनाओ हम

मेरे प्यारे भाई और लाला और लालाइन में तैयार चाल मचो लालाइन में तेरी भजती फिर आए और लाला पीछो ना छोड़े कराए यार बकरी को ढोर मार डरे हैं आए जा बताओ फिर हमें तो समझाओ तेरे समझ में आया हो हम कहा जज लौड़ी हमारी और तेरे समझ में आया हो आओ बहुते रो जवा लाला नहीं मारो आओ तमहे लाला।

0: लच्छू सेठ कहां लगे बेटी, अब हम क्या करें बताओ, ऐसा मसला डाट दो जा ससुरी में।
1: कई ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, आओ ज्यादा कौन करे बकवास, भैया मठा पढ़े बे कौ जल चाहिए,

0: ताशा जब नहीं फूटा है और पल्ली तरफ को जब उतर गई मंजा तो लाला इन्हें दौरी उन्हें लाला तुम्हारी कसम ले जो गलती भी है सो ये हमें माफ कर दे और जाता हमारी धर्म की बिटिया आई और लाला इन झपट गए पहुंची मंजा गए और में बलरी का
1: श्रोताओं उम्मीद करते हैं कि अब आपको मनोरंजन जो है वो भरपूर होएगा और साथ ही साथ आपकी जो मानसिक और शारीरिक थकान ही दिन भर के कामकाज की वो भैया अब दूर हो गई होगी, थोड़ी बहुत कम हो गई होगी। और अब बात कर लेते हैं अपने जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुविधाओं के बारे में, जहाँ हमारी केंद्र सरकार इनके लिए बहुत सारी सुविधाएँ बनाती है, उन तक पहुँचाती है। उसके साथ साथ राज्य सरकार को जो प्रयास रहते हैं कि जितने भी अल्पसंख्यक हमारे क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उनके लिए जो योजनाएं संचालित करी जा रही हैं वो योजनाएं पूरी तरीक़ा से उनके बीच में पहुँचें और बेवा को लाभ उठा सकें। और लाभ की जहां बात आती है तो फिर ज़रूरी है कि हमें उनकी जो पात्रता साबित करनी है जिनके माध्यम से वो हमें पूरी करनी होगी। अगर बात करें जिन अल्पसंख्यकों की समाज में मुख्य धारा से जोड़न के लिए सरकार को प्रयास रहता है कि आज इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं और उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करी जाए और जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनको सशक्त करो जाए और उनको आगे बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं जो सरकार के माध्यम से बनाई गई हैं वो उनको लेकर के अपने जीवन यापन को अच्छी तरीका से कर सकें। और देखो बातचीत तो चली रही है तो थोड़ी गौ नहीं बज नहीं अब और हो जाए।

तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम ग्राम जगत को सफर बस यहीं तक, क्योंकि समय की सीमा में भैया सब काउ को बंधे रहने होता है और सामने दीवार में लगी घड़ी हमें इशारों कर रही है अब समय ना बचो है और कोई बातचीत या चर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे करी जाए। लेकिन अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी को लेकर के आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने भैया कन्हैया को कार्यक्रम ग्राम जगत से यहीं पर अनुमति दीजिए। श्रोताओं, राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय भट्ट। सुनाते हैं आपको ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रमों का एक नया सिलसिला चला है। उसकी सिलसिले में एक प्रोग्राम है हमारे और आपके बीच, समाज के ही वृद्धजन जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके माध्यम से हम उनको जोड़ते हुए कार्यक्रम लेकर आए हैं। कार्यक्रम का नाम है अक्षयवट। अक्षयवट यानी वो प्रतिबिंब है, वो समानता है कि जो अक्षयता प्रदान करता है हम सबको अपनी बातों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से। इसी कड़ी में कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियोज में आई हैं श्रीमती चंपा देवी जी, जिनका अपना का समाज में रहने का, अपने जीवन को, रेडियो से जुड़ाव का, परिवार को संभालने का, इन सारी चीजों को मिला जुला कर अपना ही एक अनुभव है। और उस अनुभव को हम जानेंगे अपने इस कार्यक्रम अक्षयवट में। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है चंपा देवी जी, आप आज यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंपा देवी जी, आप, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप एक हाउसवाइफ हैं, परिवार संभालती हैं, साथ ही साथ पशुपालन

0: भी करती हैं। ठीक है, तो चंपा देवी जी, ये दोनों चीजों पे बात हम करेंगे, परिवार संभालने पर और पशुपालन पे। लेकिन उससे पहले आकाशवाणी अब मना रहा है अपने 90 वर्ष, यानी इस वर्ष आकाशवाणी 90 साल का हो गया है। जब जीवन में कुछ समय पहले जब आपने शुरुआत में देखा होगा, जीवन में आप बड़े हो रहे होंगे, हम लोग तो अभी बहुत छोटे हैं, तो रेडियो आया, मनोरंजन का एक साधन रहा, न्यूज इसी पे मिलती थी, कोई और साधन नहीं था। आपने भी देखा होगा अपने बचपन में, तो कुछ इससे जुड़ी बातें कि बचपन में आपने रेडियो को पहली बार कैसे देखा, उसके बारे में कैसे सुना?
1: पहली बार ऐसे सुना हमने, जो पहले रेडियो में जो मशीन लगती थी उसमें गाने आते थे।
0: अच्छा, जो उसमें मशीन लगती थी,
1: मशीन लगती थी,
0: पिन से चलती थी,
1: वो वाली के गाने सुने,
0: गाने सुने आपने। तब आपकी शादी हो गई थी?
1: शादी नहीं
0: हुई। तब नहीं हुई थी?
1: नहीं।
0: उस दौर में ऐसे सुना आपने पहली बार
1: जी।
0: अच्छा, कभी आपने ये देखा हो कि आपके बाबा पापा परिवार के लोग जो है रेडियो सुन पे समाचार सुन रहे हो, या फिर ऐसा गांव में होता था पहले?
1: काम बिजी,
0: सब लोग खेती बाड़ी में, अपने
1: खेती बाड़ी में तो वो
0: नहीं सुन पाते थे। लेकिन हाँ, आपने जो है पहली बार अपना वहाँ पिन पे गीत सुनने की शुरुआत हुई, तो कितनी बड़ी बात होती थी उस दौर में कि अपनी पसंद का अगर कोई गीत सुन ले रेडियो पर, तो कितना खुशी होती थी उस दिन।
1: खुशी होती थी,
0: है ना। फिर अच्छा, जीवन में आगे बढ़े, आपका विवाह हो गया, तो आप विवाह के बाद सीधे बरेली आ गई या अपने गांव ही रही?
1: गांव गए थे पहले।
0: अच्छा, गांव गए,
1: शादी होकर गांव में गए थे।
0: अच्छा अच्छा, उस समय बड़ा थोड़ा काम कुल, इतने सारे काम, बड़ा परिवार होता था, सबको संभालना होता
1: था,
0: बहुत काम होता, तो उस बीच में मौका लगता था कभी कि कहीं रेडियो सुनने को मिल जाए?
1: सुन लेते थे काम करते हुए।
0: अच्छा, तो उस समय आपको कुछ याद आता है कि कौन सा स्टेशन बरेली या क्या आता था? आप
1: बरेली आती था, रामपुर आता था
0: जी, इस तरीके
1: और,
0: से
1: और बम्बई।
0: हाँ, बम्बई विविध भारती जी जी। तो देखिए, उस दौर से आज का दौर, आज आप देखिए कि आकाशवाणी को यानी रेडियो को, पहले क्या एक रेंज होती थी कि भाई यहाँ तक रामपुर आएगा, यहाँ तक आकाश नजीबाबाद आएगा, यहाँ तक बरेली, सबकी एक रेंज है। अब इतना प्रगति कर ली है हम लोगों ने कि रेडियो, आप आकाशवाणी को लोग विदेशों में सुन रहे हैं, कितनी दूर दूर तक चले गए। अपनी पसंद की गीत, अपनी पसंद की बातें हम लोग जो है अब कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग रेडियो पर विश्वास करते हैं। हमारी इस पे कही गई बातों में। तो आपको क्या लगता है चंपा देवी जी, कि रेडियो पर जो भी बात हम लोग करते हैं, चाहे वो किसान संबंधी हो, पशुपालन संबंधी हो, महिलाओं का प्रोग्राम आता है, घर परिवार,
1: अच्छा लगता है सुनते हैं,
0: है ना, और इसमें ज्ञान की बातें हैं,
1: तो सभी बातें मिलती हैं रेडियो से,
0: सभी चीजें सीखने को मिलती हैं,
1: सभी मिलती हैं।
0: तो चंपा देवी जी, अच्छा एक बात और बताइए कि हम देख रहे हैं आज कितनी भागदौड़ भरी जीवन है ना, इंटरनेट सबके पास ही, मोबाइल आ गया है ना, ऐसे में हम देखते हैं कि थोड़ा परिवार भी अब कम बात करते हैं आपस में, इतने ज्यादा सबके पास मोबाइल हो गए कि लोग
1: एक दूसरे के पास नहीं बैठते,
0: यहाँ तक कि रोटी खाने ते भी नहीं है एक साथ,
1: नहीं
0: है, है ना। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सबको एक साथ पिरो के रखने के लिए एक क्या क्या करना चाहिए कि एक साथ खाना खाएं, एक साथ बातें करें, परिवार में मिलजुल के क्या करें?
1: अब करें तो बहुत है, लेकिन बच्चे नहीं
0: हो पाते,
1: नहीं बुआएं आई हैं,
0: तो इस तरीके से
1: हम साथ में बैठ सब खाना खाएं।
0: अच्छा, आप लोग जब अपने शादी करके आए तो कितना बड़ा परिवार था, तो कभी ऐसा लगता था इतने सारे लोगों का खाना बना रहे हैं?
1: मायके में बहुत बड़ा परिवार, टोकरी में खाना
0: रखा जाता था। अच्छा, पहले ये कॉमन बात थी, ये सामान्य बात थी कि भाई 10-10, 15-15 चाचा ताऊ सबके परिवार मिलजुल के रह रहे हैं, सब लोग एक साथ बना के
1: रहते थे
0: और एक साथ ही
1: खाना
0: खाना बनता था, तो सब एक दूसरे की मदद कर रहा, कोई सब्जी काट ले रहा है, कोई छोंक रहा है, कोई आटा गूंद ले रहा है, कोई ऐसे, तो काम भी नहीं पता चलता था।
1: पहले चक्की चलती थी, जो चक्की थी नहीं,
0: हाँ वो जात वाली,
1: तो वो एक जनी पीस रही है, तो एक जनी धान कूट रही है, एक जनी खाना बना रही है,
0: और
1: ये होता है
0: और आदमी खुशी खुशी उन चीजों को कर लेता था। अब विडंबना देखिए कि अब हम देख रहे हैं कि एक कुटिया होती थी लगभग हर परिवार में, हर घर में एक कुटिया, जिसमें हम लोग जो है अभी गेहूं खंद गए तो उसके अंदर गेहूं रख दिया गया। और हम अपने बचपन की ही बात बताएं तो हमारे पास ही लगभग 10-15 क्विंटल की एक कुटिया थी, साल भर का गेहूं उसमें खरीद के रख दिया गया, फिर ढोल हर महीने अपनी जरूरत
1: के अनुसार रख लेते। अब तो टीन की चल
0: गई है, टीन वाली मान के, अब वो भी यकीन करिए कि वो भी नहीं हो रहा है।
1: पहले टीन की नहीं थी,
0: अब पहले तो वो मिट्टी की बनाई जाते थे,
1: हम खुद बनाते थे मिट्टी,
0: अपनी कुटिया बना ली, उसमें
1: बना लेते थे।
0: अच्छा, अब आप देखिए कि वो प्रचलन भी, ये पैकेट वाला आटा और ये सब, आधुनिकता जब बढ़ रही है फिर लोगों पे अन्य काम बहुत ज्यादा हो गए, लोग नौकरी पेशे में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इन सब कामों पर, यानी कि गेहूं को कौन

0: अब उसको साफ करे, फटके धोए, फिर सुखाए, फिर पिसवाने ले जाए, ये सब काम भी अब जो है धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे
1: सब बंद
0: विलुप्त
1: बंद
0: हो रहा है,
1: होते जा
0: खत्म
1: रहे
0: हो रहा
1: हैं।
0: है ना। तो चंपा देवी जी, कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ रही हैं, आप हमसे बात कर रही हैं, ऐसे में कुछ अपनी बात बताइए कि कैसे आपने रेडियो सुना और रेडियो से आपको लाभ मिला, कोई ऐसी।
1: रेडियो ऐसे काम करते थे तब रख
0: हाँ
1: लिया,
0: हाँ
1: चला के तब सुन रहे हैं, काम भी हो रहा है
0: हाँ
1: रेडियो।
0: चलिए पहले बहुओं वाली कैटेगरी से शुरू करते हैं। समाज में कई वर्ग हैं भाई, बेटे हुए, बहू हुए, फिर नाती पोते, छोटे बच्चे हुए। सामान्य बात करें कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यानी आपके
1: जी
0: जो बच्चे हैं, इस वर्ग को संबोधित करते हुए अगर आप बोलें तो क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जो नहीं हो रही हैं? लोग कैसे आपस में मिलजुल के रहें, समूह में खाएं पिए, बातें करें, कुछ काम करें जिससे कि परिवार आगे बढ़े, परिवार के बीच एकता और समरसता बनी रहे। क्या क्या बातें आपको लगता है क्या करना चाहिए बच्चों को?
1: अब बच्चे मानते तो ही नहीं,
0: हाँ
1: कितने भी समझाओ
0: हाँ
1: कुछ
0: जी
1: भी करो,
0: जो
1: करेंगे अपने मन का, लेकिन
0: हाँ, फिर
1: नहीं
0: भी लेकिन आपको क्या
1: फिर।
0: लगता है क्या क्या करना चाहिए, कुछ बताइए जिससे कि हमारे सभी श्रोता माने सुने कि भाई उनका परिवार में फिर से दूरी आ रही है, वो और अच्छी नजदीकियां बनी रहे।
1: नजदीकियां आ रही हैं, लेकिन
0: जी
1: पहले तो बहुत
0: जी जी
1: खतरनाक खेल हो गया था हमारे
0: हाँ
1: घर,
0: हाँ जी जी
1: लेकिन फिर भी संभाल लिया है।
0: सभी मैं परिवार की बात करें
1: हाँ
0: तो
1: कुछ,
0: जैसे लोग एक साथ बात करें,
1: हाँ
0: बात करना बहुत जरूरी नहीं, आपको लगता है
1: बात नहीं कर पाते
0: एक
1: हम,
0: दूसरे से
1: नहीं
0: नहीं,
1: कर पाते
0: और सब
1: बात
0: अपने अपनी अपनी जीवन में व्यस्त हैं।
1: बस।
0: चंपा देवी जी, अच्छा एक बताइए, हम अब बात करते हैं हमारे नौनिहालों की, हमारे छोटे छोटे बच्चों की।
1: जी
0: तो बच्चे जो हैं, हम पहले अपने मान लीजिए कोई बाबा कोई चीज लाए, उन्होंने बच्चों को दिया और कहा लो भाई बेटा बांटो, तो
1: बांटो,
0: उसके पीछे की भावना ये होती थी कि पहले तुम सबको बांटो फिर खाना। वो चीजें मतलब संस्कार देते थे हम बच्चों
1: देते
0: को
1: थे,
0: किसी ना किसी तरीके से।
1: सही बात है।
0: तो अब वो क्या लगता है आपको कि बच्चों में संस्कार वो कम हो रहा है, तो कैसे बढ़ाएं, क्या करें?
1: बढ़ तो जाएगा,
0: जी
1: लेकिन उन बच्चों की जो माँ है
0: हाँ
1: जैसा सिखाएंगी वैसा ही सीखेंगे।
0: मतलब हाँ, लेकिन ऐसे में दादी दादा का भी तो रोल होता
1: दादी
0: है।
1: दादा का तब रोल होता है जब
0: हाँ
1: दादी दादा इकट्ठे होंगे,
0: जब साथ में रह रहे हैं।
1: साथ में
0: हाँ, और अब
1: रहे
0: तो
1: हैं,
0: सब अलग अलग
1: जब
0: रह रहे
1: सब
0: हैं,
1: इकट्ठे
0: न्यूक्लियर।
1: रहे तो दादी दादा का रोल आता है,
0: जी
1: अब अलग अलग हैं
0: जी
1: तो
0: जी
1: मम्मी पापा का रोल चलेगा।
0: और फिर वो फिर सब अलगाव विलगाओ और लोग अलग अपनी अपनी बात है। लेकिन ये मानती हैं आप कि बच्चों में संस्कार कम हो रहे हैं?
1: कम हो रहे हैं, कम हो रहे
0: हम
1: हैं।
0: लोग क्या पहले, आप देखते होंगे हम लोग अपने बचपन में, कोई आ जाए तो, या हम लोग कहीं अपने ननिहाल या गांव जाए तो कमर दुख जाती थी पांव छूते छूते,
1: कोई नहीं छुएगा पैर।
0: है? और तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं लगता आपको कि
1: अब
0: धीरे
1: नहीं
0: धीरे
1: है,
0: गायब हो रही
1: अब
0: हैं?
1: तो पैर छूना बिल्कुल बंद है
0: तो यानी एक
1: समझो।
0: तरीके से इसको पैर छूने को हम बस इसको संस्कार से जोड़ के बात कर रहे हैं कि बच्चों में संस्कारों की कमियां हो रही हैं? नहीं,
1: हाँ संस्कार कमियां नेकाद ना हो रही, बहुत हो रही है।
0: बहुत हो रही, तो अब इसको बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को समय समय पे संस्कार देने चाहिए, बताना चाहिए कि कौन बड़ा है, किससे कैसे बात करनी चाहिए, किससे सम्मान करना चाहिए, भाई खाते समय हाथ धोना चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि
1: जी
0: खाते समय हाथ धोएं, पहले खाने से पहले भगवान को याद कर लें। पहले हम लोग जब हम अपने पापा के साथ खाते थे बचपन में, हमें याद है,
1: जी
0: तो पापा एक कौड़ा उसमें से सब में से निकाल के अलग रख देते थे,
1: रख देते थे
0: तो ये
1: पहले, लोग रख देते
0: रख देते थे।
1: थे,
0: तो ये चीजें अब धीमे धीमे धीमे धीमे कम होती जा रही
1: कम
0: हैं।
1: हो रही है।
0: लेकिन खैर, आपको जैसे गीत सुनना भी पसंद है, कभी कोई गीत पसंद आया आपको?
1: हाँ गीत पसंद
0: कौन सा गीत आपको पसंद है? आज आपको कार्यक्रम में
1: है
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का कोई गीत,
1: कोई सा भी सुन
0: कोई
1: लेते
0: सा
1: हैं
0: भी लेकिन
1: जी
0: गीत सुनना पसंद है।
1: जी
0: अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि अपने मन की कोई बात आज कार्यक्रम में हमारे साथ साझा कीजिए जिससे कि जो हमें सुन रहे हैं हजारों लाखों लोग, वो भी उससे लाभान्वित हों, चाहे वो पशुपालन की ही हो, चाहे वो अपने जीवन से ही जुड़ी हो, चाहे वो सबको सबके लिए प्रेरणा का ही काम करें, तो क्या कहेंगी आप?
1: हमें तो भैंस को काम बहुत अच्छा लगता
0: मतलब
1: है
0: पशुपालन काम अच्छा
1: बस।
0: लगता है, तो उसमें पशुपालन कैसे करती हैं आप? अगर अगर अच्छा मानिए हमारे पशुपालक जो हैं भाई, वो लोग अपने पशुओं को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लें, ज्यादा से ज्यादा उनके पशु स्वस्थ रहें, उसके लिए क्या क्या करें?
1: उसके लिए भूसा में जो हरा चारा है वो भी डालना चाहिए, खर है और चोकर भी है, अब तो गेहूं हो गए हैं, गेहूं डालो पिसा के और तब ज्यादा
0: आप
1: उत्पादन
0: मतलब
1: मिलेगा।
0: जितना कहने का
1: हाँ
0: मतलब आप
1: जितना
0: खिलाना
1: खिला,
0: चाहिए।
1: जितना खिला लोगे उतना ही मिलेगा।
0: कई बार हम लोग देखते हैं आजकल की ये जो डेयरी व्यवसाय एक चल गया है, इसमें पशुओं के साथ हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर चारा भी नहीं देते हैं, और अगर कोई पशु बिदक जा रहा है या दूध नहीं दे रहा है तो इंजेक्शन या अन्य माध्यमों से
1: नहीं
0: उसका,
1: हम कभी नहीं लगाते हैं इंजेक्शन,
0: और लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये क्रूरता ही तो है।
1: कभी नहीं लगाया हमने इंजेक्शन बहुत बरसों से भैंस, जब से हमारी
0: हाँ
1: शादी हुई आए हैं तब से
0: हाँ
1: हम भैंस पाल रहे हैं,
0: हाँ
1: लेकिन हमने इंजेक्शन कभी नहीं लगाया, चाहे दिया या नहीं दिया
0: और लेकिन अच्छा खिलाएंगे तो पशु जरूर अच्छा
1: जरूर
0: दूध दे,
1: देगा।
0: है ना? तो ये बात भी आपने अच्छी बात कही।

0: कि भाई पशुपालक भाई ये बस इस बात का ध्यान रखें कि जैसा कि आज चंपा देवी का अनुभव है कि जब से इन्होंने विवाह उपरांत भैंस रखना शुरू किया आज तक कभी इंजेक्शन के माध्यम से दुधारू पशु का दूध नहीं उतारा है। तो आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ना करें, ये भी एक तरीके की पशु क्रूरता है और अपराध भी है। तो
1: अपराधों है, और दूसरी बात उसमें बीमारियां फैलती
0: फैलती
1: हैं
0: हैं,
1: और नुकसान देता है बहुत
0: नुकसान
1: ज्यादा
0: शरीर के
1: देता
0: लिए भी
1: है,
0: नुकसान है, न
1: और
0: सिर्फ भैंस के लिए या पशु के लिए बल्कि
1: हैसियों को
0: हम लोग जो दूध
1: नुकसान
0: पी
1: है, और जो लोग दूध पियेंगे उसका
0: उनके लिए भी।
1: उनके भी लिए भी।
0: तो आप सुन रहे हैं ना श्रोताओं कि बिल्कुल भी अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से आप किसी व्यवसाय में जुड़े हों तो थोड़ा सा आपका लाभ हो सकता है उससे बढ़ जाए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपका जो पशु है वो बीमार होगा और वो दूध भी जो व्यक्ति पिएगा वो भी बीमार होगा। अच्छा

0: और नुकसान देता है, बहुत
1: नुकसान
0: ज्यादा
1: शरीर के
0: देता
1: लिए भी
0: है।
1: नुकसान है, न सिर्फ भैंस के लिए या पशु के लिए बल्कि
0: भैंसियों को
1: हम लोग जो दूध पिए
0: नुकसान है, और जो लोग दूध पियेंगे उसका,
1: उनके लिए भी।
0: उनके भी लिए भी।
1: तो आप सुन रहे हैं ना श्रोताओं, कि बिल्कुल भी अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से आप किसी व्यवसाय में जुड़े हों तो थोड़ा सा आपका लाभ हो सकता है उससे बढ़ जाए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपका जो पशु है वो बीमार होगा और वो दूध भी जो व्यक्ति पिएगा वो भी बीमार होगा, अच्छा नहीं है वो दूध। तो ऐसा करते हैं तो ना करें। हाँ, अपने पशु के आहार पे ध्यान दें, उसको अच्छा खिलाएं। हाँ,
0: पशु को पेट भर के चारा मिलेगा तो दूध जरूर देगा,
1: जरूर देगा।
0: जरूर देगा।
1: तो आप चलते चलते चंपा देवी जी, आप ये हमको बताइए कि रेडियो के माध्यम से हमारे सभी पशुपालक भाई चाहे सभी लोग कैसे जुड़ सकते हैं? इस वर्ष हम मना रहे हैं अपने 90 वर्ष, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा रेडियो सुने और इसका लाभ ले?
0: अब वो तो अपनी अपनी मर्जी है,
1: जी
0: जब मर्जी आए तो सुनो।
1: सुनिए। हाँ, लेकिन यह है कि सुनकर इन चीजों का लाभ उठाया जा सकता है, चाहे वो पशुपालन
0: जी,
1: संबंधी हो चाहे वो
0: कुछ भी
1: जीवन।
0: सही,
1: सही।
0: तभी लाभ मिलेगा।
1: तो चंपा देवी जी, कार्यक्रम में आज आप हमारे साथ यहाँ आई, स्टूडियोज में पधारी, आपने अपने जीवन से जुड़ी, पशुपालन से संबंधित और रेडियो से जुड़ी इतने संस्मरण हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षयवट, और कार्यक्रम अक्षयवट में आज की हमारी मेहमान थी चंपा देवी जी, और हम आपका यहाँ से आकाशवाणी बरेली की तरफ से अनेक अनेक आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय बट, इसमें सुन रहे थे आप भेंट वार्ता, मेहमान थी चंपा देवी, आपसे बातचीत कर रहे थे ब्रजेश तिवारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया।

श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 13 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है डेंगू बुखार, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार। इस रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार की कल दिनांक 12 मई 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो आपका तो टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। बरेली का कोड है 0581। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के डॉक्टर मोहम्मद अकीक मौजूद रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुनिए, विषय रहेगा डेंगू बुखार, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय हम आपको अगले बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। हम कल 12 मई 2026 को शाम 4 बजे। टेलीफोन नंबर है हमारा 2517200।

मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली, आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे देश में जो जनगणना हो रही है वह दो चरणों में होनी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, का कार्य चल रहा है, तथा द्वितीय चरण माह फरवरी 2027 में होगी। यह पूर्तियां डिजिटल मोड में होगी। प्रथम चरण की जो अवधि है वो 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक तय की गई है, तथा इसके पहले 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक स्वगणना हेतु तिथि निर्धारित है, जिसमें आमजन स्वगणना से संबंधित पोर्टल पर जाकर स्वयं ही अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में पहली बार स्वगणना की विधि लाई गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर बड़ी आसानी से भारत सरकार द्वारा तय किए गए प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के अंत में एक ऐसी आईडी जनरेट होगी जिसे दिनांक 22 मई 2026 से दिनांक 20 जून 2026 के मध्य प्रागणक को प्रदान कर जनगणना की प्रक्रिया चंद मिनटों में ही पूरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में प्रागणक द्वारा उन्हें आवंटित हर उस मकान भवन को सूचीबद्ध करना है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है या भविष्य में रह सकता है। साथ ही कुल 33 अधिसूचित प्रश्नों की जानकारी भी

0: उसे प्रत्येक परिवार से लेनी है। प्रथम चरण में केवल परिवार से संबंधित जानकारियां ली जाएंगी, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जानकारी एकत्र की जाएगी। मकान सूचीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं, जिनके उत्तर प्रागणक प्रत्येक घर से प्राप्त करेंगे। इस जनगणना के कई फायदे हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार आम जन मानस को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। इसके आंकड़े क्षेत्र विशेष के लिए भी योजनाएं तय करने में सहायक सिद्ध होते हैं। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के सीमा निर्धारण, लोकसभा विधानसभा आदि क्षेत्रों के परिसीमन, शहरीकरण, साक्षरता इत्यादि कई पहलुओं में जनगणना के आंकड़े आधार का कार्य करते हैं। मेरा जनपद बरेली के सभी सम्मानित निवासियों से यह अपील अनुरोध है कि अपनी जनगणना स्वगणना के माध्यम से अधिक संख्या में करें तथा जब प्रगणक आपके घर जाएं तो उन्हें पूर्ण सहयोग एवं बिल्कुल सही सही जानकारी प्रदान करें। आपके द्वारा जनगणना में दिए गए चंद मिनटों का समय आगामी योजनाओं का निर्धारण करेगा, अतः अपना बहुमूल्य समय देकर सभी जानकारियां प्रगणक को दें, जिसके आधार पर सरकार आपके लिए आवश्यक एवं कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय भारत।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। 100.4 पर थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना,
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
3: और ये
2: मेरी गुड़िया की ना।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
5: आरबीआई कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थ स्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों के भी नैक रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा

0: से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
1: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है और हम सब आभारी हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त हो रहा है उसी का परिणाम है सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज सोमनाथ में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी आध्यात्मिक चेतना में निहित होती है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है।
2: यह पर्व हमें अपने गौरवशाली अतीत से ऊर्जा लेकर भविष्य के भारत के निर्माण का संकल्प देता है। ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हो। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि, भौतिक संसाधन या तकनीकी प्रगति में नहीं होती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और आत्मिक आधार में निहित होती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, नीति निर्माण में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। आज उत्तर प्रदेश ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है।
3: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारे और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वह थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली के शुभारंभ के साथ भारत ने प्रौद्योगिकी आधारित राजमार्ग प्रबंधन के एक नए युग में प्रवेश किया है। नई दिल्ली में इस उन्नत टोल प्रणाली का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पहल से टोल प्लाजा पर लगने वाला अधिक समय कम हो जाएगा और ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और यात्रा में होने वाली देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और प्रतिवर्ष 81,000 टन

0: कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विश्वविद्यालयों के साथ ही प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को भी NAC और अन्य राष्ट्रीय रैंकिंग दिलाना है। इसके लिए कॉलेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि संस्थानों में गुणवत्ता, रिसर्च कल्चर, डिजिटल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाकर किस प्रकार रैंकिंग हासिल की जा सकती है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कॉलेजों में छात्र संख्या बढ़ाने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में दो दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने बताया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभा कार्य 30 मई तक पूरा कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा में निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर स्थित संग्रहालय दिसंबर के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर में विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
1: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने दो अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान CMAP और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विन कशगर ने AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन ब्रीडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से जलवायु अनुकूल और उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों के विकास पर प्रकाश डाला। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थस्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों को भी रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बुलबुल के तक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर शाम के 7:31 और 38 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम अनुरोध गीत। आपके बहुत सारे खत हमने शामिल करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। आप हैं गांव लौटडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति।

पद श्रीमती मनोज देवी, मास्टर अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और सभी लोग हैं। आप हैं जक्षण बरेली से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, अमान खान, बीरेज सिंह चौहान, सोन मिश्रा और प्रदीप पाल नमन। कनेरा मोहल्ला पटेला से हैं बत्ता परिवार, हमें लिख रहा है अपना अनुरोध। मुकेश भत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश भत्ता। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और ये हमें लिख रहे हैं हमारे साथी पुराण तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अरमा नाज अंसारी और इनकी बिटिया सोनम, सारिमपुर बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और मोहम्मद सामी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, बेबी अंसारी, छठिया पोखरा डुमराव से हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। आप हैं राम प्रसाद शर्मा, भाई फजुद्दीन, वंदना, मनोरमा, अजय, ऋतिक, विनोद, वंश, कनिष्का और घर के सभी लोग हमें लिख रहे हैं। छावनी अशरफ खां होली चौक बरेली से और ये खत मिला है हमें इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां और इब्लू अकरम नूरजहां, वली अकमर नूरजहां, उल्लाह अकरम नूरजहां। राजनाथ गांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ, इमरान, इरफान आसमा, जेलो रायगढ़ से रेशमा तिवारी, रुसोनम और आदिबा तिवारी। ये हमें खत लिख रहे हैं साथी हमारे बक्सना वरायों से सरिता, शुभ, लव, गुनगुन और विमल ठाकुर का ये पत्र हमें मिला है। आप हैं गढ़िया बरेली मस्जिद के पास से मोहम्मद कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवे शमसी और साथ में है रजिया शमसी और बेबी। और ये हमें अनुरोध पत्र भेजा है साथी हमारे बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। आप लिख रहे हैं प्रेमिलागंज आलोड जिला रतनमाल मध्य प्रदेश से। ये हैं बजीगंज जिला बदायूं से प्रेम कमल वाष्णे, प्रभात, सुशीला, अमरी, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेदिजा और ऐश्वर्या कमल वाष्णे का। और आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका विरक, बलविंदर विरक, जयतेव विरक और हरदेव मीका। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत, फिल्म का नाम है वो लम्हे, इसे गाया है ग्लेन जॉन ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आज इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। और अब हम सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है वंश, इसे गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, और संगीत है नदीम श्रवण का, गीत है समीर का। अनुरोध आप सभी का, आप हैं मोहल्ला तलैया वाला जागीर से फजदीन भाई, अवरार भाई, अफजल भाई, राम प्रथा शर्मा, पीर बहोड़ा बरेली से हैं आजाद खान, दिलशाद खान, मुस्तकीम और तबस्सुम साथ में है महरू निशा। आप हैं कोटवा नारायणपुर वापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। आप हैं साथी हमारे खुर्जा उत्तर प्रदेश से प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश और तिलक राज अरोड़ा, और ये खत हमें मिला है बदायूं ककराला से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान।

विकास भाई, करमबीर, प्रवीण, अनिल, सागर बख्शी, अमजद अंसारी और सभी लोग इनके परिवार के। ये हैं कटाचांद खां, मोरबंदर पुराना शहर बरेली से हैं। अनखल मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही, स्वाति और सुंदर भी प्रकाश और पूरा मौर्य परिवार हमें ये पत्र लिख रहा है। आप हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुलानी, जगमोहन प्रजापति और सुनी साथ में हैं, ये सभी इनके साथी। और ये हैं कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जैबनशा बेगम, अकरम सैफी और आवाद खान। आप हैं साथी हमारे परी महल कासगंज से आवाद खान, नवील खान, आरफा खान और इल्मा खान। तो सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में सुनवाने जा रहे, माफ कीजिए, कार्यक्रम में अब यह गीत है आपके लिए। फिल्म का नाम है दिल से, इसे गाया है सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी ने, बोल हैं गुलजार का संगीत है AR रहमान साहब का, और अनुरोध आप सभी का है। आप हैं ये साथी हमें लिख रहे हैं बक्सर बिहार से सरबुद्दीन अंसारी, डुमराव से बलीउल्लाह अंसारी, बक्सर से राज HD अंसारी और बिहार दिल्ली से W अंसारी, बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, चटिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा, मुस्तफाबाद दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना। और ये हमें लिख रहे हैं साथी हमारे ये पत्र, भाटापारा से हैं झावेंद्र कुमार वर्मा, दीपक कुमार, किशोर कुमार और द्वारका प्रसाद वर्मा, और ये हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लिख रहे हैं हमें रिंगनी से, और आप हैं दौलतबाग मुरादाबाद से जाफरसन अंसारी, नेमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली, साथ में हैं जुनैद अब्बासी साहब। और ये खत हमें मिला है मकरा मंदिर बीडी कॉलोनी से हैं भाई अपनलाल सागर, मिनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, अशीत कुमार सागर, हमर सिंह, हितेश, बंटी भाई, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमपति भारती, और साथ में हैं खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। और ये साथी हमारे हमें लिख रहे हैं ये पत्र, पंजाब मलोड से राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती और तनीश सेतिया का ये पत्र हमें मिला है। और आप हैं यादव मोहल्ला, सनावत MP से, दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर और मुस्कान मालाकर का।

श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म का नाम है विजयपथ और इसे गाया है सातों सर के मौसाथियों ने। अनुरोध आप सभी का, आप हैं भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण कपिल और कुणाल मेहरा। आप लिख रहे हैं हमें मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम, रेशमा और आदिबा थापा। लोनी से हैं परवीन डोम, फरवुद्दीन कुमारी वली डोम और डब्लू डोम। मथुरा से हैं वसीम आसमा वेलदार, अकरम उल्लाह आसमा वेलदार। साथ ही हमारे ये हैं खुजा उत्तर प्रदेश से प्रकाश जी चंदन जी और अंकुश अरोड़ा, साथ में तिलक भाई अरोड़ा। और ये साथी हमारे हैं मोहल्ला हलवायान बिजनौर से हैं वका फरीदी, इकबाल भाई, सितारा बेगम, नसीम परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साथ में हिना और शारदा रानी। ये पत्र हमें मिला है सनाबद एमपी से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर मोहम्मद और अल्तमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। ये हमें लिख रहे हैं उत्तराखंड से, जसपुर से नासिर सिद्दीकी, रियाज भाई, रिफाकत, रियासत भाई और रानी, तबस्सुम और रुखसार, साथ में मोहम्मद आशिफ। तो सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आप हम लेकर रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
2: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
1: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए आप सुनिए हिंदी।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के इस अंक में आपको एक कहानी सुनवाते हैं जिसका शीर्षक है सच्चा तीर्थ। ये कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर शरद सिंह।
1: बूढ़ी चौधराइन को ज्यादा बोलने की आदत शुरू से ही थी। फिर जैसे जैसे उनका बुढ़ापा आता गया, वैसे वैसे उनकी वाचालता बड़बड़ाने में बदलती गई। अब वे बिना किसी बात के भी बड़बड़ाती रहती हैं। चौधराइन की बहू आनंदा को उनकी ये आदत कभी पसंद नहीं आई। अरे बोलना है तो जी भर कर बोलो, मगर तब जब बात करने लायक कोई बात हो। भला ये क्या बात हुई कि किसी ने उनसे कुछ कहा तो बड़बड़ाने लगी, यदि कुछ नहीं कहा तो भी बड़बड़ाने लगी। बड़बड़ाने की भी कोई वजह होनी चाहिए, जो कि बूढ़ी चौधराइन के पास हरगिज नहीं रहती है। मामला बड़बड़ाने तक सीमित होता तो भी गनीमत था। चौधराइन को तो मानो कूल्हने कराहने का भी रोग है। इस मामले में उनका कोई भरोसा नहीं। कहो भर पेट खाना खाकर आंगन में लेटकर धूप का आनंद ले रही हूँ और अचानक कराहती हुई बोल उठें, हे भगवान, भर पाई तेरी इस दुनिया से, अब तो तू मुझे अपने पास बुला ले। चौधराइन का ये प्रलाप कोई दूसरा सुने तो उसे यही लगेगा कि उनके जीवन में दुख और कष्ट के सिवा और कुछ है ही नहीं। जरूर उनकी बहू उन्हें सताती होगी, उनका ध्यान नहीं रखती।

होगी। मगर जब आनंदा अपनी सासू माँ उर्फ चौधराइन से पूछती कि क्या हुआ अम्मा, कहीं कोई दर्द हो रहा है क्या, तो वे शांत स्वर में उत्तर देती, नहीं कोई दर्द नहीं है, मैं तो आराम से लेटी लेटी धूप ले रही हूँ। आनंदा को उनके इस तरह के झूठ मूठ के प्रलाप से बड़ी झुंझलाहट होती। वह झुंझलाकर बोल उठती कि जब कोई कष्ट नहीं था तो स्यापा क्यों कर रही थी। वैसे आनंदा के इस बात को धीमे से कहने पर भी चौधराइन सुन लेती और फिर से असली प्रलाप चालू हो जाता। एक दिन की बात है, आनंदा आंगन में बैठकर पापड़ बेल रही थी। चौधराइन जिद करने लगी कि ला मुझे दे, मैं बेलती हूँ पापड़। आनंदा ने मना करते हुए कहा कि नहीं रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मगर चौधराइन को भला चैन कहाँ, उन्होंने पहले तो चिरौरी की, लेकिन जब बात बनती नहीं दिखी तो वे कराहती हुई प्रलाप करने लगी, हाय री किस्मत, एक जमाने में मैं हजार हजार पापड़ बेल लेती थी, लेकिन अब तो मुझे एकदम नकारा समझा जाता है। इस बेइज्जती से तो हे भगवान मुझे उठा ले। चौधराइन का यह तरीका काम कर गया। उनका प्रलाप सुनकर आनंदा को गुस्सा आ गया। वह पटा और बेलन उनके सामने पटकती हुई बोली, ये लो बेलो जी भर कर पापड़, जब हाड़ गोड़ दुखे तो मुझे मत कहना। चौधराइन ने पापड़ बेलने शुरू किए, एक बेला, दो बेले और तीसरा पापड़ बेलते बेलते उनकी सांसें चढ़ने लगी, उनके हाथ ढीले पड़ गए, वे हाँफने लगी। आनंदा ने उनकी दशा देखी तो वह घबरा गई। उसने पटा बेलन एक ओर सरकाया, उन्हें वहीं लिटा दिया, कुछ देर पंखा झला, फिर बैठा कर पानी पिलाया, तब कहीं जाकर चौधराइन की तबीयत सुधरी। आनंदा के भी जान में जान आई, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती तो उसे ही दोषी ठहराया जाता। उसने चौधराइन को आड़े हाथों लेना चाहा, मगर चौधराइन भी कम नहीं, वे कूलती कराहती कहने लगी, तू तो इसलिए गुस्सा कर रही है ना कि बुढ़िया अब किसी काम की नहीं रही। यह सुनकर आनंदा हकबका गई, उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं, जाने कहां कहां चलता है अम्मा का दिमाग। उसी समय आनंदा के पति राम खिलावन ने कदम रखा घर में। अम्मा का बिसूरना देखकर राम खिलावन का माथा भिन्ना गया। वह चीख उठा, इस घर में हमेशा चिकचिक मची रहती है, इंसान एक घड़ी सुख शांति से नहीं रह सकता है। फिर राम खिलावन आनंदा पर बिगड़ उठा, तुम अम्मा को क्यों परेशान करती हो। आनंदा ने भी पलट कर जवाब देते हुए कहा कि भला मैं क्यों परेशान करने लगी अम्मा जी को, उल्टे वे ही मुझे हैरान किए रहती हैं। इतना सुनना था कि बूढ़ी चौधराइन ने आसमान सिर पर उठा लिया। वे रो रो कर कहने लगी, अगर मैं तुम लोगों को भार लगती हूँ तो मुझे तीर्थ क्यों नहीं चले जाने देते, भगवान का नाम लेती हुई वहीं कहीं मर खप जाऊंगी, मगर लौट कर तुम लोगों को अपना ये मुंह नहीं दिखाऊंगी। कुल मिलाकर बात जरा सी थी, मगर देखते ही देखते राई का पहाड़ बन गई। मामला शुरू हुआ था पापड़ बेलने से और जाकर खत्म हुआ तीर्थ यात्रा पर जाने पर। बाहर से थका मांदा परेशान हाल आया राम खिलावन झल्ला उठा। आनंद फानंद में उसने भी तय किया कि अब अम्मा को तीर्थ यात्रा पर भेज ही देना चाहिए, पुण्य का पुण्य मिलेगा और रोज रोज की चिकचिक भी नहीं रहेगी। वह गुस्से से भर कर चल पड़ा अम्मा के तीर्थ यात्रा पर जाने की व्यवस्था करने। चौधराइन भी ताव में आकर अपनी गठरी मोटरी बांधने लगी। बच्चे स्कूल से घर लौटे तो अपनी दादी को गठरी बांधते देखकर सकते में आ गए। आनंदा को लगा अब अगर अम्मा तीर्थ जाएंगी तो ऐसा लगेगा जैसे उन्हें घर से निकाला जा रहा है, और भगवान न करे तीर्थ के दौरान उन्हें कहीं कुछ हो गया तो आनंदा जीवन भर अपने आप को दोषी मानती रहेगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मा को कैसे मनाए और कैसे रोके। चिंता में डूबी आनंदा आंगन में लगे नलकूप के पास बर्तन उठाने गई। ध्यान कहीं और था, पांव कहीं और। पांव पड़ा स्टील की प्लेट पर, पांव फिसला और वह धड़ाम से गिर पड़ी। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब वह गिरता है तो सबसे पहले अपने आसपास नजर दौड़ाता है कि उसे गिरते हुए किसी ने देखा तो नहीं। आनंदा ने भी गिरने के ठीक बाद इधर उधर देखा, उसकी नजर चौधराइन पर पड़ी। उसने देखा कि उसे गिरती हुई देखकर चौधराइन हड़बड़ाकर उठने का प्रयास कर रही हैं। यह देखकर आनंदा को मन ही मत राहत महसूस हुई। उसने स्वयं उठने का कोई प्रयास नहीं किया, उल्टे वह उसी स्थिति में बैठी बैठी कराहने लगी। अंततः घबराई हुई चौधराइन आनंदा के पास पहुंची। उन्होंने आनंदा से पूछा कि बहुत ज्यादा चोट लगी है क्या। आनंदा ने कहा, हाँ मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। तब चौधराइन ने आनंदा को सहारा देकर उठाया। आनंदा उनके सहारे उठकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे चलती हुई
चारपाई तक जा पहुंची। चौधराइन आनंदा को चारपाई पर

0: बैठाकर हल्दी दूध लाने रसोई की ओर चल दी। उनके जाते ही आनंदा की आंखों से आंसू छलक उठे। कैसी बच्चों जैसी अम्मा हैं, छणे रुष्टा छणे तुष्टा। वैसे आनंदा ने भी झूठा बहाना किया था कि उससे उठा नहीं जा रहा है, जबकि वह स्वयं उठकर खड़ी हो सकती थी। चोट अधिक नहीं लगी थी, मगर जब उसने देखा कि चौधराइन उसे उठाने आ रही हैं, तो वह भी असहाय बनने का नाटक करने लगी थी। चौधराइन एक गिलास में हल्दी दूध ले आईं। उन्होंने आनंदा को गिलास थमाते हुए कहा, ले पी ले, इससे दर्द जाता रहेगा और चोट भी जल्दी ठीक हो जाएगी। अम्मा, अगर तुम चली जाओगी तो फिर मुझे कौन सहारा देगा? आनंदा ने भरी आंखों से चौधराइन की ओर देखते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी। चौधराइन भी हुलस कर बोली, अरे जाना कौन चाहता है, तू ही तो मुझे घर से भगा रही है। यह सुनकर आनंदा बोली, भला मैं आपको क्यों भगाऊंगी? फिर जरा सोचिए कि अगर मैं आपको घर से भगा दूंगी तो फिर लड़ूंगी किसके साथ? आनंदा की यह बात सुनकर चौधराइन हंस दी। वे बोली, अरे तू कहाँ लड़ती है मुझसे, हैरान तो मैं किए रहती हूँ तुझे। थोड़ी देर बाद जब राम खिलावन अम्मा के तीर्थ यात्रा पर घर जाने की व्यवस्था करके घर लौटा, तो उसने देखा कि सास बहू तो आपस में हंसी ठिठोली कर रही हैं। उसने चकित होते हुए चौधराइन से पूछा कि अम्मा, अपना सामान बांध लिया तुमने? तो इस पर चौधराइन हंस कर बोली, सामान बांधे मेरे दुश्मन, मैं क्यों बांधू? मैंने ठीक कहा ना आनंदा? आनंदा ने चौधराइन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा अम्मा। राम खिलावन ने इस बार आनंदा से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? क्या अम्मा को अब तीर्थ पर नहीं जाना है? इस पर आनंदा ने उत्तर दिया, बाकी तो मैं बाद में बता दूंगी, अभी इतना जान लो कि अम्मा को कहीं नहीं जाना है। भला घर से बड़ा कोई तीर्थ होता है? क्यों अम्मा? इस बार चौधराइन ने आनंदा की हाँ में हाँ मिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं कोई नहीं, घर से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। चौधराइन का उत्तर सुनकर आनंदा ने चैन की सांस ली और राम खिलावन भी मुस्कुरा दिया। वह भी दिल से कहाँ चाहता था कि अम्मा यूरूट कर तीर्थ जाएं। चौधराइन अब तीर्थ पर जाने की धमकी तो नहीं देती हैं, लेकिन कूढ़ने कराहने और बड़बड़ाने की उनकी आदत ज्यों की त्यों बनी हुई है। आनंदा भी जानती है कि ये तो उनकी वृद्धावस्था का माया जाल है, जो उनको अपने इशारों पर नचाता रहता है। इसमें भला उनका क्या दोष?
1: सच्चा तीर्थ। अभी आप ये कहानी सुन रहे थे, जिसे आप तक पहुंचा रही थी डॉक्टर शरद सिंह। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए प्यारे मैसी की गाई चंद गजलों का। पहले आपको सुनवाते हैं मजाज की लिखी ये गजल प्यारे मैसी की आवाज।

अभी आप प्यारे मैसी की आवाज में फैज की लिखी ये गजल सुन रहे थे। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। चित्रपट से कार्यक्रम में पहले आनंद लीजिए हम किसी से कम नहीं फिल्म के एक गाने का। इस गाने को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है। इस गाने में आवाज मोहम्मद रफी साहब की है और इसे संगीत से संवारा है RD वर्मा।

चित्रपट से कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। ये गीत आप सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। महबूब के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है इस्माइल दरबार ने।

अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में सावन कुमार के बोलों को सुना। इस गाने की धुन बनाई थी राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज

0: जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
0: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से

0: 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने

0: के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तुम्हारी कसम फिल्म से। इसे गाया है मुकेश और आशा भोसले ने। संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने। रचनाकार आनंद बख्शी।

द ग्रेट गैम्बलर। लीजिए अब इस फिल्म में सुनिए अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार को। संगीत तैयार किया है आर डी बर्मन ने, बोल आनंद बख्शी के।

लीजिए सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म गुलाम में। गीतकार सुनिए संगीतकार जतिन ललित।

देश परदेश। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, संगीत राजेश रोशन का, बोल अमित खन्ना के।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए सुनिए खयाम के संगीत निर्देशन में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम त्रिशूल।

0: छाया गीत,
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश किशोर कुमार की आवाज में महान फिल्म से। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।
1: छाया गीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार,

0: सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की ओर भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे, और इसकी कॉम्पिटिशन थी। और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया, मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पुणे से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा, और उसमें मैंने एक नाटक किया काई स्वप्न विकाई चित, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

0: सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद निहलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद निहलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्ध सत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्ध सत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानें।
1: तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के

पर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया। इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था। और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

0: सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था, जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए, हाथ पे जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देखना ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
2: ये सब क्या है चाचा, चलो यहाँ से।
1: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिस

0: से कहते हैं ना हम, वो है ये सब। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर इसकी बेटी की जगह।
1: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
0: रिश्तेदारी का तो खेल ही है सब।
2: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुँचे इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिकुपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं। लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले लें। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दुर्वांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए, जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
4: अरे ये क्या हो गया ये साले, उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए।
5: सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
4: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
5: अच्छा अच्छा,
4: आ गया हसमुख, आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
6: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
4: पागल हो गया।
6: अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
4: कैसे?
6: मैंने है ना 2 दिन पहले दुकान बेच दिया था।
4: क्या?
6: हाँ।
4: किसको?
6: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था।
4: हाँ।
6: उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
4: कॉन्ग्रेचुलेशन ए आंडो पांडो।
5: यस सर।
4: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज।
7: अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाइयां मंगवा रहा है। अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
4: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा, जीना तो छोड़ो पीने नहीं देगा।
2: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।
8: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा।

0: जान ये जाए।
1: कूली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

0: दूर से आती आवाजें कई बार बहुत करीब होकर अपनी हो जाती हैं। भारतीय समाज में आकाशवाणी होने का अर्थ महज मीडियम या शॉर्टवेव पर आने वाली ध्वनि तरंगे नहीं है। ये एक साथी है जिसकी मंगल ध्वनि से हमारी आंखें खुलती रही हैं, जिसके भक्ति संगीत में हमारे दिवस का पवित्र आरंभ होता है, जिसके समाचार हमें दिन भर के लिए सूचनाओं से तैयार रखते हैं। आकाशवाणी अर्थात एक ऐसा अभिभावक जो हमें तरह तरह की सलाहें देता है, राह दिखाता है, एक ऐसा सहचर है जो हमारे साथ गाते गुनगुनाते हुए हमारी खुशियों को और बढ़ाता है, हमारे दुखों में सहारा बन जाता है।
1: आकाशवाणी है तो किसानों के लिए खेती की बातें हैं, चिकित्सकों के परामर्श हैं, शिक्षा और नौकरी के लिए तैयार करते देश दुनिया के तमाम विशेषज्ञ हैं, बच्चों और युवाओं की बैठकें हैं। आकाशवाणी पर हमारी समृद्ध परंपरा के संगीत की स्वर लहरियां हिलोरे लेती हैं। रंगमंच में जीवन प्रतिबिंबित होता है, हास्य व्यंग के ठहाके लगते हैं, कविता कहानियों का विपुल संसार सजता है, खेल है, बागबानी है, सवाल और जवाब है, व्यंजनों की विधियां हैं और सखी सहेलियां हैं। आकाशवाणी अर्थात हमारे हर पहर का एक मित्र, हर परिवार का एक जरूरी सदस्य है, हमारी अपनी आवाज, हमारी गूंज और अनुगूंज।
2: खुदावन
3: चले जाओ।

0: खूब बरसो बरसो, चमको खूब चमको, आग मिट्टी पानी सबको रिश्वत दी गई है, ये सब मेरी बेटियों से मिल गए हैं। जा जा जा, तू भी मिल जा, जा तू भी मिल जा, जा।
1: हुजूर हुजूर, बर्फ गिर रही है।
0: गिरने दे गिरने दे, चल चले हवा, खूब जोर से चल। ऐ बादलों, इतनी शिद्दत से बरसो कि पहाड़ों की चोटियां, महलों की गुम्बद, किलों की मीनार सब तैयार हो जाए।
1: ऐसी औलाद पर लानत हो, ऐसी औलाद पर,
0: और इस बाप पर भी लानत हो। बदनसीब, तू इन तकलीफों को बर्दाश्त कर ताकि मालूम हो कि खुदा के गरीब बंदे किस तकलीफ से दिन काटते हैं। ये तुझे अमीरी में मुतलक ख्याल न होता अगर खुदा यूं तकलीफ न देता। सीखो सीखो सीखो, ऐ दुनिया वालों, मेरी हालत से कुदरत के कायदों को सीखो। जाए इबरत है ये दुनिया, काफिलों डरते रहो, ताज था जिस सर पे वो कासे जरजेर पा।
1: हुजूर, किसी पनाह की जगह चलिए।
0: पनाह, ऐसी जगह तो सिर्फ कब्र है, कब्र है, कब्र है, मगर नहीं, कब्र में भी पनाह नहीं है।
1: सब्र कीजिए हुजूर, मेरे मालिक, मेरे शहंशाह।
0: चुप, झूठा खुशामदी गुमराह, वो शख्स जिसकी जिंदगी गरीबों के कब्रिस्तानों की तरह ताराज है, उस मुफलिस गरीब को तू शान शाह बतलाता है। यही वो लफ्ज थे जिन्होंने मुझे धोखा दिया था। इन्हें तारीफों से बेटियों ने मुझे लूट लिया है। तो क्या अब तू भी खुशामत करके मुझे लूटने वाला है? अब क्या है? ये सड़ा हुआ चीथड़ा जिसको मैंने अपना कफन बनाने के लिए बचा रखा था। नहीं बचाऊंगा। नंगा ही दुनिया में आया था, नंगा ही चला जाऊंगा और ऐसे ही दुनिया से चला जाऊंगा। आ, आ, ले उतार उतार
2: उदार। आस्था है कि लंका जीतकर और वनवास पूरा कर जब राजा रामचंद्र सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने जागीर के रूप में जो क्षेत्र अपने हमदर्द भाई लक्ष्मण या लखन को दिया, वही लक्ष्मणपुर या लखनपुर से लखनऊ बन गया। जब देश 12 प्रांतों में बटा तो अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ बनी। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी क्षेत्र की भाषा अवधी में रामकथा कहते हुए श्री रामचरित मानस की रचना की है।
3: 2 अप्रैल 1938 को यहीं स्थापित हुआ आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। स्वतंत्रता पूर्व देश के 9 केंद्रों और बंटवारे के बाद बचे 6 केंद्रों में से एक था। एबट रोड पर स्टूडियो बनाकर इसकी शुरुआत हुई और

0: अवध प्रांत के प्रधानमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उद्घाटन किया। ए आडवाणी केंद्र के पहले निदेशक और ए वेंकटेश्वर पहले मुख्य अभियंता बने। दो ही वर्षों में केंद्र विधानसभा मार्ग स्थित वर्तमान भवन में आ गया, जिसे पहले किराए पर लिया गया था, जो बाद में इसका अपना भवन बन गया। वरिष्ठतम समाचार वाचक यज्ञदेव पंडित पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं,
1: जब ये निर्णय लिया गया कि यहाँ से प्रादेशिक समाचार होंगे, तो दिल्ली से बीपी निगम आए थे। उन्होंने फिर लखनऊ के स्टाफ के चुना कि किसको लिया जाए। मैं अनाउंसर था उस समय, मुझे न्यूज का शौक था, तो मैं जुड़ गया निगम जी के साथ। ये तो मेरी लालसा ही थी कि मैं समाचार पढ़ूं। उस जमाने में मेलविल डिमेलो और देवकिरण पांडे जी ये लोग थे। डिमेलो तो अंग्रेजी के थे, देवकिरण पांडे जी हिंदी के थे। पहले समाचारों में अनुवाद का ही काम है, हिंदी के जो समाचार होते हैं उसमें मोस्टली अनुवाद का ही कार्य होता है अंग्रेजी से हिंदी में। मेरा ख्याल है पहला बुलेटिन 10 मिनट का था। शुरू में बहुत दिक्कत थी, समाचार नहीं होते थे, तो राज्य सरकार ने अपने इंफॉर्मेशन विभाग में एक अलग से यूनिट बनाया। वो लोग हमारी सहायता करने लगे, वो समाचार छाट कर जो हमारे काम के होते थे उनकी नज़र में वो भेज देते थे, और हम लोग उन समाचारों को और अन्य जो हम इकट्ठा कर पाते थे अपने साधनों से उसे मिला के बुलेटिन बनता था। हमारे यहाँ इलाहाबाद, झांसी और नैनीताल, यहाँ पर हमारे अपने करस्पॉन्डेंट थे। देवकिरण पांडे जी का एकमात्र उद्देश्य समाचार पढ़ना था, और समाचारों के हिंदी के उच्चारण में उनका जवाब नहीं था। बहुत योग्य आदमी थे, और समाचारों के अतिरिक्त वो अन्य कार्यक्रम में हिस्सा भी नहीं लेते थे। जैसे शुरू में एक बार एक कोर्स हुआ रनिंग कमेंटेटर का, ट्रेनिंग ली जाए लोगों को, तो देवकिरण पांडे जी से भी कहा गया, कहने के मैं रनिंग कमेंटेटर नहीं करूँगा, लेकिन फिर लोगों ने परसुएड किया कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आपको इतने लोग मानते हैं, तो उन्होंने एक आध बार चेष्टा की। 1953 में पहला कैंप दिल्ली में लगा, जिसमें डिफरेंट स्टेशनों से आदमी इन्वाइट किए गए, उसमें मैं भी था। ऐसा हुआ था, मैंने 49 में आकाशवाणी ज्वाइन किया था एज ए ड्रामा आर्टिस्ट। असल में उस समय न्यूज और अनाउंसमेंट ये सब वर्गीकरण अलग नहीं था, उन्हीं लोगों को अनाउंसमेंट भी ले लिया जाता था, वही समाचार पढ़ते थे। 1949 से लेके 1988 में फिर मैं रिटायर हुआ। इमरजेंसी के ज़माने में दिक्कत होती थी कि कौन सा समाचार देना है कौन सा नहीं देना है, तो हम लोग स्टेशन डायरेक्टर से सहायता लेते थे, क्या ये लेना है कि नहीं लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, और उनका विशेष रूप से समाचार विभाग से अलग प्रकार का संबंध था। कुंभ के मेले में भी मुझे जाने का अवसर मिला। मुझे शौक था और उम्र भी थी लर्न करने की, इसलिए रुड़की में अनाउंसर तो हम अपॉइंट हुए थे, लेकिन ये काम एक्स्ट्रा लिया जाता था, तो उसमें जो खींचा तैयारी होती है प्रशासनिक आपस में, वो कहे हमारे आया, और इसी में झगड़ा भी हुआ। जोशी जी असल में इस खींचा तानी में पिसते थे हम, झगड़ा हो जाता था, वो कहता था हमारा ये है, हमने पहले इनसे कमिटमेंट करा रखा है और ये करेंगे। वो परेशानी होती थी, हमारा एक तरफ शौक था लेकिन कुछ पर्सनल लाइकिंग का भी होता है, उसमें खींचातानी बहुत होती थी। भाई उसी जमाने में विविध भारती शुरू हुई, विविध भारती मोस्टली उसमें रिकॉर्ड

0: देखिए, असल में टाइम के हिसाब से अलग अलग होता था। सुबह सुप्रभातम से शुरुआत होती थी, फिर दोपहर को 11-12 बजे फिल्मी गाने शुरू हो जाते थे, फिर शाम को एक अलग प्रोग्राम होता था।
1: ये लखनऊ ही केंद्र था जो साहित्य संस्कृत की तमाम हस्तियों की प्रतिभा का मंच बना, जिसकी ध्वनि तरंगों पर सवारी करते हुए उनकी कला लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंची, जिसने उन्हें लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत और कई प्रदेशों के बीच तब अकेला केंद्र होने के कारण कई कई नगरों, कस्बों, गांवों से ख्याति लब्ध और उभरती प्रतिभाओं ने यहां प्रदर्शन किए। कईयों ने यहां नियमित रूप से अपनी सेवाएं दी। आकाशवाणी लखनऊ ने कितनी ही प्रतिभाओं की खोज कर

0: व्यक्तियों की प्रतिभा का मंच बना, जिसकी ध्वनि तरंगों पर सवारी करते हुए उनकी कला लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंची, जिसने उन्हें लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत और कई प्रदेशों के बीच तब अकेला केंद्र होने के कारण कई कई नगरों, कस्बों, गाँव से ख्याति लब्ध और उभरती प्रतिभाओं ने यहाँ प्रदर्शन किए। कईयों ने यहाँ नियमित रूप से अपनी सेवाएं दी। आकाशवाणी लखनऊ ने कितनी ही प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें और उनके हुनर को प्रसिद्धि दिलाई।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र था, जहाँ फिल्म संगीत के विख्यात संगीतकार तलत महमूद की मशहूर गजल तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी पहली बार रिकॉर्ड हो सकी। ये यूं ही नहीं था कि विख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान केंद्र भवन आते हुए दरवाजे पर ही जमीन की माटी को माथे लगाते। उनकी शहनाई पहली बार यहीं तो रिकॉर्ड हुई। खान साहब की शहनाई पहली सभा के आरंभ की मंगल ध्वनि बन गई। विख्यात सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान ने यहाँ स्टाफ आर्टिस्ट और फिल्मों के मशहूर संगीतकार मदन मोहन ने यहाँ म्यूजिक कंपोजर के रूप में नौकरी की। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र ही था जहाँ अख्तरी बाई बेगम अख्तर बनी और आकाशवाणी के ही अधिकारियों ने विवाह के बाद बंद हो चुके हुए उनके गायन को पुनः शुरू करने के लिए उनके पति को राजी किया।

0: आकाशवाणी लक्ष्यों के कई कार्यक्रमों ने लोकप्रियता की मिसालें कायम की। अपने सारे कामकाज छोड़कर लोग उन्हें सुनते, इनका बेसब्री से इंतजार करते। इन्हें प्रस्तुत करने वाले घर घर पहचाने गए, अपने नाम से अधिक अपने चरित्रों के नाम से पुकारे जाने लगे। शुरू में हिंदुस्तानी में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों में हिंदी के कार्यक्रमों का नेतृत्व बलभद्र दीक्षित पढ़ीस ने किया, तो उन्नाव के चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका के रूप में अधिक लोकप्रिय हो गए। उनके कार्यक्रम बहरे बाबा ने 4 दशक का लंबा सफर तय कर सबसे अधिक समय तक चलने वाले धारावाहिक प्रेजेंट की ख्याति पाई। बहरे बाबा और उसके संवाद इतने प्रसिद्ध हुए कि लोगों की बोलचाल का हिस्सा बन गए।
1: एक ऐसे दौर में जब महिलाओं को खुलकर बोलने की आजादी नहीं थी, पर्दा नशी मुस्लिम परिवार की सईदा बानो लखनऊ आकाशवाणी की पहली उद्घोषिका बन गई। गृह लक्ष्मी और पनघट ने महिलाओं के बीच और बाल संघ ने बच्चों में खूब लोकप्रियता पाई। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, बतासा बुआ और अम्बेश्वरी श्रीवास्तव भौजी के रूप में हर घर की सदस्य बन गई। आकाशवाणी की लोकप्रियता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अपने कई अधिकारियों को आकाशवाणी में नियुक्त किया, जिन्होंने मजदूर मंडल और ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित कार्यक्रमों का नेतृत्व संभाला। बाल संघ के भैया बने यज्ञदेव पंडित उद्घोषक और समाचार वाचक के रूप में सबके चहेते बन गए। उनकी आंखों देखा हाल का हर किसी को इंतजार होता। बुलंद आवाज के लोकप्रिय समाचार वाचक देवकी नंदन पांडे ने भी लखनऊ से ही अपनी इस यात्रा का आरंभ किया था। आकाशवाणी लखनऊ में लंबे समय तक उद्घोषक एवं समाचार वाचक रहे रज्जन लाल कहते हैं,
2: आकाशवाणी में मैंने विभिन्न श्रेणियों में कई सालों तक काम किया। 48 में मैं बच्चों के प्रोग्राम में आया, उसके बाद युवाओं में, उसके बाद बड़े लोगों के प्रोग्राम में, उसके बाद अनाउंसर, उसके बाद न्यूज रीडर, फिर बाद में अंततः असिस्टेंट एडिटर हुआ। और ये सब मैंने आकाशवाणी के भोपाल, लखनऊ, रांची इन स्टेशनों पे कार्यक्रम अंजाम दिया। मैंने आकाशवाणी में करीब 25 साल तक बच्चों के प्रोग्राम के भैया का पार्ट किया। उस जमाने में जो कंपेयर होते थे वो अपना नाम नहीं ले सकते थे, तो मैं रसगुल्ले वाले भैया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद में जब मैं वापस आया रांची से न्यूज रीडर होने के बाद में लखनऊ वापस आया, तो मैंने चाहा कि बच्चों को प्रोग्राम में करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। उसके बाद मैं चूंकि एडिटर था और मुझको इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में ले लिया गया, तो फिर मैं रिटायर हुआ 91 में एज एडिटर न्यूज ऑल इंडिया रेडियो, और मैं बाकायदा कैडर में आ गया था इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में।
0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र संगीत की अनुपम थाती सहजे हुए है। पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर, बाबा अलाउद्दीन खान, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद

0: था, मैंने कई राष्ट्रीय प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया जो कि पूरे हिंदुस्तान भर में अलग अलग लैंग्वेजेस में उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता था। यहूदी की लड़की भी एक नाटक था मेरा, उसकी रिकॉर्डिंग उर्मिल कुमार थपलियाल जी उसके निर्देशक थे और मैंने उसमें यहूदी का रोल किया था। वो आकाशवाणी के कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसके लिए रिकॉर्ड हुआ था। और एक बार मुझे ये भी याद है, मेरा एक प्ले था फिर, वो कंपटीशन में भेजा गया था यहाँ से दिल्ली में, हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे यही बड़ी खुशी थी कि यहाँ जो मैंने नाटक किए थे उसे मेरा नाटक सिलेक्ट हुआ उस साल और दिल्ली भेजा गया। मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी मैं 28 साल का था, आज मैं 83 साल का हूँ, लेकिन रेडियो में काम करने का मोह मेरा आज भी नहीं छूटता है। मैं बल्कि प्रिफर करता हूँ रेडियो को सबसे ज्यादा, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसमें जो चैलेंज होता है एज एन एक्टर वो सबसे ज्यादा होता है। मैंने मंच भी किया है, मैंने दूरदर्शन भी किया, मैंने फिल्में भी बहुत सारी की हैं, लेकिन जो असली चैलेंज होता है एक्टिंग का वो आकाशवाणी में ही होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपको अपनी आवाज के थ्रू पूरा सीन क्रिएट करना पड़ता है दर्शकों के आगे। दर्शक सुन रहे हैं और अगर आग बंद कर लें तो उनको ऐसा लगना चाहिए जैसे वो आपको मंच पर देख रहे हैं। तो आज भी मैं वो चैलेंजेस मुझे अच्छा लगता है। और मुझे याद है उस जमाने में कितने बड़े बड़े राइटर्स हुआ करते थे, भगवती चरण वर्मा जी, अमृतलाल नागर जी, रामलाल जी, इकबाल मजीद साहब, केपी सक्सेना साहब, इन लोगों के नाटक करने को मिलते थे और मैंने किया था। आज कुछ लेखकों की लगता है शायद कुछ कमी हो गई है, फिर भी आकाशवाणी अपना पूरा प्रयत्न कर रहा है कि अच्छे से अच्छे नाटक लिखवाए और अच्छे से अच्छे नाटक यहाँ पर ब्रॉडकास्ट हो। तो अभी हाल ही में मैंने कुछ नाटक रिकॉर्ड किए, बीच में एक लैग पीरियड आया था करीब 7-8 साल का जब मैंने कोई नाटक नहीं किए थे, तो मन मेरा कचोटता था कि भाई आकाशवाणी में क्यों नहीं मुझे बुलाया जाता है, लेकिन अब फिर से सिलसिला शुरू हो गया है और मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। किसी तरीके से लोगों को रिकॉर्ड करते रहें, लोगों का मनोबल बढ़ाते रहें, और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि आकाशवाणी से आवाज की दुनिया चूंकि यह है, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि एक एक्टर को सीखने का यह बहुत बड़ा माध्यम है।
1: 88 वर्षों की लंबी यात्रा तय करने वाले इस केंद्र का आरंभ 5 किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमीटर से हुआ था, जो 50 होता हुआ 300 किलोवाट तक पहुंच गया। स्थापना के अगले वर्ष से ही यहां ग्रामीण प्रसारण की शुरुआत हो गई थी। 15 अप्रैल 1953 को प्रादेशिक समाचारों का आरंभ हुआ। विविध भारती के विज्ञापन प्रसारण सेवा और फिर FM रेनबो ने आकाशवाणी की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयां दी। उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों के शहनाई वादन से 20 अगस्त 2000 में FM का आरंभ हुआ था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उद्घोष करता आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और अपने नए नए कार्यक्रमों से अपने श्रोताओं में लोकप्रिय बना है। श्रोताओं के पत्र, ईमेल, फोन और आकाशवाणी श्रोता संघों के संदेश इस बात की निरंतर तस्दीक करते रहते हैं। इस सफल यात्रा पर अपने प्रिय श्रोताओं को शुभकामना देते हुए केंद्र की कार्यक्रम प्रमुख सुमोना एस पांडे।
2: आकाशवाणी लखनऊ गौरवशाली 88 वर्ष से सतत श्रोताओं को मनोरंजन के साथ सूचना और शिक्षा प्रदान करता रहा है। समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। कृषकों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, ग्रामीणों, बच्चों आदि सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का निर्माण करना आकाशवाणी लखनऊ की प्राथमिकता रही है। लोगों के बीच में जाकर उनकी बात को सभी तक पहुंचाना तथा विशेषज्ञों द्वारा उनके समस्याओं का समाधान कराना भी मुख्य उद्देश्य रहा है आकाशवाणी लखनऊ का। कला, साहित्य, खेल, स्वास्थ्य आदि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहा है आकाशवाणी लखनऊ और समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता रहा है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों के सजीव प्रसारण व अन्य कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी लखनऊ जनमानस को खेल के प्रति आकर्षित करता रहा है, जिससे कई महान खिलाड़ी देश को प्राप्त हुए जिन्होंने मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया। आकाशवाणी लखनऊ अपने हर चैनल पर जनमानस को जागरूक करने के साथ ही उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहा है। यह केंद्र इसी तरह समाज की सेवा करते हुए उनको लाभान्वित करता रहेगा। इसी कामना के साथ मैं सभी सुधी श्रोताओं को आकाशवाणी लखनऊ के तीनों चैनल प्राइमरी, विविध भारती और FM रेनबो लखनऊ से हमेशा जुड़े रहने का आह्वान करती हूं और आपको शुभकामनाएं देती हूं कि इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे रूपक, अवध की वाणी, लखनऊ आकाशवाणी। लेखक थे आलोक पराड़कर, वाचन था नवनीत मिश्र और पुनीता अवस्थी का, संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग था रवि तिवारी का, और इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे अतीश कुमार श्रीवास्तव। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका? कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया? जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अली अकबर खान का राग रागेश्री में सरोद वादन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप उस्ताद अली अकबर खान का राग रागेश्री में सरोद वादन सुन रहे थे। अब आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और

उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।